0: 印度德里广播电台，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。
1: ललित मानस कान का संगीतमय पाठ आज इसमें हम बाल कांड का भाग 114वां सुनेंगे।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस कांड का पाठ सुन रहे थे। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वीयां ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगत चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरं एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या उभय देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबंधन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पंच ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारंपरिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामंत्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनं भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमताया

0: Di sini siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.
1: Catch the rain. बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच

0: आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का

0: करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक

0: की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मानसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beat Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
3: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
2: Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said Prime Minister Modi's 3-country visit delivered significant outcomes, advancing cooperation across several sectors, including trade, technology, security, education, innovation, and

0: और रैपिड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी न्यूज, अहमदाबाद।
1: In a mega campaign, the Uttar Pradesh government will plant 35 crore saplings today. Chief Minister Yogi Adityanath will launch the statewide Paudharopan Mahayagya from Gorakhpur this morning. He will plant saplings near the Gorakhpur Link Expressway and along Tal Ring Road under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. More from our correspondent.
2: In the plantation mega campaign to be carried out through the coordination of 27 departments, the forest department has been assigned the largest target of 15 crore 50 lakh saplings. 5,50,000 saplings will be planted along the Ganga Expressway. This year, under the Maha Abhiyan, several new forests will be created, including the Samraswan, Samriddhivan, Krishivan, Urjavan and Kapivan. The Maharshi Charak Medicinal Forest was launched on June 5th on World Environment Day. Mission Chhaya, Viral Dhara Tree Plantation, Moringa Bhandara and Mango Bhandara will also be a key part of the campaign. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: The India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for the next 4 days. These places include Jammu and Kashmir and Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Chandigarh, Haryana, Delhi, East Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Gangetic, West Bengal, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura and Odisha. Talking to Akashwani News, IMD scientist Dr. Naresh said an orange color warning has been issued for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and Bihar for today.
3: For Assam, Meghalaya, it is a red alert. Heavy rainfall activity likely to continue over these sub-divisions. And if you talk about the another part of country, we are not expecting any significant rainfall. Rainfall activity is likely to be subdued over South Peninsular India, Central India, West Central India and plains of Northwest India. Heavy rainfall activity of Northwest India may occur over Northern Punjab, Northern Haryana and over Uttarakhand. It may occur for next 6-7 days.
1: And now in sports news, in the FIFA World Cup, England advanced to the semi-finals, beating Norway 2-1 at Miami Stadium, Florida this morning. Jude Bellingham's brilliant two-goal display inspired England to come from behind to beat Norway after extra time. Spain and France have already booked their places in the last four. In tennis, 21-year-old Linda Noskova won her maiden Grand Slam title after defeating fellow Czech Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3 in the Wimbledon women's singles final at Centre Court, London last night. Noskova became the third Czech woman in 4 years to win the grass court major after Markita Vondrousova in 2023 and Barbora Krejcikova in 2024. After winning the title, Linda said, "It's never easy to get to the last point."
4: Ladies singles champion for 2026 from the Czech Republic, Linda Noskova.
5: It feels incredible. And all these matches have been so tough, so physically or mentally tough. Especially, you know, it's never easy to get the last point. I think we made a history.
1: The stage is also set for the men's singles final tonight, where world number one Jannik Sinner will face Germany's Alexander Zverev. The match is scheduled to start at 8:30 p.m. Indian Standard Time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
6: Thank you, Naresh. Prime Minister Narendra Modi's New Zealand visit figures prominently on the front pages of newspapers. Hindustan Times shows a picture of Mr. Modi and his counterpart Christopher Luxon under the headline India-New Zealand Raise Ties to Strategic Bond, Inc. 12 Pacts. India a strategic launchpad, PM Modi tells NZ CEOs, writes the Sunday Pioneer. BOK stir intensifies, protesters warn park forces to stay away is a top headline in the Asian Age. Bengal CM orders statewide crackdown on illegal liquor, drug dens after Baripur horror, reports the Sunday Statesman. New high for India-made car exports under the headline. The Financial Express quoting the latest export data released by the Department of Commerce under the Minister of Commerce and Industry writes that outbound shipments of passenger vehicles scaled an all-time high of 79,967 crore rupees, marking a 30.59% growth over financial year 2025. In its editorial title, Wayanad Landslide, Mountains keep warning us, but are we listening? The Times of India writes that barely 2 years after Wayanad witnessed one of India's worst landslide disasters, another mountain side has collapsed. The immediate cause of the landslide will eventually be established, but mountains are not simply obstacles waiting to be drilled through. They are living landscapes with limits that engineering alone cannot negotiate. And finally, historic Gurudwara in Lahore, associated with Sri Guru Har Gobind Sahib Ji, built in 1923, has been reopened for the first time since partition, ending a wait of nearly 79 years, reports the Sunday Tribune. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beat Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals, and Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तीन मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा मुकम्मल कर लिया है। वो न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत के बाद भारत रवाना हो गए। वियतनाम हुकूमत ने तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। अमरीका ने ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। ईरानी बहरिया ने अगले हुक्म तक इस अहम बहरी गुजरगाह को बंद कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरिकी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और टेनिस में लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत करने के बाद तीन मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है और भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया और मुख्तलिफ अहम शोबों में कई समझौतों और मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में दिफा, सियाहत, खेलकूद, आफात से निमटने, डेयरी सनद और मवेशी पालने समेत कई शोबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की एक नुमाया तकरीब ऑकलैंड के सापर्क एरेना में मुनाकिद होने वाला कम्युनिटी प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। भारतीय बिरादरी के इस इज्तमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला दोतरफा तिजारती मुआहिदा भारत की तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के सफर को मजीद तेज करेगा।
7: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
8: اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے بھارت کو ایک قابل اعتماد دوست قرار دیا. نیوزی لینڈ کی ترقی میں بھارتی برادری کے رول کو سراہا اور وزیر اعظم مودی کی قیادت کی تعریف کی. وزیر اعظم مودی نے وزیر اعظم لکسن کی بہترین میزبانی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے. جناب مودی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بھارت کے وزیر اعظم کے نیوزی لینڈ کے دورے کو 40 سال گزر چکے ہیں, تاہم انہوں نے یقین دلایا کہ اگلے دورے میں اتنا طویل وقفہ نہیں ہوگا.
7: یہ میرا سوبھاگیہ ہے, میں نیوزی لینڈ کے سبھی نواسیوں

0: शोबों में तआवुन को फरोग मिला है और इस दौरे से अहम और मुस्बत नतायज हासिल हुए हैं। वियतनाम के वजीर आजम ली मिन हुन ने फू क्वाक जजीरे के करीब पेश आने वाले उस तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। मुंबई में वियतनाम के कौंसिल खाने की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक वियतनाम के वजीर आजम ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो हादसे की वजूहात और मुतालिका कोताहियों की निशानदेही करें, जिम्मेदारी का तायुन करें और आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करें। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि जिन अफराद ने जाब्तों की खिलाफ वर्जी की है और जिनकी गफलत इस हादसे का सबब बनी है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यह अफसोसनाक हादसा कल उस वक्त पेश आया जब 36 अफराद जिनमें अमले के 4 अरकान भी शामिल थे को ले जाने वाली तेज रफ्तार कश्ती रत्नगोई जजीरे के करीब अचानक एक बड़ी समुद्री लहर की जद में आकर उलट गई। मकामी हुक्काम ने 21 अफराद को बहिफाजत बचा लिया, ताहम 15 भारतीय सयाह जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थीं जान की बाजी हार गए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के फू क्वाक जजीरे के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इस हादसे में 15 भारतीय शहरियों की मौत हो गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो इस अफसोसनाक कश्ती हादसे से बेहद गमजदा हैं। वजीर खारजा ने महलुकीन के अहले खाना से दिली ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया और हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। ईरान की सिपाह पासदारा ने इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले कुब्रुस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी फौज ने कहा है कि ये फजाई हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि एक तजारती जहाज पर हमले में पायलट हमले का एक शख्स लापता है और हमले की वजह से लगी आग के इंजन रूम में हुए नुकसान के सबब जहाज अपना सफर मुकम्मल नहीं कर सका। जजीरा कशाम, बंदर अब्बास और सिरीक में इन हमलों के बाद धमाकों की आवाजें सुनी गईं। वहीं ईरान ने अगले नोटिस तक अपनाए हुरमुस को बंद कर दिया है। ईरान की सिपाही पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि उस जहाज ने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की थी। फौज ने कहा है कि किसी भी जहाज को स्ट्रेटजिक आबी गुजरगाह से गुजरने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि खित्ते में अमरीका की दखलअंदाजी बंद नहीं हो जाती। सिपाही पासदारा ने इनकलाब की जानिब से एक इंतबाही वार करने के बाद जब जहाज रुक गया तब ये ऐलान किया गया। वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ सालिसी जारी रहेगी। दूसरी तरफ ओमान ने अबनाए हुरमुस से जहाजों के गुजरने के लिए 2 अलहदा रास्ते तजवीज किए हैं, एक ईरानी समंदर से और दूसरा ओमान समंदर से। इससे पहले को बातचीत में तेहरान से इसी तरह की तजवीज को मुस्तरद कर दिया था। न्यूज डेस्क से जिज्ञासा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीबुर रहमान।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुजव्वजा एक मुल्क एक इंतखाब बिल का जायजा लेने वाली मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की 2 रोजा मुशावरत गोवा में इख्तिताम पजीर हो गई। अपने दौरे के दौरान कमेटी ने रियासती हुकूमत, सियासी पार्टियों, कानून साजों, कानून के माहिरीन, अवामी शोबे के इदारों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मीडिया से तबादला ख्याल किया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: आईन के 129वें तरमीम बिल 2024 और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुतालिक कानून तरमीम बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने एक साथ इंतखाबात कराने की तजवीज़ पर गोवा में 2 रोजा मुशावरत मुकम्मल की। पहले दिन कमेटी ने वजीर आला प्रमोद सावंत, मारूफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं, आईनी माहिरीन, रियासती चुनाव कमीशन और गोवा यूनिवर्सिटी के हुक्काम से मुलाकात की। दूसरे दिन यानी कल कमेटी ने गोवा कानून साज असेंबली के स्पीकर, अपोजिशन के लीडर और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कानून साज असेंबली के मेंबरान से बातचीत की। इससे पहले अपने दौरे के दौरान कमेटी के चेयरमैन और पार्लियामेंट के मेंबर पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ इंतखाबात कराने से हुक्मरानी मजबूत होगी, अखराजात में कमी आएगी और बार बार इंतखाबात कराने से पैदा होने वाली रुकावटों में कमी आएगी। उन्होंने इस बात को वाजह किया कि एक मुल्क एक इंतखाब का मतलब ये नहीं है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन पोलिंग हो, लेकिन लोकसभा और असेंबली इंतखाबात दोनों एक साथ मरहलेवार अंदाज में 5 साल में एक ایک بار کرائے جائیں انہوں نے کہا کہ کمیٹی اپنی رپورٹ جمع کرنے سے پہلے تمام شراکت داروں سے مشورے لے رہی ہے کمیٹی کا اگلا دورہ

0: लखनऊ का होगा। महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक 405 करोड़ रुपए की मालियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वो अपने पार्लियामानी हल्के गांधीनगर में एक वसी शजरकारी मुहिम का भी आगाज करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने गांधीनगर लोकसभा हल्के को मुल्क के 70 हल्कों में शामिल करने के लिए एक बड़े शजरकारी मंसूबे का आगाज किया है। आबोहवा की तब्दीली से निपटने के मकसद से चलाई जाने वाली इस मुहिम के तहत रवानसाल पूरे हल्के में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत महकमे जंगलात अहमदाबाद और गांधीनगर अजला में तकरीबन 60,00,000 देसी पौधे लगाएगा। इसके लिए वन कवच मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा जो मियावाकी तकनीक का गुजरात में तैयार करदा मकामी नमूना है और जिसका मकसद तेज रफ्तार माहौलियाती बहाली और घने जंगलात का क्याम है। जनाब अमित शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में मुनाकिद होने वाले इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप की 11वीं मीटिंग और जराइम की तहकीकत करने वालों के पहले बैन अल-अक़वामी मुकाबले का इफ्तिताह करेंगे। बाद में वो देहगाम का दौरा करेंगे जहां नए तामीर शुदा APMC सब्जी मंडी का इफ्तिताह करेंगे और अमृत महोत्सव की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीबुर रहमान।
1: एक बड़ी शजरकारी मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश हुकूमत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से रियासत भर में पौधारोपण महाअभियान 2026 का आगाज करेंगे। वो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और ताल रिंग रोड की करीब एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधे लगाएंगे। इस मौके पर वजीर आला एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और लोगों से पौधारोपण महाअभियान में जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लेने पर जोर देंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
0: 27 महकमों के इश्तराक से अंजाम दी जाने वाली बड़ी शजरकारी मुहिम में महकमे जंगलात को 15,50,00,000 पौधे लगाने का सबसे बड़ा हदफ दिया गया है। महकमे देही तरक्यात 10 करोड़, महकमे ज़रात 3,25,00,000, बागवानी का महकमा 1,50,00,000 और पंचायती राज का महकमा 1,22,00,000 पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5,50,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस साल महाअभियान 2026 के तहत कई नए जंगलात कायम किए जाएंगे जिनमें समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन और कापी वन शामिल हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने फूड बिजनेस ऑपरेटर स्विगी इंस्टामार्ट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर सारिफिन की मुतादिद शिकायत के बाद 9 नोटिस जारी किए हैं। फसाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को तफसीली वजाहत और तामील से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इदारे ने खबरदार किया है कि ऐसा न करने की सूरत में मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सारिफिन की शिकायत पर इल्जाम आयद किया गया है कि स्विगी इंस्टामार्ट के जरिए मुद्दत इस्तेमाल खत्म हो चुकी खराब सड़ी गली आलूदा और दीगर गैर महफूज गजाई अशिया फराहम की जा रही थी। नाइट एंगल ऑफ दी साउथ के नाम से मशहूर नामवर गुलुकारा इस जानकी गुज़िश्ता रोज कर्नाटक के शहर मैसूरू में बढ़ती हुई उम्र से मुतालिक सेहत मसाइल के बायस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने अगले 4 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरकी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मशरकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मगरबी बंगाल, गंगा के मैदानी इलाके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा शामिल हैं। फीफा आलमी कप में इंग्लैंड ने आज सुबह फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टेनिस में 21 साला लिंडा नोस्कोवा ने कल रात लंदन के सेंटर पोर्ट में खेले गए विंबलडन खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में अपनी हमवतन कैरोलिना मुकोवा को 6-2, 5-6, 7-6, 6-3 से शिकस्त देकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। और ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
2: कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे न्यूजीलैंड से मुतालिक खबरों को शाये सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, भारत न्यूजीलैंड के दरमियान दफा तजारत टेक्नोलॉजी समेत 18 अहम माहदे, तजारत को 38,000 करोड़ रूपए से जायद तक पहुँचाने का हदा।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 3 मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा

0: मुकम्मल कर लिया है। वो न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत के बाद भारत रवाना हो गए। वियतनाम हुकूमत ने तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। अमरीका ने ईरान के सिपाही पाजारन इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू किया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। 810 किलोहर्ट्ज DRM पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है AIR लाइव न्यूज 24/7। और स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 8:45 बजने को हैं, बज चुके हैं कह सकते हैं, 8:45:30 हुए हैं और ये समय है हमारे कार्यक्रम साहित्यिकी का। आज के इस कार्यक्रम में हवाओं की बस्ती, भरोसे के लोग, अंतरजाल की दुनिया में किताबों की महत्ता पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम, ये परिचर्चा है। और इस परिचर्चा में प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूर्णचंद्र टंडन, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, डॉक्टर चंदन कुमार वरिष्ठ साहित्यकार और प्राध्यापक, और श्री अशोक कुमार गुप्ता, आप प्रकाशक और समाजसेवी हैं। डॉक्टर पल्लव जो कि युवा साहित्यकार हैं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और कार्यक्रम में साहित्यिक गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। श्रीमती सुमन इस पर बात करेंगी, श्रीमती सुमन महलावत जो कि युवा पत्रकार हैं।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, आज जब हम और आप इस वक्त एक दूसरे से जुड़े हैं तो माध्यम चाहे जो भी हो, रेडियो की तरंगे हो या इंटरनेट का कोई डिजिटल कोना, हम सब एक बेहद दिलचस्प दौर से गुजर रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां सुबह की शुरुआत किसी के चेहरे को देखकर नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन को अनलॉक करके होती है। कभी ठहर कर सोचिएगा कि यह जो इंटरनेट का संसार है, जिसे हम अदृश्य जाल या अंतरजाल कहते हैं, यह किसी हवाओं की बस्ती से कम नहीं है। इन्हीं सबको समेटे लीजिए सुनिए परिचर्चा हवाओं की बस्ती, भरोसे के लोग, अंतरजाल की दुनिया में किताबों की महत्ता पर परिचर्चा। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर पूरनचंद टंडन, वरिष्ठ साहित्यकार और प्राध्यापक डॉक्टर चंदन कुमार, प्रकाशक और समाजसेवी श्री अशोक गुप्ता, साहित्यकार और प्राध्यापक डॉक्टर पल्लव। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर पल्लव।
3: श्रोताओं, ये बात अक्सर सुनी जाती है, लोग कहते हैं कि जब से इंटरनेट आया है तब से किताबों को पढ़ने वालों की संख्या कम हो गई है। लेकिन थोड़ी सी पुरानी बात मैं आपके सामने रखूं, हम सब लोगों ने स्कूली शिक्षा के दौरान हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध पढ़ा है, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। उस निबंध में भीष्म पितामह के बारे में बताते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि भीष्म पितामह हर बात का उदाहरण इतिहास से ढूंढ कर लाते थे। तो ये जो परिघटना है इंटरनेट के आगमन की, और इंटरनेट के आगमन की वजह से पुस्तकों के संकट में होने की बात, ये नई नहीं है। आज के करीब 30-35 साल पहले जब हमारे देश में टेलीविजन आया था, लोग दूरदर्शन पर तरह तरह के सीरियल देखते थे, पसंद करते थे, तब भी ये चिंता बड़ी की जाती थी कि अब जब टीवी आ गया है तो किताबों का भविष्य संकट में है, अब कौन पढ़ेगा। लेकिन हमने पिछले 30-40 सालों में देखा कि टीवी के रहने के बावजूद पुस्तकों को पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं हुई, पुस्तकों को पढ़ने वाले बल्कि बढ़ते गए। हमारे देश में खासतौर पर टीवी के आने के बाद ही साक्षरता का आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद लोगों की पढ़ने पढ़ाने में रुचियां और बढ़ती गई। आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो इस विषय पर और हमें बताएंगे, अपने अनुभवों से हम सबको लाभान्वित करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोफेसर टंडन साहब से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर अपने अनुभव के साथ हमें कुछ बताएं कि क्या सचमुच इंटरनेट के आगमन से और इंटरनेट के हमारे जीवन में व्याप्त हो जाने के बाद किताबों का अब वैसा स्थान नहीं बचा है जैसा कि किताबों का स्थान हम सबके जीवन में होना चाहिए।
4: धन्यवाद। मुझे पल्लव जी ऐसा लगता है कि विगत 50 वर्षों का अनुभव जो मुझे बताता है
3: जी
4: कि पुस्तकों के प्रति जो रुझान था
3: जी,
4: और पुस्तकों से मेरा अभिप्राय पाठ्य पुस्तक से नहीं है।
3: जी जी जी,
4: जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो तो एक बाध्यता होती है कि आपको पढ़नी है, हालांकि पाठ्य पुस्तक खरीदने के प्रति और पढ़ने के

0: प्रति भी रुझान मुझे कम लगता है
1: जी जी,
0: क्योंकि
1: जी,
0: अब विद्यार्थी कक्षा में मोबाइल लेकर टेक्स्ट लेकर बैठता है
1: जी,
0: और घर में कोश का ना होना, घर में फिक्शन का कथात्मक साहित्य का ना होना
1: जी,
0: कविताओं के प्रति रुचि और रुझान का कम होना, ये एक चिंता का विषय तो है। उसका कारण है क्योंकि युवा वर्ग ने ये मान लिया है
1: जी
0: कि रोजगार महत्वपूर्ण है, और जो रोजगार उन्मुख जितने भी आयाम और पक्ष हैं, हमें उस पर ज्यादा बल देना चाहिए। तो जो नैतिक शिक्षा है, जो जीवन मूल्य है, इनकी तरफ जो रुझान हुआ करता था, वो रुझान तुलना में कम हुआ है और लगातार कम हो रहा है
1: जी।
0: इसका एक प्रमाण मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से जुड़ा रहा हूँ, लाइब्रेरी की कमिटीज में रहा हूँ, मैंने देखा कि पठनीयता किताबों की
1: जी,
0: उसका प्रतिशत लगातार गिर रहा है।
1: ये
0: ठीक है कि किताबें छप रही हैं, पुस्तक मेले लग रहे हैं, लेकिन एक पुस्तक मेले में एक चर्चा परिचर्चा के दौरान एक प्रकाशक महोदय ने कहा कि ये मैं नहीं मानता कि किताब बिकती नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है कि किताब बिकती नहीं है, किताब बेची जाती है
1: जी।
0: तो इन दोनों में अंतर है।
1: ठीक बात है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि रीडेबिलिटी या पठनीयता है या नहीं है
1: जी,
0: लेकिन पुस्तक को लाइब्रेरीज में या बल्क परचेज में उसको कैसे उपस्थित कराना है, ये एक अलग तरीका है
1: जी जी जी।
0: लेकिन वास्तविक चिंता ये है कि घरों में पुस्तकों की अलमीरा हुआ करती थी, शेल्फ हुआ करती थी, वो गायब हो गई है। डीवीडी आ गई है, सीडी आ गई है, पेन ड्राइव आ गए हैं, और अद्यतन अधुनातन उपकरण भी आ गए हैं। तो उससे किताब की जो भीनी गंध हुआ करती थी, वो तो जीवन से विलुप्त होती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में निश्चित रूप से हम सबके लिए ये चिंता का विषय तो है, क्योंकि किताब में सुदीर्घ जीवन अनुभव होते हैं। एक व्यक्ति अगर कोई ठीक सारगर्भित उपयोगी पुस्तक तैयार करता है, तो उसके भी 15-20 साल का जीवन अनुभव उस किताब में समाहित होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मुझे लगता है कि हर अनुशासन की दृष्टि से किताब को संजोकर रखना, किताब को एक मित्र की तरह अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाना, ये अत्यंत आवश्यक है। और नई पीढ़ी के बच्चों को ये बात समझ में आनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी माता पिता की और शिक्षकों की विशेष रूप से है कि किताब को अपनी दैनिकचर्या का हिस्सा वो लगातार बनाते रहें।
1: जी जी, धन्यवाद सर, आपने उपयोगी बातें बताई। अब मैं प्रोफेसर चंदन चौबे जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य हैं और जो युवा पीढ़ी के साथ लगातार सक्रिय रहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि मैं जब जाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में, तो पांव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ अभी जैसा कि आदरणीय टंडन साहब ने बताया कि भले ही किताबों की संख्या, प्रकाशनों की संख्या, पुस्तकों की संख्या बढ़ती गई हो, लेकिन सचमुच उनको पढ़ने वाले और उनको आत्मसात करने वाली पीढ़ी या ऐसे लोगों की संख्या में कमी आई है। तो आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं, आपके अनुभव जानना चाहूंगा।
2: पल्लव जी धन्यवाद। हवाओं की बस्ती और भरोसे के लोग
1: जी,
2: ये पुस्तकों की दुनिया पर चर्चा हो रही है, पुस्तकों का विश्व कैसा हो, और आपने बड़ा ही दिगर सा प्रश्न उठाया कि लिखित शब्दों की दुनिया में तकनीकी और शब्द के संबंध कैसे हो
1: जी।
2: यह शिकायत कि लोग नहीं पढ़ रहे हैं, और यह यथार्थ कि पढ़ने के स्थानों पर भीड़ लगी हुई है। अब इन दोनों के बीच का संबंध क्या है और इन संबंधों को हम कैसे परखें, इसका एक उदाहरण मैं देता हुआ चलूंगा
1: जी।
2: विश्व के तकनीकी संपन्न समाजों में लिखित शब्दों की दुनिया क्या है? जिन समाजों को हम तकनीकी रूप से संपन्न और तकनीकी रूप से समृद्ध मानते हैं, जहाँ की जनसंख्या हमसे कम है
1: जी,
2: क्या उन समाजों में पुस्तकों की दुनिया खत्म हो गई क्या?
1: हाँ।
2: एक मेरे लिए प्रश्न, मेरे लिए भी एक जिज्ञासा का विषय है कि हिंदी का लेखक और हिंदी का प्रकाशक, अक्सर लेखकों की शिकायत को हम लोग ये मान लेते हैं कि शायद उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती होंगी
1: जी।
2: हिंदी का एक बहुत बड़ा समाज है, और चूंकि हम लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं और विश्वविद्यालय के तंत्र से जुड़े हुए हैं, आप भरोसा रखिए विश्वविद्यालय और समाज में हिंदी पढ़ने वाले और हिंदी के साथ अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने वाली एक बड़ी युवा पीढ़ी
1: जी जी जी,
2: और उस पीढ़ी ने पुस्तकों के साथ एक संवाद विकसित किया है। तो पढ़ने लिखने की दुनिया की सकारात्मकता बनी हुई है, हमारी कुछ शिकायतें भी बनी हुई हैं
1: जी,
2: और उन शिकायतों के साथ एक कुछ जम्पनी जिज्ञासाएं भी हैं कि शब्दों की अमरता कैसे सुनिश्चित हो
1: जी,
2: और शब्दों के मानकीकरण का आधार क्या हो। इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, लिखित शब्द
1: जी।
2: अगर शब्दों की सातत्यता और शब्दों की अमरता को सुनिश्चित करना है, और दूसरा उनके एक मानकीकृत रूप को अगली

0: तक स्थानांतरित करना है तो उसके पुस्तकीय रूप के अलावा कोई रास्ता अपने पास है नहीं।
1: बिल्कुल ठीक बात है।
0: एक और बड़ी रोचक सी और थोड़ा सा मैं उसको हास्य के प्रसंग में कहना चाहूंगा, हम लोग अक्सर विश्वविद्यालयों में कहते हैं कि हिंदी का प्रकाशक धनी है और लेखक निर्धन है, पर एक चीज सोचिएगा कि हिंदी का कोई प्रकाशक कभी घाटे में है क्या?
1: जी
0: और मैं किसी पुस्तक की गुणवत्ता पर बिना टिप्पणी किए हुए एक प्रश्न रखना चाहूंगा कि हिंदी की उन पुस्तकों की गुणवत्ता जिनकी गुणवत्ता संदिग्ध है उनकी भी 200 प्रतियां बिक जाती हैं।
1: जी जी जी जी
0: आखिर कोई ना कोई पाठक वर्ग तो है ही ना। एक बड़ा हिंदी समुदाय और साथ ही साथ पढ़ने लिखने वाला एक बड़ा समुदाय उपलब्ध है। शोध और मानकीकरण, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो और समाज विज्ञान के संस्थान हो, इनमें पुस्तकीय ज्ञान के बिना और ज्ञान के पुस्तकीय रूप के बिना शोध संभव नहीं है।
1: बिल्कुल ठीक बात है।
0: इसलिए यह जो भरोसे का प्रश्न है
1: जी,
0: मेरे लिए हवाओं की बस्ती में कम है, लिखित शब्दों की दुनिया में ज्यादा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा चौबे साहब। मैं अशोक जी के पास जाऊंगा जो कि पुस्तकों के प्रकाशन से जुड़े हुए हैं। ये जो आरोप लगाया जाता है कि अब लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अभी हमारे सामने दो विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसा नहीं है, लोग पढ़ते हैं, नई पीढ़ी भी पढ़ने में रुचि ले रही है। तो आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर केवल आपके अनुभवों की शक्ल में मैं जानना चाहूंगा, इस पूरे प्रसंग को आप किस तरह देखते हैं?
2: देखिए, जहां तक सवाल है पुस्तकों का इंटरनेट के आने के साथ क्या प्रभाव पड़ा।
1: जी,
2: पुस्तकें कल भी बिकती थी, आज भी बिकती हैं, आगे भी बिकती रहेंगी, क्योंकि पुस्तकें हमारा भविष्य है। हम रहे ना रहे पुस्तकें रहेंगी। आज हम किसी से चर्चा कर लेते हैं लेकिन हमारे जाने के बाद पुस्तकें ही बोलेंगी। आज भी मुंशी प्रेमचंद जी को और जो प्रतिष्ठित लेखक हुए हैं उनको आज भी पढ़ा जाता है।
1: जी जी।
2: तो इंटरनेट के आने से कुछ सुविधाएं जरूर बढ़ी होंगी लेकिन पाठक खत्म नहीं हुआ, ना कभी खत्म होगा।
1: बढ़िया।
2: क्योंकि जो रिसर्च है वो सब पुस्तकों के बेस पे है। दूसरी चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हम जब पुस्तक को पढ़ते हैं, जैसे कि पहले के लोग कहते थे और हमने भी देखा है इस चीज को, बाहर बारिश की बूंदे होती है तो एक भीनी भीनी खुशबू आती है। इसी तरीके से कागज की भी खुशबू होती है जो कि हमारे को प्रभावित करती है। हम किताब कहते हैं मुझे पढ़, और जब हम पुस्तक को पढ़ने लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक रीड में ही पुस्तक को खत्म कर देते हैं। तब पुस्तकों का भविष्य तो उज्ज्वल है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस चीज में हमने बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं, देखा भी है, बुक फेयर्स में भी गए हैं, पाठकों से भी मिलते हैं और खुद काउंटर पे खड़े होकर भी देखते हैं पाठक की रुचि क्या है, और जो पाठक की रुचि है उस रुचि के मुताबिक अगर हम प्रकाशित करते हैं पुस्तकों को, वो पुस्तकें चलती हैं, बिकती हैं। जहां तक सवाल रहा सरकारी संस्थानों का, सरकारी संस्थानों की किताबें इसलिए ज्यादा बिकती हैं क्योंकि उनके पास साधन ज्यादा है। NBT 26 भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित करता है, साहित्य अकेडमी भी 26 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करती है कि उनके पास संसाधन है, उनके पास एरिया बहुत बड़ा है। एक चीज और भी उदाहरण दूंगा कि हमने कुछ किताबें ऐसी छापी जो कि लाइन लग के बिकी और वो आज भी अच्छी सेलिंग पे है। बड़े संगीतकारों की किताबें हैं, आनंद बख्शी जी की किताबें हमारे यहाँ से आई हैं, वो बहुत संख्या में आज भी बिकती हैं। पाठक खत्म ना तो हुए ना हो सकते।
1: ठीक कहा आपने गुप्ता साहब कि पाठक कभी खत्म नहीं होंगे। ये जरूर हो सकता है कि माध्यम कुछ बदल जाए, और इस माध्यम बदलने की बात पर ही मैं दोबारा से अभी टंडन साहब के पास जाऊंगा। टंडन साहब, मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है इस सारी बातचीत को सुनने के साथ ही, और वो सवाल ये पैदा होता है कि जो इंटरनेट के माध्यम से जो साहित्य हमारे सामने आ रहा है, ऐसी आप अनेक इंटरनेट की पत्रिकाएं देखते हैं जिन पर कविताएं, कहानियां, आलोचना, साक्षात्कार, तमाम विधाओं में सामग्री आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने हिंदी समय नाम की एक वेबसाइट बनाई है जिस पर हिंदी साहित्य का बहुत सारा अच्छा साहित्य, बहुत सारी अच्छी सामग्री वहां हम निःशुल्क देख पढ़ सकते हैं। इसी तरह से भारत सरकार का जो प्रकाशन विभाग है, उन्होंने एक तरीके से पूरा आर्काइव बना दिया है जिसमें आजकल जो साहित्य की पत्रिका है उसके पिछले 40-50 साल के तमाम अंक आप उनकी वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क पढ़ सकते हैं। मेरे मन में एक सवाल तो ये आता है कि इंटरनेट के आने से एक तरफ तो ये संकट हमको कभी कभी दिखाई देता है कि पाठक कम हो जाएंगे, अब इंटरनेट पर चूंकि मनोरंजन सहज ढंग से मिल जाता है तो उसको युवा पीढ़ी ज्यादा पसंद करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है कि पहले ये कहां संभव था कि अगर अगर मुझे आजकल का 1988 का या 1975 का कोई अंक देखना है तो मैं अपने घर बैठे एक सेकंड में इंटरनेट की मदद से देख लेता हूँ। इसी तरीके से जो भारत सरकार का आर्काइव है इंटरनेट पर, उसमें आप तमाम पुरानी किताबें पीडीएफ फॉर्म में वहाँ उपलब्ध है, उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे एक सवाल है और एक जिज्ञासा है। सवाल तो यह है कि ये जो माध्यम बदल गए हैं, इन बदले हुए माध्यम को भी हम

0: किताब का ही एक दूसरा रूप मानने में हमें क्या कोई झिझक होनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए आप नई पीढ़ी के लिए क्या सलाह देंगे? आप नई पीढ़ी को पुस्तकों तक जाने के लिए क्या मार्गदर्शन करेंगे?
1: अभी भी थोड़ी सी असहमति के साथ मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ
0: जी,
1: कि लाइब्रेरीज में जो भीड़ दिख रही है
0: जी जी,
1: वो केवल उन्हीं बच्चों की, उन्हीं शोधार्थियों की भीड़ है जिनको अपना शोध प्रबंध लिखना है या जिनको अपनी परीक्षा देनी है, और जो टेक्सचुअल मटेरियल है या तो वो लेकर उसकी फोटोकॉपी कर लेते हैं और या अपना शोध प्रबंध लिखने के लिए जो अपेक्षित सामग्री है वो जुटा ली और उसके बाद वो प्रबंध लिख लिया। मूल बात यह है कि पाठ्य पुस्तकों या वो पुस्तकें जो जीवन की राह को प्रशस्त करती हैं
0: जी,
1: हम चाहते हैं अभिभावक के रूप में, शिक्षक के रूप में, कि भारतीय समाज को, युवा पीढ़ी को वो किताबें पढ़नी चाहिए
0: जी,
1: जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे समाज सुधारक थे, जो हमारे चिंतक विचारक थे, उनके प्रति जो अभिरुचि है पठनीयता की वो नहीं दिख रही
0: जी।
1: अब ये अलग बात है कि अगर आपको इंटरनेट पर जाकर किसी तथ्य की खोज करनी है, किसी सूचना की जानकारी अर्जित करनी है, तो आप गए और वहां से अर्जित कर ली। लेकिन वो जो गुप्ता जी कह रहे थे, किताबों की जो खुशबू है वो खुशबू तो जीवन से गायब हो गई। हम तकिए के पास किताब रख कर सोते थे कि भाई जब मन करेगा उठाएंगे और पढ़ लेंगे। हम अपनी एक घरेलू लाइब्रेरी थी, वहां से कोई किताब निकाल कर पढ़ने का मन करता था। पहले हम जो किताब पढ़ते थे या खरीदते थे वो 10 लोगों को बताते थे कि ये किताब नई आई है, ये पढ़िए, आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, या मुझसे ले जाओ आप पढ़ लो। ये भावना विलुप्त हो गई है। अब अद्यतन उपकरणों ने, स्वाभाविक है, ये भी आधुनिकीकरण का एक लक्षण है और आधुनिकीकरण की तरफ हम सबको बढ़ना ही चाहिए। हम एक आर्काइव की तरह किताबों को वर्चुअल बना रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो शोध आदि हो रही हैं वो ऑनलाइन फैक्ट्स को, तथ्यों को लेकर के किताबों में, शोध प्रबंधों में जो जा रहा है वो विश्वसनीय है कि नहीं, ये संकट है
0: जी।
1: क्योंकि बच्चे ऑनलाइन चीजों को ले लेकर कोट कर रहे हैं, तो जब तक पुस्तक देखी नहीं, मूल ग्रंथ देखा नहीं, संदर्भ ग्रंथ देखा नहीं, और आप सेकंड थर्ड सोर्स से, दूसरे तीसरे चौथे सोर्स से काम कर रहे हैं,
0: वो ठीक नहीं।
1: और जो ऑनलाइन डला हुआ है वो कितना प्रामाणिक है ये हमें भी नहीं पता।
0: ठीक बात है।
1: और हम केवल हिंदी की पुस्तकों की पठनीयता की बात नहीं कर रहे
0: जी,
1: जो विज्ञान का विद्यार्थी है वो विज्ञान की किताब नहीं पढ़ रहा, जो अंग्रेजी का विद्यार्थी है वो केवल उतना पढ़ रहा है जितना उसके पाठ्यक्रम में निर्धारित
0: काम चल
1: रहा है। उसको जो भविष्य के जो आजीविका साधन है उनकी चिंता ज्यादा है
0: जी।
1: उसको लगता है कि साहित्य पढ़ने से क्या होगा, उसको लगता है कि प्रेरक पुस्तक पढ़ने से क्या होगा, अभी तो मेरे सामने ये। तो मुझे लग रहा है हमें अपनी विद्यालय और महाविद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षा में कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो पुनर्जीवित हों। तो जब तक आपने प्रेमचंद की एक कहानी को समझना है तो उसकी 10 कहानियां तो पढ़नी पड़ेंगी ना
0: जी,
1: तब
0: जी।
1: तो प्रेमचंद समझ में आएगा ना। तो ये थोड़ा सा एक अंतराल मुझे लग रहा है समाज में खड़ा हुआ है और इसके लिए हम सबको कुछ प्रयत्न तो करने पड़ेंगे।
0: तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं चौबे साहब के पास जाऊंगा, पूरी बातचीत आप सुन ही रहे हैं जो अभी टंडन साहब ने अपने अनुभव बताया और कुछ जिसको कहना चाहिए कि अप्रिय सत्य का उद्घाटन भी किया, लेकिन इस स्थिति को बेहतर बनाने में, पुस्तकों को जीवन में फिर से लौटाने में, और ये कहना चाहिए मुझे कि इंटरनेट के बावजूद पुस्तकों की जीवन में विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए हम सब लोग जो कि शिक्षक हैं, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, या तमाम जो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि समाज के प्रति, देश के प्रति एक थोड़ी सी अपने दायित्व की भावना को महसूस करते हैं, वो इस स्थिति को बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर आप कुछ बताएंगे तो अच्छा होगा।
2: पल्लव जी, सबसे पहले तो बहुत विनम्रता पूर्वक मैं एक तथ्य रखना चाहूंगा
0: जी,
2: कभी भी पूरा समाज नहीं पढ़ता है।
0: ठीक बात है।
2: अगर आप उसको एक खास शब्दावली में कहें तो एक खास किस्म की एक अभिजात्य कला है
0: पढ़ना। हाँ हाँ हाँ, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते सब लोग।
2: तो किसी समाज के पूरे वर्ग से अपेक्षा करना कि सब लोग पढ़ेंगे और सब लोग पुस्तकों के दुनिया में होंगे, ऐसा कुछ ज्यादा आशावादी हो जाना है।
0: जी जी।
2: तकनीकी को लेकर एक अविश्वास का भाव समाजों में रहता है और स्थिर समाजों में ज्यादा रहता है
0: जी।
2: आपको ध्यान होगा, हम सभी 90 के दशक का वो दिन याद करें जब कंप्यूटरीकरण हो रहा था भारतीय कार्यालयों का, तो कितना है तौबा मचा।
0: जी जी जी।
2: उसी ढंग से जब इंडोनेशिया में टीवी आया तो उसे शैतान की आवाज कहा गया।
0: हाँ, हमारे यहाँ बुद्धू बक्सा कहा गया
2: जी। पर तकनीकी के साथ, इंटरनेट के साथ मैं पुस्तकों की दुनिया का एक सकारात्मक संबंध भी देखता हूँ।
0: जी जी।
2: तकनीकी ने, इंटरनेट ने ज्ञान की दुनिया को लोकतांत्रिक बनाया।
0: हाँ।
2: आज सूचना ज्ञान नहीं है
0: जी।
2: हम लोग जब विश्वविद्यालयों में पढ़ने आए उस समय हमारे आचार्य जी लोग

0: सूचना देते थे और सूचना को ज्ञान बताते थे। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि आज विद्यार्थी के पास आचार्य से अधिक सूचना उपलब्ध है। समाज में हर व्यक्ति के पास सूचनाओं का जाल उपलब्ध है। फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान व्याख्या है और पुस्तकें व्याख्या का एक मानक माध्यम है
1: जी।
0: इंटरनेट उन पुस्तकों को लोकप्रिय बनाता है और पुस्तक उनकी एक व्याख्या उपलब्ध कराती है। एक और तथ्य मैं रखना चाहूंगा कि इंटरनेट की दुनिया ने रचनाकार को यानी पुस्तक के रचनाकार को अधिक बौद्धिक परिश्रम करने के लिए उत्साहित किया है।
1: ठीक बात है।
0: ऑथर की अथॉरिटी डाइल्यूट हुई है। अब महानता की, महान पुस्तकों की और महान रचनाकारों की घोषणा मात्र से काम नहीं चलेगा
1: जी।
0: अब उसे इंटरनेट ने ऐसा उपलब्ध कर दिया है कि उन पुस्तकों को अपनी पठनीय महानता सिद्ध करनी हो। आसानी से ज्ञान जनता तक पहुंच रहा है। ज्ञान की उपलब्धता सुनिश्चित करके पुस्तक ने एक मानकीकरण का माध्यम तय किया है। एक और जो मैं अपने जीवन से एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर विद्यार्थी पुस्तकालय में जाता है
1: जी,
0: या समाज का कोई भी वर्ग पुस्तक मेले में जाता है
1: जी जी,
0: तो और कुछ नहीं तो वो 10 टाइटल से तो परिचित होता है।
1: ठीक बात है, ठीक बात है।
0: पुस्तकों की दुनिया से परिचय का, उसका इश्क शुरू होने का एक शुरुआत।
1: हाँ हाँ, एक प्रारंभ।
0: और मुझे लगता है कि इंटरनेट ने पुस्तकीय इश्क की एक दुनिया बनाई है और तकनीकी को पुस्तकीय इश्क के प्राथमिक चरण के रूप में देखा जाना चाहिए।
1: सुंदर बात कही।
0: धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर बात कही। आपकी बातों से असहमति का तो कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक बातें कही और ये बात सही है कि इंटरनेट ने सुलभ तो किया है चीजों को। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप ही की बात को दोहरा दूं कि अपरिचय समाप्त होगा तभी परिचय से ही तो प्रेम होगा। जब परिचय ही नहीं है तो प्रेम कहाँ से होगा। अब ये कि इंटरनेट की वजह से हमारे पास ये सुविधा तो हो गई है कि घर बैठे हम किताब भी मंगवा सकते हैं। इंटरनेट पर जो बहुत अच्छे मंच हैं, उन मंचों के माध्यम से हम जान भी सकते हैं कि इन दिनों कहानी में, कविता में, उपन्यास में, नॉन फिक्शन में कौन सी अच्छी किताबें आई हैं। उनके बारे में अगर मुझे जानकारी लेनी है तो वो एक तरीका है जिससे मैं उन किताबों के बारे में, उन विधाओं के बारे में मैं जान सकता हूँ और जानकर मैं उन किताबों को अपने पास मंगवा लूं, सहेज लूं। और इंटरनेट तो ये सुविधा भी देता है कि मैं अगर किसी जो पुस्तकों का क्रय करने वाली वेबसाइट्स हैं उनकी वेबसाइट्स पर आप जाएं तो आप जैसे मान लीजिए कोई एक किताब नहीं आई है तो उसके प्रारंभ के 4-5 पृष्ठ वो वेबसाइट पर होते हैं तो मैं देखकर किस तरह का कंटेंट है, मेरे काम का है या नहीं है, मैं देखकर फिर मंगवाऊं। तो जो काम मुझे दुकान पर जाकर समय खराब करके पैसा खर्च करके करना होता था वो अब मैं घर बैठे मोबाइल पर कर सकता हूं। तो आप सही कहा आपने कि एक रास्ता तो बना है, तो इस रास्ते को और सुगम बनाएं और बेहतर बनाएं, इस पर सरपट हम दौड़े, हमारा समाज बेहतर बने, हमारा समाज जागरूक बने, शिक्षित बने और देश के प्रति हम और ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, कंसर्न फील करें, हम और ज्यादा अपना भाव व्यक्त करें। इसके लिए कुछ संक्षेप में गुप्ता जी आप कहना चाहे तो आपका स्वागत है।
2: लेकिन जब आदमी किताब पढ़ता है, किसी भी वरिष्ठ नेता की या किसी की, तो उसकी बायोग्राफी पढ़ता है तो उसको पता लगता है कि ये सच है और आगे भी ये चलता रहेगा, इसके अंदर कोई दोहरा नहीं है। इंटरनेट का पाठक अगर है तो कोई एक वर्ग है, सारे नहीं है। मैं कहूंगा 40 से 60 तक के अभी भी लोग या 70 तक के अभी भी लोग किताब ही पढ़ते हैं, वो इंटरनेट पे नहीं जाते।
0: ठीक बात।
2: ना इंटरनेट पढ़ते, तो ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। ये एक जिस तरीके से आजादी से लेकर अब तक जो भी उपलब्धियां हुई हैं वो चल रही हैं और चलती रहेंगी। सामाजिक बदलाव भी होगा और समाज के अंदर कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे।
1: ठीक बात है।
2: इंटरनेट शुरू हुआ था तो लोगों ने बड़ा हंगामा किया था, होगा। आज हम IT के अंदर वर्ल्ड में नंबर एक पे हैं, तो ये चीजें भाई चलती रहेंगी। और मेरा एक अनुरोध और भी है कि हमें भी चाहिए कि अपने आसपास कोई भी जगह अगर खाली है तो वो कुछ किताबें,
1: ठीक बात है,
2: होनी चाहिए, बच्चे पढ़े उसको।
1: ठीक बात कही आपने गुप्ता साहब। तो मैं निष्कर्ष के रूप में जी जी जी
2: एक चीज और मैं कहना चाहूंगा
1: जी
2: कि अभी सरकार की एक योजना आई है जिसमें हर पंचायत में एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है। हर गांव में जितनी भी पंचायत है उसमें एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है, उत्तर प्रदेश का तो मुझे मालूम है, और सरकारी फंड से किताबें खरीदी जा रही हैं
1: जी।
2: और वो जो है उसके अंदर जो किताबें उपलब्ध होंगी, जब उपलब्ध होंगी तो पाठक भी होंगे।
1: बिल्कुल।
2: तो वो सरकार की एक योजना है और योजना के लिए मैं सराहना करूंगा सरकार की। इस तरीके की योजनाएं और भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। सरकारी योजनाएं भी बहुत सारी हैं और अच्छी योजनाएं भी हैं। ये एक तरह से हमारी विफलता है कि हम उन योजनाओं योजनाओं के बारे में नहीं जानते या उनका लाभ जनता तक पहुंचाने में हम कई बार असफल हो जाते हैं, लेकिन जहां कहीं इस तरह की जानकारियां हैं उन जानकारियों को हमको अधिकाधिक पाठकों तक और उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो उन योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचा सके। आज की इस परिचर्चा के अंत में निष्कर्ष के रूप में मैं ये कह के बात खत्म करना चाहता हूं कि इंटरनेट के आगमन के बावजूद, इंटरनेट के जीवन में व्याप्त हो जाने के बावजूद, छपे हुए शब्द की प्रतिष्ठा, छपे हुए शब्द की महत्ता कभी कम नहीं होगी, छपे हुए शब्द की विश्वसनीयता हमेशा बनी रहेगी। और जो हमारे विशेषज्ञों ने अपने बहुत सारे उदाहरणों से, अपने बहुत सारे विवेचन के साथ हमको बताया कि पुस्तक अभी भी हमारे जीवन को प्रकाशित करने का सबसे सुंदर उपाय है। कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आसपास के युवा लोगों को, नए बच्चों को, विद्यार्थियों को इस बात के लिए उत्साहित करें कि वे केवल पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई ना करें, बल्कि किताबों को जीवन को बेहतर बनाने वाले उपकरण के रूप में देखें, तो संभव है कि हम एक बहुत सुंदर समाज बना पाएं, ऐसा समाज बना पाएंगे जो कि सच्चे अर्थों में एक स्वस्थ और सफल समाज होगा। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए मैं फिर से प्रोफेसर पूरनचंद टंडन, प्रोफेसर चंदन चौबे जी और हमारे प्रकाशक अशोक गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार। नमस्कार।
3: हवाओं की बस्ती, भरोसे के लोग, अंतरजाल की दुनिया में किताबों की महत्ता पर अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. पूरनचंद टंडन, वरिष्ठ साहित्यकार और प्राध्यापक डॉ. चंदन कुमार, प्रकाशक और समाजसेवी श्री अशोक गुप्ता और साहित्यकार और प्राध्यापक डॉ. पल्लव। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉ. पल्लव। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रही हैं युवा पत्रकार श्रीमती सुमन महलावत।
4: राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा 5 जुलाई 2026 को मासिम काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का प्रारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं स्वस्ति मंत्रों के साथ हुआ। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉ. कीर्ति काले मुख्य अतिथि थी। गोष्ठी का संचालन मंजू साक्य ने किया। काव्य गोष्ठी में सर्वश्री पंडित नमन, संदीप सजर, शैल भदावरी, सावित्री मलिक, कल्पना शुक्ला, मनीषा सक्सेना, नेहा नमन, रोहित गुप्ता, रोशन रोशू, मनोज मिश्रा कप्तान, नितेश चहल सहित 50 कवियों की उपस्थिति रही। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में BAPS स्वामी नारायण शोध संस्थान द्वारा राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन केशव काव्य कलरव 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की। शब्द सुमन बिखरे तो वातावरण साहित्य रस में डूब गया। कवि सम्मेलन में देश भर से रचनाकारों से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में मौलिक कविताएं, मुक्तकोर गजलें आमंत्रित की गई थी। सम्मेलन का मुख्य विषय गुरु, भगवान, सांख्य विचार और अक्षय आनंद जैसे आध्यात्मिक विषयों पर आधारित थे। चयन समिति द्वारा देश भर से प्राप्त प्रतिष्ठियों में से सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को चुना गया और इन रचनाकारों को अक्षरधाम परिसर में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सर्वश्री अभिलाषा कुमारी, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र, श्री स्वामी विवेकानंद, सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा, एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट शुभम सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कृत कवियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साहित्यिक संस्था काव्य कोना और डॉ. कुंवर बेचैन की 84वीं जयंती के अवसर पर 8 जुलाई को दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद के सभागार में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक कविराज कौशिक ने बताया कि श्री महंत नारायण गिरी महाराज की उपस्थिति में प्रसिद्ध कवि अशोक चक्रधर की अध्यक्षता में हुए कवि सम्मेलन में सुप्रसिद्ध शायर विजेंद्र सिंह प्रवाज, राजेश त्रिपाठी, कोमल रस्तोगी, कर्नल संजय चतुर्वेदी, प्रतीक सक्सेना, वीणा मित्तल, डॉ. तारा गुप्ता और डॉ. तुलिका सेठ का काव्य पाठ होगा। उल्लेखनीय है कि डॉ. कुंवर बेचैन का निधन कोरोना काल में हो गया था, तभी से उनके परिजन और अन्य लोग उनकी याद में साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित मावलंकर सभागार इंस्टीट्यूशनल क्लब में आयोजित साझी सादत, साझी विरासत कवि सम्मेलन एवं मुशायरा प्रेम, भाईचारे, मानवता और गंगा जमुनी तहजीब का एक यादगार उत्सव बन गया। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों और श्रोताओं ने यह संदेश दिया कि साहित्य सदैव समाज को जोड़ने, इंसानियत को मजबूत करने, मोहब्बत की रोशनी फैलाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम रहा है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखक डॉ. मोहम्मद नौशाद द्वारा लिखित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर आधारित दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का भव्य लोकार्पण किया गया। यह लोकार्पण उपस्थित साहित्यकारों एवं बुद्धिजीवियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा और भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन तथा राष्ट्रीय विरासत पर गंभीर विमर्श का अवसर भी बना। मुशायरे में देश के नामचीन शायरों और कवियों

0: अपनी बेहतरीन रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सर्वश्री संपत सरल, चरण सिंह बसर, कुंवर जावेद, अमीर इमाम, तबरेज हाशमी, हिमांशी बावरा, इब्राहिम जिशान, मनिका दुबे और अब्बास कमर ने अपने प्रभावशाली काव्य पाठ से कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित साहित्यकारों ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे आयोजन समाज में प्रेम, सद्भाव और आपसी विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7 जुलाई का सुप्रसिद्ध कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी द्वारा रचित पुस्तक कवि के मन से पुस्तक पर फेसबुक पेज पर लाइव परिचर्चा की गई। संचालन डॉक्टर अल्पना सुहासिनी ने किया। इस अवसर पर कवि कथाकार सर्वश्री त्रिलोक कौशिक, कवित्री कथाकार ममता किरण, समीक्षक डॉक्टर तबस्सुम झा, कवि आनंद शर्मा और अग्रसर की संपादक इंदु मिश्र ने पुस्तक पर विस्तार से प्रकाश डाला। 8 जुलाई को हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा कमानी सभागार कोपरनिकस मार्ग नई दिल्ली में श्री अनिल गोयल के उपन्यास नया सवेरा पर आधारित आपातनामा का नाट्य मंचन किया गया। नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन श्री सुनील रावत का था। 10 जुलाई को डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नोएडा द्वारा उपेंद्र पांडे के संयोजन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जाने माने कवि दिनेश रघुवंशी, अनिल अग्रवंशी और खुशबू शर्मा ने अपनी प्रेरणादायी रचनाओं से श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रही थी। प्रस्तुत कर रही थी युवा पत्रकार श्रीमती सुमन महलावत। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले सप्ताह हमारे अतिथि कार्यक्रम में हम पूर्व उच्चायुक्त और राजनयिक राधा वेंकट रमन जी से बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक बातचीत कर रहे थे। हमारी बातें चलती रही लेकिन स्टूडियो की घड़ी ने कहा कि कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, इसलिए हमने उस समय आपसे अनुमति ली, लेकिन अब हम आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
3: जो अपनी हिंदी को इम्प्रूव करना चाहिए, बोलचाल की हिंदी को
4: जी,
3: हम इस पर कोई एग्जाम नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, आपको टेस्ट नहीं करने वाले हैं, हम सिंपली
4: तो
3: चाहते हैं कि आप
4: कैसे सीखते हैं उस वेबसाइट से।
3: तो ये इसका नाम है एडुटेनमेंट। हमने एडुटेनमेंट इसलिए नाम रखा है उस वेबसाइट का, एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट
4: जी।
3: तो क्योंकि मैंने ये श्रीलंका में देखा कि लोगों का प्यार हिंदी फिल्म के ऊपर इतना है, और वो जो आपने देखा होगा इंडियन डायस्पोरा जहां भी रहता है
4: जी,
3: या इंडियन डायस्पोरा नहीं भी रहता हो, जैसे रशिया फॉर एग्जांपल है, जो राज कपूर को प्यार करता है, राज कपूर नरगिस फिल्में या मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में इतनी पॉपुलर है वहाँ आज के दिन तक,
4: बिल्कुल
3: वो हिंदी को प्यार करते हैं, वो हिंदी फिल्मों को देख के हिंदी सीखा है उन्होंने, तो वो हमने कहा है कि वो अट्रैक्ट होंगे इससे, और हमने हिंदी फिल्म गानों को चुना। तो हमने कहा ऐसे ऐसे गाने हम चूज करेंगे, उस गाने को लेके हम ग्रामेटिकली उसमें टीचिंग पॉइंट्स जो है वो निकाल के वो मेरे एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ दिया। मैंने तो मेरा ये मन में जो इंस्पिरेशन आ रहा था कि इसको लेके हम बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं
4: जी,
3: तो हमने edutainment.in नाम का वेबसाइट, और ये फ्री है, करीब 100 से अधिक गानों पे टीचिंग पॉइंट्स निकाल के उन्होंने उस पे डाल दिया गया है
4: जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये होगा। राधा जी, अभी हमने यही बात की कि जब आप सर्विस में थी तब अलग तरह की जिम्मेदारियां थी, सेवानिवृत्त होते हुए आपने अब ये हिंदी सिखाने की जिम्मेदारी ली है, आप सोलो ट्रैवलर हैं और बहुत घूमती हैं आप, तो मैं जानना चाहूंगी कि एक तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या आपका अनुभव है।
3: जैसे मैंने कहा ये पूरी लंबी कहानी, इसमें ये पता चला कि आपको कि मैं सोलो रही
4: जी,
3: सिंगल रही
4: बिल्कुल।
3: तो जब मैं इंडिया से बाहर गई तो मेरे को सेम बॉस जिन्होंने मेरे को बेलग्रेड जाने का प्रोत्साहित किया था और मैं गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है दुनिया देखने की
4: जी।
3: तुम एक जगह जा रही हो वहां नौकरी करोगी, ऑफकोर्स नौकरी पे तो कंसंट्रेट करना ही है, मगर बीच बीच में तुम्हें छुट्टियां भी मिलेंगी
4: जी।
3: तो छुट्टियों को वेस्ट मत करो और आस पड़ोस में जहां भी तुम देख सको वो देखो। तो ये वाला सोलो ट्रैवलर का ये एक्सपीरियंस है कि भाई तुम सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो कंट्री के बारे में, और किसी भी कंट्री को आपने अच्छी तरह समझना है तो पैदल चलो, पैदल चलो, एक्सप्लोर करो, गली गली कूचा कूचा देखो, लोगों से मिलो, बात करो, और तब जाके आप एक देश को अच्छी तरह पहचान पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे।
4: दलाई लामा जी

0: के साथ काम करने का कैसा अनुभव आपका रहा?
1: सबसे बढ़िया रहा मैं कहूंगी अभी
0: जी।
1: आजकल वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको बुलाया जाता है, बच्चों के साथ बात करते हैं
0: जी।
1: स्कूल लेवल में उनके माइंडफुलनेस थिंकिंग के बारे में बचपन से सिखाने की बात चल रही है, तो वो पूरा इंडिया जा रहे थे, तो मेरा रोल ही था प्रोटोकॉल ऑफिसर का उनका, उनके साथ जाना। तो मैं गई और जहाँ वो गए मैं भी गई, और मैंने पूरा जहाँ जहाँ वो इंडिया गए वहाँ वहाँ मैंने इंडिया देखा, अपने देश को देखा। तो ये मौका मुझे वहाँ मिला तो मुझे लगा फिर भी छोटा रहा, अभी मुझे बहुत देखना है इंडिया में।
0: बहुत इंस्पायरिंग है ये सब जो स्टोरी आप बता रही हैं, और यही आपसे जानने का मकसद भी था कि हमारे जो युवा साथी हैं इस समय जो आपको सुन रहे हैं, अक्सर क्या होता है कि बहुत चकाचौंध की दुनिया लगती है जब हम फॉरेन सर्विस की बात करते हैं, तो वो जो प्रोटोकॉल हम देखते हैं महसूस करते हैं तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन उसके पीछे की जो दुनिया है, कितनी मेहनत उसमें है और कितना स्ट्रगल है, वो सब भी आपकी बातों से हमें पता चला, और बहुत प्रेरणा भी मिली है कि आप काम करते करते कैसे हर मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो राधा जी, चलते चलते हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: मैं तो युवा साथियों के लिए एक ही संदेश देना चाहूंगी, जो आपने मन में ठान लिया कुछ करना है
0: जी,
1: तो आपको करना है। तो उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत डेडिकेशन की जरूरत है और बहुत डिटर्मिनेशन की जरूरत है। ये तीनों चीजें आप में होनी चाहिए। आपने ये ठान लिया कि मुझे ये करना है तो आपको उसमें वो इजीली नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी मिलेगा
0: जी।
1: एक तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपका माइंड ब्रॉड होगा, सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखना है, कल्चरल डेवलपमेंट भी देखना है, लैंग्वेजेस सीखनी है, भाषाएं सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है
0: जी। सेम थिंग भाषाएं जोड़ती हैं हमें,
1: भाषाएं छोड़ती हैं, तो एक एवरी चाइल्ड इन इंडिया शुड डिसाइड कि मैं वॉलंटरली मैं एक और भाषा सीखूंगा। तो यंगस्टर्स को ये प्रेरणा देना चाहूंगी कि वो भाषा सीखें, कोई भी भाषा सीखें, और इस वो दिमाग में ये रखें कि मैं कोई एग्जाम नहीं दे रहा इसमें, मुझे मगर भाषा सीखनी है तो मैं और कहीं स्टेट में जाऊंगा तो उस भाषा में बोलना भी चाहूंगा
0: जी।
1: तो भाषा सीखना एक इम्पोर्टेंट ये है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और वो अपना वो एक बार ठान लिया तो बहुत काम भी करना चाहिए
0: जी। मतलब अपने गोल्स जो है वो सेट करें और फिर उसके लिए प्रयास करें,
1: उसके लिए वो तैयार रहो कि आपने
0: अब जुट जाना है, पूरी मेहनत से अचीव करना है।
1: एब्सोल्युटली
0: जी।
1: ऑल इंडिया रेडियो के बारे में हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, और कुछ कुछ सीख हमें ऑल इंडिया रेडियो से मिली है
0: जी।
1: वो छोटा सा एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी
0: जी।
1: मेरी माँ को क्लासिकल म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, कर्नाटिक म्यूजिक उन्होंने बचपन में ही सीखा था, तो उन्होंने हमें भी सिखाने की कोशिश करी थी, और हमने कुछ थोड़ी बहुत कोशिश भी की थी, मगर वो डिटर्मिनेशन नहीं था जो मैं अभी बता रही थी उस काम में। क्लासिकल म्यूजिक सीखने में डिटर्मिनेशन नहीं था इसीलिए मैं पीछे रह गई, मगर म्यूजिक में मेरा रुचि बढ़ा उससे। तो सबसे इजीली राग को आइडेंटिफाई करने का तरीका मेरी माँ ने मेरे को आपके ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम से ही सिखाया
0: जी।
1: तो संगीत सरिता नाम का एक छोटा सा प्रोग्राम सुबह मेरे ख्याल से 7 से 7:15 बजे हर दिन ऑल इंडिया रेडियो में प्रस्तुत होता था, उसमें कभी एक हिंदुस्तानी क्लासिकल राग और एक कर्नाटिक क्लासिकल राग का कंपेरिजन होता था
0: जी।
1: फाइनली कौन सा हिंदी फिल्म गाना उस राग में बना है उससे वो कंक्लूड होता था प्रोग्राम। तो ये मेरी माँ ने हमें, काम कर रहे थे उस टाइम में मम्मी तो काम कर रही होती थी किचन का, और हम लोग स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते थे, बट वो रेडियो ऑन होता था ऑल इंडिया रेडियो, और हम ये संगीत सरिता प्रोग्राम सुनते थे और उसमें से वो क्लासिकल राग का ट्यून पिकअप करते थे
0: जी।
1: और मेरी माँ ने कहा है कि ये तुम्हें हिंदी फिल्म में तो बहुत दिलचस्पी है, क्लासिकल सीखना नहीं चाह रही हो, हिंदी फिल्म सॉन्ग तुमने ये सुन लिया, इस राग को जब भी सुनोगी तुम आइडेंटिफाई करोगी ये कौन सा राग है
0: जी।
1: ऐसे हमने सीखा था, जिसके लिए हम ऑल इंडिया रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये स्मृति हमारे साथ साझा करने के लिए।
1: मेरे हिसाब से इंडिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके ऊपर किसी न किसी तरह का प्रभाव आकाशवाणी से नहीं पड़ा हो, क्योंकि एक जमाना था जब हमारे

0: बस टीवी वगैरह नहीं था, उस पीरियड की हूँ मैं, उस विंटेज की हूँ, तो रेडियो के बगैर तो मगर हमारी ज़िंदगी कभी नहीं रही है। बचपन में मेरे पिताजी भी मुझे चिढ़ाया करते थे कि इसको दूध मिला मिला, खाना मिला नहीं मिला कोई नहीं, पर रेडियो ऑन रहेगा तभी ये कुछ करेगी। इसको चुप करवाना है तो रेडियो बजना चाहिए, इसको सोना है तो पीछे वो होना चाहिए। तो वो होता रहा, तो हम आकाशवाणी से तो बचपन से ही जुड़े रहे, और आकाशवाणी से हमने बहुत कुछ, हमें सीखने का मौका मिला। बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जो हम, एक ज़माने में एक ऑडियो बुक्स भी होते थे आपके। आकाशवाणी पहला इंस्टीट्यूशन होगा इंडिया में जिसने एक स्टोरी को जो है ऑडियो तौर से ऑडियंस तक पहुंचाया। तो हम वो भी बड़े चाव से वेट करके सीरियलाइज करा हुआ वो स्टोरीज सुनते थे। संगीत सरिता नाम के प्रोग्राम से हमने राग को आइडेंटिफाई करने के बारे में सीखा था, और गाने, फिल्मी गाने उससे सुन के, एक म्यूजिक डायरेक्टर, किसी भी फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर के स्टाइल को पहचानने का मौका हमें मिला कि कौन से म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म में कौन से गाने का स्टाइल क्या होता है, उनकी म्यूजिक क्या होती है। ये सब मौका हमें, अगर वो आकाशवाणी सुनने का मौका नहीं मिलता तो हमें सीखने का भी मौका नहीं मिलता। तो इस कारण मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ऑल इंडिया रेडियो को। मैं अपना तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, और मेरे समझ में, मेरे ख्याल से आज के दिन में भी ऑल इंडिया रेडियो का जो नेटवर्किंग और रीच जो है पूरे इंडिया में, वो कभी और किसी भी मीडियम का नहीं रहा होगा। ये एक मीडियम है जिसके लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है और समझना है। और वो उनकी सरल भाषा भी ऐसी होती है, और मेरे ख्याल से उनके रीजनल सर्विसेज भी इतने हैं, फैले हुए हैं पूरे इंडिया में। तो इनको तो मैं तो जितने बोलोगे आप वो कम है आकाशवाणी के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। एट द सेम टाइम उनको बहुत कंग्रेचुलेशंस भी देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी कि वो ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे मरते दम तक उनका साथ, जो हमारा जोड़ है वो बना रहे।
1: तो बहुत ही रोचक ये पूरी बातचीत रही। आज आप हमारे स्टूडियो में आई, राधा वेंकटरमन जी, आप पूर्व राजनयिक हैं, उच्चायुक्त आप रही हैं, और इतने सारे देशों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, और भारत में रहते हुए भी विभिन्न पदों पर आप रही, आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को इस पूरी बातचीत से बहुत लाभ होगा। बेहद रोचक ये पूरी बातचीत रही, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद तो मुझे देना है कि आपने ये मौका दिया मुझे, धन्यवाद।
1: तो अपने सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

अभी आपने सुना हमारे अतिथि में राधा वेंकट रमन भाग दो, भारत की उच्चायुक्त व पूर्व राजनयिक, भेंट करता थी नीलम मलकानी, प्रस्तुति काजल सूरी की थी। और लीजिए अब से कुछ ही देर में सुनेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक, कंपेयर जसपाल कौर।

हम आपको बताना चाहेंगे कि 10:10 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद, जी हाँ, जिसमें आप भेजेंगे अपने संदेश और हम करेंगे उनको शामिल। और आज आपके साथ होंगी मैं आपकी पसंद में, आपकी दोस्त कुसुमलता। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्व

0: पूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his 6-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his 3-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During the visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, the Prime Minister travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both countries. On the third and last leg of his 3-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th of July at the invitation of New Zealand Prime Minister

0: सभी सखियों का गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को हमारा राम राम।
1: रेनु, आपको भी हमारा राम राम।
0: यमुना, तुम्हें भी मेरा राम राम।
1: और एक बात और है, जब हम सखियों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सखियां ही कार्यक्रम सुनती हैं, सखा लोग भी कार्यक्रम सुनते हैं, हमारे भाई बंधु भी कार्यक्रम सुनते हैं, क्योंकि हम उन्हें भी कुछ न कुछ बताते रहते हैं कि बहनों को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये नहीं मानना चाहिए सिर्फ बहनें ही सुन रही, क्योंकि घर में जब रेडियो चलता है तो सारे लोग सुनते हैं। तो भाई, उनको भी हम राम राम करते हैं। जो बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं, सभी को हम अपना राम राम देते हैं। ठीक है,
0: और देखो यमुना, हम अपनी बहनों के लिए और अपने सखाओं के लिए भी बहुत सारी बातें लेकर आते हैं, बातचीत के विषय लेकर आते हैं। और जैसे कि आज 12 जुलाई है, 12 जुलाई को हमारे देश में, विदेश में बहुत सारे ऐसे दिवस होते हैं जो मनाए जाते हैं, और वो इसलिए मनाए जाते हैं ताकि हम सभी जागरूक हों,
1: जागरूक हों, और सबसे बड़ी बात हो उस जागरूकता के तहत हम भी आगे बढ़कर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसमें आगे बढ़ के अपना नाम भी रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें।
0: और देखो, जब हम जागरूक होंगे तो तभी तो हमारे मन में कुछ भी करने की आशा जगेगी। और देखो, आशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जिस इंसान के जीवन में आशा आ जाती है ना मन में, तो वो बुलंदियों को छू लेता है।
1: बिल्कुल, आपका इशारा मैं समझ रही हूँ। क्या कहना चाह रही हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय जो है आशा दिवस है, और खास करके इसी पर हमारी बात जो केंद्रित है।
0: बिल्कुल, और देखो, हम अपनी बहनों को ये बताते चलें कि जो आज 12 जुलाई को ये जो आशा दिवस मनाया जा रहा है, इसको कैसे मनाया गया था। 4 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एक मसौदा प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत 12 जुलाई को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में नामित किया गया था।
1: बिल्कुल, और जो बात हम कर रहे हैं विश्व शांति की, हम बात करें तो विश्व शांति की जो कुंजी है अंतरात्मा में निहित विश्वास रखते हुए होता है। तो देखा जाए तो एक तरीके से जो ये आशा दिवस हम मना रहे हैं, एक दिलों में एक अच्छाई लाने की बात है, अपने मन में सकारात्मक भाव लेकर के आगे बढ़ने की बात है। क्योंकि जब हमारे अंदर सकारात्मक भाव होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और लोगों का हम सहयोग कर पाएंगे, क्योंकि नकारात्मकता जो है वो जीवन को समाप्त कर देती है।
0: बिल्कुल, और देखो यमुना, जो वर्ल्ड पीस एंड लव के अध्यक्ष डॉक्टर ताउत जे थे, वो लंबे समय से प्रेम, शांति, अंतरात्मा और आशा को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करते रहे हैं। और उनका यही सार था कि आइए हम लोगों के दिलों में अच्छाई की भावना जगाएं, आशा को अपनाएं और अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कदम उठाएं।
1: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की स्थापना जो है दृढ़ता, सहयोग और इस अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है बहनों, कि एक बेहतर दुनिया तभी संभव है जब वैश्विक माने विश्व स्तर पर नागरिक अंतरात्मा से प्रेरित हो और आशा को अपनाए और व्यापक भलाई के लिए कार्य करे। यह वार्षिक आयोजन इस बात को याद दिलाता है कि मानवता मिलकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकती है और स्थायी शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। और सच कहें रेनु, तो जो आशाओं की हम बात कर रहे हैं, तो एक होता है कि सावन आता है तो उसकी हम बात करते हैं, हरियाली की बात करते हैं, लेकिन आशा जब हम बात करते हैं, आशा शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो उसकी भी एक सावन होती है, एक हरियाली उसकी होती है, कि आशाओं का जो सावन है उसे फैलाना, हमें आशा रूपी बात को, भाव को लोगों तक, जन जन तक ले जाना है। इसी गीत को हम माध्यम से, गीत के जरिए हम सुनवाना चाहेंगे कि आशाओं के सावन में कैसे हम आगे बढ़ते हैं।

0: और यमुना, आशाओं का सावन तभी अच्छा लगेगा जब चारों ओर हरियाली
1: होगी।
0: और हरियाली कैसे होगी? जब जगह जगह पर वृक्ष लगाए जाएंगे, यानी वृक्षारोपण किया जाएगा, क्योंकि वृक्ष न सिर्फ हमें श्वास लेने में मदद करते हैं बल्कि पूरे वातावरण को भी हरियाला बना देते हैं, पूरी धरती हरी भरी कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पर्यावरण है वो भी पूरी तरह से अच्छा हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आज जो है 12 जुलाई है, और 12 जुलाई को नई दिल्ली के पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है, जो दिल्ली के व्यापक हरित अभियान का एक मुख्य हिस्सा है। और इस कार्यक्रम का जो नेतृत्व है वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल। और यमुना, इस कार्यक्रम में 500 से अधिक वृक्ष मित्रों से बातचीत की गई है। इसके अलावा 16,000 से अधिक प्रतिभागी जो है वो वर्चुअल रूप से इससे जुड़े हुए हैं, और जो पर्यावरणविद है ना वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है।
1: बिल्कुल। और प्रमुख हस्तियां जो है उपस्थिति है उनकी इस कार्यक्रम में, और पर्यावरण जो विद है।

0: अनिल जोशी और अनूप हजेला भी शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। और एक बात, एक खासियत और है इस कार्यक्रम का कि मतलब जो एक पेड़ है वो माँ के नाम और मेगा वृक्षारोपण अभियान 2026 ये नाम दिया गया है, एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। यह आयोजन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से चल रहे हैं और मिशन 70 लाख पौधारोपण का है।
1: बिल्कुल, और यमुना इसमें सोने पर सुहागा हो जाए अगर हमारी जो बहनें और भाई सुन रहे हैं वो भी वृक्षारोपण करके आज के दिन को सुहाना बना दें।
0: बिल्कुल, जो भी सुन रहे हैं वो इसी बात का परिचायक बने कि हाँ हम भी ऐसा करेंगे, एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएंगे, अपनी धरती को हरी भरी बनाएंगे। और इसी बात को लेकर के देखते हैं हमारे जो लोकगीत के कलाकार हैं बहेंद्र शर्मा क्या कह रहे हैं।

0: पर्यावरण की बात हो गई, हरियाली की बात हो गई और बरसात का मौसम है, बारिश शुरू हो चुकी है। कभी धूप आ जाती है खिली खिली सी, तो कभी बारिश झमाझम होने लगती है।
1: यमुना देखो, जब धूप आती है तब मन करता है कि बारिश आ जाए, और जब बारिश आ जाती है, बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, तो उससे भी हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। बरसात का मौसम जहां अपने साथ गर्मी से राहत, ठंडी हवाएं और हरियाली की सौगात लेकर

0: आता है उससे तन मन को राहत तो बहुत मिलती है, मगर यमुना उसके साथ साथ बारिश में कहीं संक्रमण और बीमारी की आशंका भी बढ़ जाती है। तुम्हारा क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही कह रही हो। तो ऐसे में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और ताकि उनके जो स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ने वाला है वो रुक जाए। तो इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ पर्यावरणविद भी हैं। तो स्टूडियो में आ चुकी हैं, चलते हैं उन्हीं से जानकारी लेते हैं और बातें करते हैं कि बरसात के मौसम में क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, अपना अपने बच्चों का भी।
0: बिल्कुल ममता प्रियदर्शनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए और इस विषय पे चर्चा करने के लिए।
0: तो आप हमारे सखियों को पहले ये बताएं कि बरसात के मौसम में महिलाओं को किन किन ऐसी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है, जिनसे उन्हें बचना चाहिए।
2: देखिए बरसात आ चुकी है और हम सबको, जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे कि एक उत्सव की तरह है, लेकिन उत्सव तभी होगा जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल सही।
2: और महिलाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद का स्वास्थ्य देखना, क्योंकि परिवार की धुरी है, परिवार के साथ साथ उनको अपनी सुरक्षा का बरसात में जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो खुद बीमार पड़ जाएंगे बहने तो फिर दूसरों को परिवार को कैसे ठीक कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो महिलाओं को चाहिए कि देखिए अभी संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बरसात में, अगर जो शारीरिक व्यायाम करती है या बाहर जाती है वो नहीं जा पाते, बच्चे सारा दिन घर में रहते हैं तो वो कुछ कर भी नहीं सकते, कि उनको भी देखना जरूरी है। साथ में कभी बच्चे गीले होके आ गए अपने बरसात में बाहर निकल गई, वो गीली हो गई, गीले कपड़े ना पहने, अपनी कम से कम जो है सो अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि तुरंत से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अच्छी नींद लें, पर्याप्त नींद लें, क्योंकि दिन भर काम में इतना थक जाती हैं कि वो सोचती हैं बस हम परिवार बच्चों की सेवा करते रह जाए परिवार में, लेकिन नींद लें, संतुलित भोजन लें, अपनी थाली ठीक रखे, हरी सब्जियां खाएं, बाहर का खाए ना, बाहर जंक फूड ना खाएं, बाहर का कटे जो फल होते हैं या जो सामान है उसको बाहर ना रखें, खुला ना छोड़ें। इसी सब चीजों को उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहनें अगर स्वस्थ रहेंगे तभी उनका परिवार और हमारा समाज सुरक्षित रहेगा।
1: एक बात और है कि बारिश की इस मौसम में रेणु देखा जाता है ना कि पाचन और पेट की समस्याएं ज्यादा हो जाती है, तो इसके क्या कारण है और इसके उपाय क्या है?
2: ये सही कहा आपने कि बारिश के मौसम में एक तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है, संक्रमण बहुत जल्दी होता है, और जैसे आपने कहा कि पाचन पे और हमारा खान पान पे उसके कारण पेट बहुत जल्दी जल्दी पेट की समस्याएं हो जाती है। देखिए सबसे ज्यादा इसका मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं जल संरक्षण पे काम भी कर रही हूँ और गाँव में भी मैं जाती हूँ तो देखती हूँ, साफ सफाई के साथ साथ पानी का ख्याल रख, अच्छा पानी पीना। देखिए अच्छा पानी बहुत जरूरी है, अगर हम दूषित जल है, अगर हम पानी कहाँ से आ रहा है गंदा है, अगर हम उसको बॉयल करके पिए, प्रॉपर उबाल के पिए बहने, तो यूजुअली जो है सो 90% बीमारियां जो होती हैं सो बरसात में पानी जनित होती है। तो अगर हम उसको ठीक से रखें, पानी ठीक से पिएंगे, तो हमारा पाचन, हमारा शरीर ठीक रहेगा, और साथ ही साथ पाचन के लिए जैसे अभी हम कह रहे थे बासी भोजन ना खाएं, बहुत गरिष्ठ भोजन ना खाएं, जो मौसमी सब्जी मिलती है, मौसमी फल मिलता है उसी को खाएं, बाहर निकल रहे हैं कुछ भी बाहर से ना खाएं, और अपने आप को जो है सो ऐसा कम खाएं, गरिष्ठ खाएं, गरिष्ठ ना खाएं, और नींद का जरूर ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा बीमारियां तो उनको नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले कि अगर कुछ भी लगता है जैसे त्वचा पे या भी मच्छर बहुत आ रहे हैं, तो हम अगर कुछ बीमारियां हो जाती है तो आसपास के जो चिकित्सक हैं नजरअंदाज ना करें अपनी बीमारी को, तुरंत जाकर के जो आपके चिकित्सक हैं या डॉक्टर की सलाह जरूर ले। मैं बहनों को कहना चाहती हूँ, छोटी हो कि बड़ी बीमारी, कुछ भी हो चाहे पाचन से रिलेटेड हो, तो घरेलू इलाज थोड़ा मोड़ा जो रसोइयों में जो आप करते हैं रसोई में वो करें, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
1: बिल्कुल, हम भी कहेंगे रेनू कि हम लोग तो डॉक्टर का सलाह लेंगे, साथ साथ हमारी सखियां भी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में अपने स्वास्थ्य को आपको कैसे सही बनाए रखना है। कार्यक्रम हमारा जारी है गृहलक्ष्मी, और इस समय हमारे साथ है रेनू मेरी सखी और हमारी जो विशेषज्ञ है, इस कार्यक्रम जो बातचीत चल रही है बरसात के मौसम में स्वास्थ्य समस्याओं से निदान पाने का, तो डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी। तो ममता जी, आपकी पसंद का कोई गीत आप बताइए जो आपको हम सुनवाएं और हमारी सखियां भी सुने।
2: देखिए बहुत अच्छा आपने पूछा। देखिए बरसात का मौसम है और अगर उत्सव हम मना रहे हैं तो हवा को भी रोक ले, मौसम को भी ऐसा रोक ले, रुक जाए हवा, मेरा एक पसंदीदा।
0: क्या बात है, बहुत ही

0: दिवाली में इंद्रधनुषी थाली हम लोग अक्सर कहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: रंग
1: बिल्कुल
0: बिरंगा थाली करिए, मौसमी जो भी आपकी सब्जी है,
1: फल
0: टमाटर
1: है
0: है, जो फल
1: बिल्कुल
0: है, उन सबको मिला करके, साथ ही सकारात्मक रखिए, अपने आप को पॉजिटिव सोच रखिए कि
1: जी
0: हम किसी चीज में स्ट्रेस ले रहे हैं, प्रॉब्लम में कर रहे हैं, कि हर घर के छोटे छोटे तनाव ले रहे हैं, उससे अपने आप को बचा करके रखिए। घर में ही छोटी मोटी अपनी शारीरिक एक्टिविटी करिए, जिससे आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, वो भी बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए, आप दूसरों को खुशी देने के चक्कर में अपने लिए मी टाइम रखिए, 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए,
1: जी
0: सोचिए, खुश रहिए, और साथ ही साथ जो है अपने साफ सफाई, आसपास के साफ सफाई का जरूर ध्यान रखिए, इससे आप तुरंत संक्रमण नहीं फैलेगा और आप स्वस्थ रह पाएंगे।
1: बिल्कुल सबसे बड़ी बात है रेनू की, देखो आपसे भी कहेंगी ममता जी कि आप ही देखती हैं कि बरसात के मौसम में जब गीले कपड़े हो जाते हैं
0: जी
1: तो चाहे वो युवतियां हो चाहे महिलाएं हो, क्या करेंगे, अरे अभी सूख जाएगा, थोड़ा सा ही तो गीला है, कोई बात नहीं है, कौन बदलने जाए, बड़ा आलस से लगता है। तो
2: बिल्कुल
1: ऐसे में आप देखते हैं वो नजरअंदाज करती हैं, गीले कपड़े ही पहने रह
0: बिल्कुल
1: जाती हैं, तो
0: बिल्कुल
1: इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो आंतरिक सफाई करने की बात है, आंतरिक स्वच्छता शारीरिक रूप से, उसके विषय में आप थोड़ा सा बताएं।
0: जैसे आपने कहा कि युवतियाँ एकदम नया नया जब वो बड़ी होने लगती हैं तो शारीरिक उनके जीवन में, मतलब शरीर में कई बदलाव
1: बदलाव
0: होते
1: आते हैं
0: हैं।
1: जी।
0: उसके बाद अगर हम खुल के बात करें तो माहवारी होती है, उसमें अगर हम अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेंगे, जो हमने पहने हुए हैं, अगर गीले कपड़े पहने रह जाएंगे तो आपके जो वैसे अंतर वस्त्र हैं वो अगर गीले रह गए हैं तो आसपास आपको इन्फेक्शन, फंगल, जो आजकल फंगस के इन्फेक्शन के, इन सब के चांसेज हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को पूरे शरीर के आंतरिक अंगों के भी स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। तो
1: जी
0: हम तुरंत सूखे कपड़े पहने, हम कपड़े तुरंत बदलें, सूती कपड़े पहने, इस तरह से कि अगर गीले कपड़े पहन के आ गए और सारा दिन रह गए तो अगर इन्फेक्शन हो गया, जो हम यूज करते हैं माहवारी के दौरान, उसको भी साफ सफाई का ख्याल रखें, उसको भी बदलें,
1: जी
0: तुरंत चेंज करें, ये सब जरूरी है। और साथ में जो महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं,
1: जी
0: वो लोग भी हमारा कार्यक्रम बहुत सुन ही रही होंगी,
1: जी
0: तो मैं उनके
1: बिल्कुल
0: लिए भी कहना चाहूंगी कि गीले कपड़े कम से कम ना पहने, बारिश में बाहर ना निकलें, फिसलने का डर हो सकता है,
1: हाँ
0: और साथ ही साथ खान पान में बासी ना खाएं, रात का भोजन सुबह ना खाएं, और
1: जी
0: वैसी चीजें ना खाएं जिससे उनको परेशानी हो सकती है, खास
1: जी
0: करके जो, और साथ ही
1: जी
0: जी
1: इशारा कर रही है रेनू, कुछ पूछना चाह रही, क्या
2: नहीं,
1: मन में क्या सवाल आ रहे हैं?
2: मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए डॉक्टर ममता जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि जब कपड़े गीले हो जाते हैं तो उससे इन्फेक्शन का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारी बहनें चीज का ध्यान रखेंगी। इसके साथ साथ डॉक्टर ममता जी, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस मौसम में मौसमी बीमारियां बहुत जल्दी हमारे ऊपर आक्रमण कर लेती हैं, तो और जब वो आक्रमण कर लेती हैं तो हम बहुत समय के लिए बीमार पड़ जाते हैं, तो हम बीमार ना पड़े उससे हमें अपने आप को कैसे बचाना है?
0: ये अच्छा पूछा आपने कि अभी क्योंकि बरसात के मौसम में, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि अपने आसपास के परिवेश के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, स्वच्छता का ख्याल रखें, और साथ में जो अगर हमें छोटी मोटी बीमारियां हो रही है संक्रमण के कारण, तो हम कम से कम डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें। अपने आप को जितना हम साफ सफाई रखेंगे, जितना गीले कपड़े नहीं पहनेंगे, खान पान सही रखेंगे उस हिसाब से, और पानी, जैसे हम शुरू में भी बात करते हैं बरसात के मौसम में, पानी का ख्याल रखें, पानी अगर गंदगी है तो उसको सफाई रखें, और जो गांव में जहाँ पे मच्छर ज्यादा है या वैसे ही, क्योंकि मलेरिया और कई बीमारियों का चांस बढ़
1: जाता
0: वगैरह
1: भी हो जाता है,
0: डायरिया
1: गर्मी भी तो पड़ती है बरसात के साथ साथ,
0: बिल्कुल
1: चिलचिलाती धूप भी आ जाती है और तुरंत बरसात भी हो जाता है, तो जी मौसम का जो चेंज होना होता है, बदलाव, ये हमारे शरीर पर बहुत ही दुष्प्रभाव
0: बहुत
1: डालता
0: बहुत, और
1: है।
0: साथ में हाथ बहुत धोएं, क्योंकि WHO का कहना है कि अगर हम अपना हाथ समय समय पे बाहर से आके धोएंगे, घर में धोएंगे, और तो उससे हम 90% जो इस तरह की बीमारियां होती है बरसात जनित, उससे हम बच सकते हैं।
1: जी जल जनित बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। कार्यक्रम हमारा चल रहा है गृह लक्ष्मी, ममता जी आपके पसंद का भी हम पूरा ख्याल रखते हैं, हमारी बहने भी इंतजार करती है की अब गीत होगा, अब गीत होगा, तो चलिए बता दीजिए दूसरा आपका कौन सा गाना हम प्ले कर दें।
0: पर्वत के उस पार,
1: क्या अच्छा बात है, क्या बात है, सारे आप ढूंढ ढूंढ के रखी है अपने मन में, चलिए आपके मन का हम प्ले करते हैं।

0: ममता जी, देखिए बारिश में हमारी स्वच्छता तो बहुत हो गई, आपने बता भी दिया कि हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है। स्वच्छ रखेंगे तो हम जो मौसमी बीमारियां बारिश में आती हैं उनसे बचे रहेंगे, लेकिन अपनी स्वच्छता के साथ साथ भाई हमें घर की स्वच्छता का ध्यान भी तो रखना है, क्यों यमुना?
1: बिल्कुल। तो अपने घर की साफ सफाई हम कैसे रखें, इस बात को जानना चाहती रेनू।
2: मैं बहनों को कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी बात कर रहे थे यमुना जी, और कहा इन्होंने कि हम आसपास की परिवेश की सुरक्षा स्वच्छता का कैसे ख्याल रखें
1: जी।
2: ये बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ अपने आप को साफ रख लें और हमारे परिवेश में कहीं कूलर है, कूलर में पानी इकट्ठा हो रहा है, या कहीं गमले में पानी इकट्ठा हो रहा है, अगर हम बार बार, या पानी कहीं बाहर रखा है उसमें इकट्ठा हो रहा है, हम बार बार उसको बदलते नहीं है, तो उसमें कई बार लार्वा या मलेरिया के मच्छरों के लार्वा इकट्ठे हो सकते हैं, या जल जनित बीमारियां उसके कारण हो सकती है, मच्छर पनप सकते हैं, मक्खी आ सकती है। तो हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है कि हम आसपास जो अपने परिवेश में जहां जहां भी पानी हम स्टोर करते हैं या खुला में पानी रहता है उसको प्रॉपरली, मतलब बार बार या तो बदलें, कूलर की सफाई करें, या उसको इकट्ठा ना हो मतलब खुली नालियां आसपास है उसको ना रखें, उन सबसे परिवेश अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो आसपास आपका वातावरण स्वच्छ रहेगा।
1: और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पानी है काफी दिनों से इकट्ठा है उसे हटाएं, और जो छत है, छत पे जाते हैं तो बारिश आने से पहले लोग क्या करते हैं, कूड़े हटा देते हैं वहां से, भाई जल निकलने का रास्ता अवरोधित ना हो, वहां से जल निकल जाए। ये तो हुई हमारी बात की अपने स्वास्थ्य के साथ साथ कैसे घर आंगन को भी स्वच्छ रखें। आपकी एक बात मुझे याद रही, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप जल संरक्षण के लिए प्रयास कर रही हैं, तो आपका प्रयास क्या चल रहा है? और साथ ही साथ हमने देखा कि आपकी पुस्तक भी मैंने पढ़ी थी, जल माँ, तो इस विषय में भी थोड़ा बताएं और ये जल संरक्षण के लिए प्रयास के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं।
2: ये आपने सही कहा, देखिए बरसात का टाइम है अभी, तो हमारे लिए पानी, अगर हम उसको संरक्षित करते हैं तो वो पानी जो है हमारे लिए एक बहुमूल्य वस्तु हो जाता है, और अगर हम उसको नालियों में बहा देते हैं तो पानी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो जल संरक्षण का मैं प्रयास लंबे समय से कर रही हूँ, और मेरा शुरू से प्रयास है कि जल संरक्षण एक अभियान ना हो, वो मिशन हो लोगों को जल बचाने का। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का भी चल रहा है कैच द रेन, एक मुहिम चल रही है जिसमें पानी को आप वहीं बचाइए, वर्षा जल को बचाइए। तो मेरा ये कहना है कि धरती के पानी को आप नाली में ना बहाइए, उसको धरती की झोली में डालिए। आप छत पे रेन हार्वेस्टिंग है, भूजल का संरक्षण कीजिए, संवर्धन करिए, और जहां जहां पे आप पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर छत पे कर सकते हैं या जहां पे भी कर सकते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। बरसात का टाइम है, आप पेड़ लगाइए, धरती को पानी लौटाइए जहाँ से आपने लिया है, और अगली पीढ़ी के लिए उसको इकट्ठा होने दीजिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए।
1: ममता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और गृह लक्ष्मी कार्यक्रम से आप लाइव जुड़ी और बहुत अच्छी जानकारी दी कि बरसात के मौसम में महिलाएं अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें, अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का, अपने आसपास के। चलते चलते आपके पसंद का एक गीत और सुनवाना चाहेंगे हम
2: जी। जैसे हम वर्षा जल के संवर्धन के बात कर रहे थे, तो जो गागरी है आपके पास उसको जल से भरिए, तो पीतल की मुरी गागरी
1: क्या
2: एक पसंदीदा गीत है आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: और यमुना वीरांगना क्रम में आज हम अपनी बहनों को बताने जा रहे हैं सुचेता कृपलानी के बारे में। सुचेता कृपलानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और वे आजाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हमारी बहनें उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकती हैं।
1: बिल्कुल, और एक बात और बता दें कि आज 12 जुलाई है और अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र हर साल 12 जुलाई को यह दिवस मनाता है जो बालिकाओं की शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को समर्पित है। तो ऐसी देखा जाए तो आज की जो वीरांगना है और जो हमारी पूर्व की वीरांगना है, सभी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ किया है, अनोखा किया है, जिनसे हमें सीख लेने की बात आती है। तो चलिए देश पर जान लुटाने की हम बात करते हैं।

0: और यमुना जो हमारी बहनें हैं वो समय के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं, तो इसी तरह से डिजिटल साक्षरता अभियान में भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों, खासतौर से ग्रामीण और वंचित वर्ग के लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर करना है ताकि वो आधुनिक तकनीकों का लाभ उठा सके।
1: बिल्कुल, और डिजिटल साक्षरता जो अभियान चल रहा है इसका फायदा हमें जरूर उठाना है, आगे आने वाली पीढ़ी को भी इस पर ध्यान दिलाना है। और एक बात और ध्यान दिलाना है कि जो अगला कार्यक्रम शाम को हमारा प्रसारित होगा वो होगा लोक रंजनी ग्राम संसार और कृषि जगत। तो लोक रंजनी कार्यक्रम की बात करें तो 5:10 से लेकर के 5:30 तक आप लोकगीतों का आनंद ले सकेंगे। ग्राम संसार कार्यक्रम हमारा होगा 6:30 से 7 तक, और फिर 7:05 से लेकर के 7:30 तक आप सुन सकेंगे कृषि जगत, जिसमें विविध खेती किसानी से संबंधित आप बात को सुन सकेंगे।
0: और यमुना, अगर हमारी बहनें हमें कुछ बताना चाहती हैं तो वो हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
1: बिल्कुल, और जो हमारा पता है पत्राचार का पता नोट करें, कलम उठाएं, कागज लें। कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, 9 प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली, पिन कोड है 110001। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारसर।

0: और संयोजक हैं शिव नंदन लाल।
1: तो इसी के साथ आज का हमारा गृह लक्ष्मी कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी सुनने वालों को हमारा राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3

0: the accident. Government has debunked a fake approval letter claiming to grant a loan of 5 lakh rupees under the Pradhan Mantri Mudra Yojana on payment of 350 rupees as processing fee. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, has termed the letter as fake. PIB clarified that the Micro Units Development and Free Finance Agency, Mudra, does not lend directly to micro entrepreneurs or individuals. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman earlier today. External Affairs Ministry informed in a statement that of the 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. In the FIFA World Cup, France and Spain will face off in the first semi-final on Wednesday. The match will kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. The second semi-final will be played on Thursday, with England taking on Argentina, also at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर दोपहर के 1:10 और 15 सेकंड्स हुए हैं आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इसर और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से में जहां हम खोलते हैं हिंदी सिनेमा की सुनहरी यादों का खजाना आज हम अपने खजाने से एक ऐसी फिल्म लाए हैं जिसने अपने संगीत से काफी दिलों को छुआ और अपनी कहानी से सोचने पर मजबूर किया अपने कलाकारों की अदाकारी से इतिहास रच दिया आज की हमारी फिल्म है साल 1960 में बनी बंबई का बाबू इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं सदाबहार देवानंद बंगाली सिनेमा की महान अभिनेत्री सुचित्रा सेन जीवन अचला सचदेव और जगदीश राज इस शानदार फिल्म का निर्देशन किया था राज खोसला ने राज खोसला उन निर्देशकों में से थे जो साधारण कहानी को भी अपने निर्देशन से असाधारण बना देते थे सीआईडी और काला पानी जैसी यादगार फिल्मों के बाद उन्होंने बॉम्बे का बाबू या कहिए बंबई का बाबू में रहस्य भावनाओं और प्रेम का ऐसा संगम रचा जिसे आज भी बड़े सम्मान से याद किया जाता है फिल्म की कहानी और पटकथा लिखी राजेंद्र सिंह बेदी ने और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन जिन्हें हम प्यार से एसडी बर्मन के नाम से जानते हैं गीत लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इन गीतों को आवाज दी मोहम्मद रफी आशा भोसले और मुकेश जैसे महान गायकों ने तो आइए सुनते हैं फिल्म का सदाबहार नगमा जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से और हमारी आज की शानदार फिल्म का नाम है बॉम्बे का बाबू और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ इस प्रोग्राम में बने रहिएगा। कहते हैं इंसान की किस्मत एक पल में बदल सकती है, यही इस फिल्म की कहानी है। बाबू एक ऐसा इंसान है जो परिस्थितियों का मारा है, अपराध की दुनिया में भटकता हुआ एक दिन ऐसी मजबूरी में फंस जाता है कि उसे एक अमीर परिवार के बिछड़े बेटे कुंदन का रूप धारण करना पड़ता है। मां की आंखों में बरसों का इंतजार, पिता के चेहरे पर बेटे को पाने की खुशी और बाबू के दिल में एक ऐसा बोझ जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकता। कहानी तब और उलझ जाती है जब उसे उसी घर की बेटी माया से प्यार हो जाता है। तो कहानी को देते हैं विराम और सुन लेते हैं इसी फिल्म से एक और प्यारा सा गीत। इसे गाया है मोहम्मद

दोस्तों कहते हैं कि दुनिया का सबसे भारी बोझ किसी इंसान के सर पर रखा पत्थर नहीं बल्कि उसके दिल में छिपा हुआ एक राज होता है। बाबू भी एक ऐसे ही राज के साथ जी रहा है। जिस घर में वो मेहमान बनकर आया था वहां अब वो बेटी की तरह अपनाया जा चुका है। जिस लड़की के लिए उसका दिल धड़कने लगा है दुनिया उसे उसकी बहन मानती है। यही वो भावनात्मक संघर्ष है जिसने बॉम्बे का बाबू को अपने समय की सबसे अलग फिल्मों में शामिल कर दिया। कहानी को आगे बढ़ाते हुए आखिरकार बाबू को एहसास हो जाता है कि झूठ के सहारे जिंदगी नहीं जी जा सकती। वो सच स्वीकार करने का साहस जुटाता है। परिस्थितियां करवट लेती हैं, राज खुलते हैं और किस्मत भी अपना फैसला सुनाती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये केवल रहस्य की कहानी नहीं बल्कि जमीर, त्याग और इंसानियत की कहानी भी है। तो आइए अब सुनते हैं फिल्म का

वो गीत, वो खूबसूरत गीत जिसको सुनकर आज भी हमारी आंखें भर आती हैं। इस गीत को गाया है मुकेश ने।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की शानदार जानदार फिल्म है बॉम्बे का बाबू। तो प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा अपनी दोस्त नंदा इस्सर के साथ। और आपको ये प्रोग्राम से जुड़ी, इस फिल्म से जुड़ी कोई जानकारी हमें देनी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल का हमें इंतजार रहेगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: Hey guys! आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से। तो हमारे श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को बहुत इंतजार रह रहा है कि भाई हम उनके मेल, उनके संदेश जल्दी से शामिल करें। तो हम ये संदेश, पहला संदेश लेते हैं। ये हमें संदेश मिला है मेरठ से, दिग्दर्शन गौर जी का। इन्होंने लिखा है कि आज की फिल्म

और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन जानकारी, दिलचस्प किस्से और दिल को छू लेने वाले गाने बहुत सुकून दे रहे हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो दिग्दर्शन जी आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद हमारा प्रोग्राम इतने ध्यान से सुनने के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है फागुराम यादव जी का संबलपुर कांकेर से, इन्होंने भी सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दिया है, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी जी का, इनको भी फिल्म की कहानी और फिल्म के गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है अनिल मोहन जी का, इनके साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, इनको भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तहे दिल से आपका भी धन्यवाद। और एक और मेल हम शामिल करते हैं धर्मेंद्र छिप्पा जी का, इन्होंने भी मुंबई का बाबू या बॉम्बे का बाबू जो फिल्म आप बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं और हम प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आनंद उठा रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम से जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद और इनके सभी सदस्यों का धन्यवाद। अगला मेल हम शामिल करते हैं फारूक अली खान जी का, इनको भी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। अगला संदेश है संदीप मक्कर जी का, ये संदेश इन्होंने लिखा है, इनके साथ हैं ज्योति मक्कर मन्नत और इनके परिवार के अन्य सदस्य। और अगला संदेश हम लेते हैं संदीप मक्कर जी, इनका संदेश हम पढ़ चुके हैं, एक और संदेश हम शामिल कर लेते हैं संजय धिंगिया जी का, इन्होंने लिखा है ये संदेश बागपत उत्तर प्रदेश से, इनको फिल्म मुंबई का बाबू बॉम्बे का बाबू की गीत की पसंद आ रहे हैं और जानकारी भी इनको पसंद आ रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मेल हम शामिल करना चाह रहे हैं, ये मेल हमें मिला है अजीत भवसार जी का जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आप इसी तरह से अपना प्रेम हम पर दर्शाते रहिए अपने मेल के जरिए। तो आप सुन रहे थे कहानी फिल्म बॉम्बे के बाबू की, तो कहानी मैंने आपको संक्षिप्त में सुनाई और इसके बाद मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि अगर आप इस फिल्म का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखेंगे और इस फिल्म का भरपूर आनंद लेंगे। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की नायिका के लिए पहले मधुबाला का चयन किया गया था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक न रहने के कारण वो ये फिल्म नहीं कर सकी। बाद में ये भूमिका सुचित्रा सेन को मिली और उन्होंने इसे अपनी संजीदा अदाकारी से अमर बना दिया। इतना ही नहीं, इस फिल्म की मूल प्रेरणा प्रसिद्ध लेखक ओ हेनरी की कहानी अ डबल डाइड रिसीवर से मानी जाती है। हालांकि फिल्म ने इसमें भारतीय पारिवारिक भावनाओं और रिश्तों की गहराई जोड़कर इसे बिल्कुल अलग पहचान दी। और अब बात करते हैं देव आनंद के अभिनय के बारे में। देव आनंद इस फिल्म में सिर्फ अभिनय नहीं करते बल्कि अपने चेहरे के भावों से बाबू की पूरी बेचैनी बयां कर देते हैं। और सुचित्रा सेन उनकी बात अगर करें तो उनकी आंखों की मासूमियत ही उनके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा में कम काम करने के बावजूद उनका नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता है। दोस्तों फिल्मों का सफर सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहता, कुछ फिल्में हमारी यादों में बस जाती है, कुछ गीत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ किरदार उम्र भर हमारे साथ चलते हैं। बॉम्बे का बाबू भी ऐसी ही एक अमर याद है। पुरानी फिल्मों की खूबसूरती यही है कि हर बार देखने या सुनने पर वो कोई ना कोई नया एहसास दे जाती है। तो इससे पहले कि फिल्म का एक और गाना आपको सुनाएं, हम कुछ और अपने साथियों के मेल शामिल करना चाहेंगे।
तो ये मेल हमें, ये संदेश हमें मिला है संतोष खड़ासे जी का। इन्होंने ये मेल हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। एक ही फिल्म प्रोग्राम में आज अपने समय की सबसे लोकप्रिय फिल्म मुंबई का बाबू की स्टोरी, गीत और अनसुने फैक्ट्स पर सुंदर जानकारी दी। सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद। संतोष जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है, ये संदेश मिला है हमें पूनम गंगनेजा जी का। इनको भी आज की फिल्म की कहानी और गीत बहुत पसंद आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हम शामिल कर लेते हैं रोजी डे कैस्ट्रो का। इन ये संदेश हमें मिला है जनकपुरी सहारनपुर से। इनके साथ हैं जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलीस का। एक और संदेश हमें अभी अभी मिला है पी एस नावकर जी का। इनके साथ हैं निर्मला, विशाल, सोपान। इनको भी हमारी आज की फिल्म की कहानी और फिल्म के गाने पसंद आए, तो इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल हमें मिला है पी एस, ये मेल हम शामिल कर चुके हैं, माफ कीजिएगा। एक और मेल हमें मिला है अभी अभी प्रकाश वर्मा जी का, छत्तीसगढ़ पराली से। इनके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। यदि आपको इस फिल्म से जुड़ी कोई जानकारी हमें पहुंचानी है तो हमें जरूर मेल करिए, हमें आपका मेल का इंतजार रहेगा। तो ये थी आज की फिल्म मुंबई का बाबू, और आपने इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इसके प्यारे गीत भी सुने। और आपको एक गीत मैं फिर से सुनाना चाहूंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये गीत जरूर पसंद आएगा। और ये गीत सुनते सुनते मुझे आपके संदेश का भी बेसब्री से इंतजार है, वो संदेश भी आप हमें भेजिएगा। और अभी आप सुनते हैं ये गीत फिल्म बॉम्बे का बाबू।

0: इस गाने के साथ साथ मैं एक मेल शामिल करना चाहूंगी। नौशाद सलमानी और इनके परिवार के सभी सदस्य ने ये हमें मेल भेजा है।
1: ओके बहार आए हो जाने कहां, ओके बहार
2: जाने कहां, ओके बहार।
0: इसी के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक और यादगार फिल्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए, बने रहिए अपने प्यारे चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड के 6 दिन के सफल दौरे तो बाद नवी दिल्ली परत आए ने। कर्मचारी भविख निधि संगठन EPFO ने माफी स्कीम 2026 शुरू की है। कतर के सबक अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का 74 साल की उम्र च देहांत हो गया है। अमरीका ने अज सवेरे ईरान से ताजा हवाई हमले किए ने। फीफा फुटबाल विश्व कप च सैमीफाइनल मुकाबले तय हो गए ने। फ्रांस का स्पेन नाल ते अर्जेंटीना का इंग्लैंड नाल मुकाबला होगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड के 6 दिन के सफल दौरे तो बाद नवी दिल्ली परत आए ने। 3 देशों के दौरे के पहले पड़ाव च श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के सद्दे ते इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरे दौरान प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति नाल दुवल्ली गलबात की, दुवल्ली भाईवाली की प्रगति की समीक्षा की। अपने दौरे के दूजे पड़ा लई प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न का दौरा किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनिस नाल तीजे भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने दौरे दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आस्ट्रेलिया CEO फोरम विच भी शिरकत की, जिथे उन्होंने दोहां देशां दे चोटी दे कारोबारी आगुआं दे इकट्ठ नूं संबोधन किया। दौरे दे तीजे ते आखिरी पड़ाव विच प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड दे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दे सद्दे ते 10 से 11 जुलाई तक ऑकलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड का यह दौरा 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा सी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भारत हिंद महासागर ते हिंद प्रशांत खेत्र में एक स्थिर शक्ति वजो उभरिया है। नवी दिल्ली में एक प्रेस कानफ्रेंस में संबोधन करदे पार्टी के बुलारे संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सैशल्स ते इंडोनेशिया का दौरा किया ता जो रणनीतिक संबंधा नूं होर मजबूत किया जा सके। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड विचकार मुक्त व्यापार समझौते नूं एक महत्वपूर्ण प्राप्ति दस्या। श्री पात्रा ने प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड के दौरे दियां 10 मुख्य प्राप्तियां नूं उजागर किया। इन्हां विच हिंद महासागर ते हिंद प्रशांत रणनीतिक गठजोड़, रक्षा ते समुद्री सहयोग शामिल है।
4: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर बार बार हमले होने पर तश्वीश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाने वाले इदारों के लिए 6 महीने की आम रियायत की स्कीम शुरू की है ताकि उनके दर्जे को बाजाब्ता शक्ल दी जा सके। विम्बल्डन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस बहरी जहाज में सवार 11 भारतीय शहरियों में से 10 को बचा लिया गया है जबकि एक भारतीय शहरी लापता बताया गया है। वजारत ने कहा है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और तलाश और बचाव की कार्रवाई में ओमान के हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए है। भारत ने ओमान के हुक्काम की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर बार बार हमले होने के वाकयात पर तश्वीश का इजहार भी किया है। उसने फौरी तौर से कशीदगी दूर किए जाने और मुजाकरात के जरिए सिफारती हल निकाले जाने की अपील दोहराई है ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल हो सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोज़ा दौरा कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा किया जिसके दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंडोनेशिया के सदर के साथ 2 तरफा बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी की पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहमियत के हामिल और नायाब मादनियात, ज़रात, बहरी सिक्योरिटी और खला के शोबों में समझौतों और मुफाहमत नामों का तबादला किया। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन सिविलियन एजाज से सरफराज किया गया। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न पहुंचे जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म के साथ 30वीं भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया। अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचे जहां दोनों मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म ने भारत न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक साझेदारी के कायम का ऐलान किया और 2 तरफा तिजारत को बढ़ाकर साल 2030 तक 2 गुना तक करने का हदफ मुकर्रर किया। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: BJP ने कहा है कि भारत बहरे हिंद और भारत बहरुल काहिल खित्ते में एक इस्तेहकाम कायम करने वाली ताकत के तौर पर उभरा है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हाल ही में सेशेल्स और इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे ताकि क्लीदी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता एक अहम कामयाबी है। जनाब संबित पात्रा ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों ने जल्द से जल्द समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा क्लीदी और इक्तसादी संग मील करार दिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के 10 अहम निकात को उजागर किया। इनमें बहरे हिंद, भारत बहरुल काहिल क्लीदी इत्तेहाद, दिफाई और बहरी इश्तराक, अहम मादनियात के शोबे में ताउन, तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा और तालीमी साझेदारी शामिल हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से, अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क, हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिनकी मालियत 405 करोड़ रुपए है। इस मौके पर जनाब अमित शाह ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत दरख्त लगाने की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया और उनके लोकसभा हल्के गांधीनगर में इस मौके पर 125 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने एक तवील मुद्दती माहौलियाती खाके को उजागर किया ताकि 2029 के इंतखाबात होने तक इस चुनाव हलके में 20% इलाके को सरसब्जो शादाब बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो शमसी रूफ टॉप्स अपनाएं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में मोशी के कूड़े करकट के डिपो के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। आज बचाव कार्रवाई के चौथे दिन 7 और अफराद की लाशें निकाली गई हैं। एक शख्स अब भी कूड़े कचरे के ढेर के नीचे फंसा हुआ है और तलाश की कोशिशें जारी हैं। यह हादसा इस महीने की 8 तारीख को उस वक्त पेश आया था जब पुणे जिले में मोशी के मुकाम पर कूड़े कचरे का एक बड़ा टीला फाजिल मादों और कचरे वगैरह से तवानाई बनाने के प्रोजेक्ट की इंतजामी इमारत पर ढह गया था और 23 अफराद फंस कर रह गए थे। अमरीका ने ईरान पर आज सुबह फिर फजाई हमले किए। अबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल बहरी जहाज पर ईरान के हमले के बाद अमरीका ने ये फजाई हमले किए हैं। मालूम हुआ है कि कमर्शियल बहरी जहाज में हमले के बाद आग लग गई और इसके अमले के अहलकारों को बहरी जहाज से उतरना पड़ा। अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि उसने ईरान के तकरीबन 140 फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है जिसमें मिजाइल, ड्रोन और मवासिलाती मराकज शामिल हैं। ईरान ने बहरैन, कुवैत, कतर और मुत्तहिद अरब अमारात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने उर्दुन में भी अमरीका के एक फौजी ठिकाने पर हमले करने का दावा किया है। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने आम रियायत की स्कीम 2026 का आगाज किया है ताकि मुस्तसना प्रोविडेंट फंड चलाने वाले इदारों को अपने दर्जे को बाजाबता शक्ल देने का एक वक्ती मौका फराहम किया जा सके। लेबर और रोजगार महकमे की वजारत ने कहा है कि मजकूरा स्कीम 6 महीने की मुद्दत के लिए बरकरार रहेगी। मजकूरा स्कीम का इतलाक उन इदारों पर होगा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत तस्लीम शुदा प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चला रहे हैं। वजारत ने कहा है कि अहल इदारों को ईमेल के जरिए बाजाबता दरख्वास्त मुतालिका इलाकाई दफ्तर को पेश करना होगी। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी का इंतकाल हो गया है। वो 74 साल के थे। उन्होंने खलीजी मुल्क कतर को आलमी सतह पर सिफारतकारी, मीडिया और सरमायाकारी के शोबों में एक सरकर्दा मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया। शेख हमद ने कतर पर 18 साल तक हुकूमत की जिसके बाद 2013 में रजाकाराना तौर पर अपने बेटे को इख्तदार सौंप दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा सानी एक नज़रिया साज रहनुमा थे जिन्होंने कतर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर पहुँचाया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज मर्दों के सिंगल्स फाइनल में आलमी नंबर 1 यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। आज ही ख्वातीन डबल्स का फाइनल भी खेला जाएगा जो भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। बुध के रोज पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को खेला जाएगा जिसमें इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, और विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुनील वर्मा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that of the 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said, the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. New Delhi has expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It reiterated the call for immediate de-escalation of tensions and the conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The External Affairs Ministry said the targeting of commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end, and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region in keeping with international law must be restored at the earliest. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon ship. U.S. Central Command said it targeted around 140 Iranian military sites, including missile, drone, and communications facilities. Iran retaliated with missile and

0: यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।

0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
3: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है, जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज

0: वह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हन्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

जी हाँ दोस्तों, आ गए हैं हम लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार का नमस्कार।

1958 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म मधुमती से आप इस गाने को सुन रहे हैं और इस गाने के डायरेक्टर यानी निर्देशक बिमल रॉय साहब आज के हमारे कलाकार हैं। बिमल राय साहब के बारे में बहुत सी सुनी अनसुनी कही और अनकही बातें आपको बताएंगे और इस कार्यक्रम के जरिए उनकी फिल्मों के सुपर डुपर हिट

दोस्तों, बिमल रॉय साहब एक जाने माने भारतीय फिल्म निर्देशक थे। वे विशेष तौर पर अपनी यथार्थवादी और समाजवादी फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने करियर में दो बीघा जमीन, परिणीता, देवदास, मधुमति, सुजाता, परख और बंदनी जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं और वे नव यथार्थवादी सिनेमा से प्रेरित होकर ही उन्होंने दो बीघा जमीन बनाई थी। और उनकी अगर निजी जीवन की बात करें तो उनका जन्म 12 जुलाई 1909 को ढाका जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश में है, वहां पर हुआ था। और आज हम एक कलाकार में इस कार्यक्रम में उनके बारे में इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज 12 जुलाई है और 12 जुलाई 1909 को ही उनका जन्म ढाका में हुआ था। और उन्होंने बंगाली और हिंदी में कई फिल्मों का निर्माण किया और 1936 में उन्होंने मनोबीना रॉय के साथ विवाह किया और उनकी बेटी रिंकी का विवाह जाने माने फिल्म निर्देशक बसु भट्टाचार्य के साथ हुआ था। और भी इनके बारे में बहुत कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा गाना स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज में आपको सुनाते हैं।

बिमल रॉय साहब का सिनेमाई सफर भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक क्रांतिकारी अध्याय है। उनका ये फिल्मी सफर सिर्फ फिल्में बनाने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सिनेमा को समाज का आईना और मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम बनाया। और उनकी शुरुआत कैसे हुई ये भी हम आपको बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार।

में किया था। और अगर बात करें कि डायरेक्टर के रूप में उन्होंने पहला कदम कब रखा, तो वो साल था 1944 जब उन्होंने पहली बार एक बंगाली फिल्म उदयेर पाथे से अपने निर्देशन करियर की शुरुआत की।

0: दोस्तों, बिमल राय साहब 1950 में कलकत्ता से बॉम्बे आ गए और वो अकेले नहीं आए बल्कि अपने साथ अपने दोस्तों को और एक तरीके से कह लें कि जो उनकी टीम थी उन टीम के मेंबर्स को भी अपने साथ लाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी टीम में कौन कौन था। उनकी टीम में थे ऋषिकेश मुखर्जी, नवेंदु घोष, आसित सेन और कमल बोस। और पहली बार उन्होंने बॉम्बे टाकीज के लिए हिंदी फिल्म 1952 में आई थी माँ, उसका उन्होंने निर्देशन किया। और इसके बाद तो उन्होंने अपने ही प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत कर दी और उसका नाम रखा बिमल रॉय प्रोडक्शन। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा गीत सुनाते हैं तलत महमूद साहब की आवाज में।
1: mm-hmm.

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल ईशान और पूजा परिहार का मैसेज आया है। उन्होंने लिखा है, सर बहुत बहुत नमस्कार, आज आप जाने माने निर्माता निर्देशक बिमल रॉय के बारे में बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं और बहुत ही प्यारे नगमे भी सुनवा रहे हैं। हमें आपके कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण का अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।

एक और संदेश आया है हमारे ये रेगुलर लिसनर यानी नियमित श्रोता हैं सुदर्शन मुखी अनिका मुखी सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है कि हम आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लग रहा है और बिमल रॉय साहब की फिल्में तो उन्हें बहुत प्रेरित करती हैं। जी हाँ, हम सबको प्रेरणा देती हैं बिमल रॉय साहब की फिल्में,

0: दोस्तों, बिमल रॉय साहब की बात हो और उनकी यूं तो बहुत सारी फिल्में हैं, सुजाता है, बंदनी है, लेकिन एक फिल्म ऐसी है जो मील का पत्थर साबित हुई है उनके करियर में और हम जैसे हमारे श्रोताओं के जैसे फिल्म देखने वालों की नज़र में। जी हाँ, वो फिल्म है 2 बीघा जमीन। और सही अर्थों में देखा जाए तो भारतीय सिनेमा में पैरेलल सिनेमा यानी समानांतर सिनेमा की नींव इसी फिल्म के बाद रखी गई। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से एक साधारण किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करता है। ये बेहद ही मार्मिक कहानी है और इस फिल्म को कान फिल्म समारोह में इंटरनेशनल अवार्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें अभी हैं बाकी बिमल रॉय साहब के बारे में जो हम आपको अपने इस कार्यक्रम एक ही कलाकार में आगे बताएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी हमारे इस कार्यक्रम को सुनना मत भूलिएगा।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ, और आज के हमारे कलाकार हैं जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक बिमल रॉय साहब। तो दोस्तों, इस ब्रेक के पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से उनकी फिल्म 2 बीघा जमीन के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। जी हाँ, इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल अवार्ड मिला। और ये फिल्म न सिर्फ किसानों को और कृषि को समर्पित थी, बल्कि बहुत सारे अभिनेताओं ने इसके लिए फिल्म की एक धर्म पुस्तक का नाम दिया था। और आपको जानकर शायद ही हैरानी हो या ना हो, या हो सकता है आपको ये बात पता हो या फिर ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि राज कपूर साहब ने इस फिल्म को देखने के बाद कहा था कि वे इस तरह की फिल्म कभी नहीं बना सकते हैं, और अगले 1000 सालों में भी अगर भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची बनेगी तो उसमें 2 बीघा जमीन फिल्म जरूर साबित होगी। तो दोस्तों, आपने देखा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक ऐसी फिल्म थी जिसको इंटरनेशनल कॉन्स फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बल्कि इसके अलावा 11 फिल्म फेयर और 2 नेशनल अवार्ड भी इस फिल्म को मिले थे। और अगर कुछ और फिल्मों की बात करें तो बिमल रॉय साहब की परिणीता, विराज बहू, मधुमति, सुजाता, देवदास और बंदनी जैसी फिल्में भी उन्होंने बनाई हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा।

फिल्म यहूदी से आप सुन रहे हैं मुकेश साहब की आवाज में ये प्यारा सा नगमा। और इस फिल्म के निर्देशक थे हमारे आज के कलाकार

दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको राष्ट्रगान बनने से बहुत पहले ही बिमल रॉय साहब ने अपनी फिल्म उदार पाथी और हमराही में प्रयोग किया था।

दोस्तों, इसी बीच आपके बहुत सारे संदेश हमारे पास लगातार आ रहे हैं और ये एक मैसेज आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी वीना और चंडीगढ़ से राहुल रचित केशु रिधान खुराना का। और इन्होंने लिखा है कि अरुणेश जी सादर नमस्कार, हम आपके साथ आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बिमल रॉय साहब के बारे में आप बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं और अभी जो आपने गाना सुनवाया ये मेरा दीवानापन है, ये हमें बेहद पसंद आया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे संदेश हमारे पास लगातार आ रहे हैं, मेरी कोशिश होगी कि एक एक करके आपके सारे संदेश को जल्दी से ले लें कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय भी सीमित है और अभी बिमल रॉय साहब के बारे में तो बहुत कुछ बताना है। उनकी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, उनकी फिल्मों के गाने हैं और उनसे जुड़ी कहानियां हैं। दरअसल बिमल रॉय साहब बंगाली हिंदी के अलावा और भी कई भाषाओं में उन्होंने सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई फिल्में बनाई हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं बिमल रॉय साहब की ही एक फिल्म से, और इस गाने को आवाज़ दी है आशा भोसले जी ने।

और आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार का एक संदेश आया है। इसके अलावा नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और एक और संदेश आया है, जल्दी से ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का, और आगे भी आपके कुछ संदेश लेने की हम कोशिश करेंगे।

दोस्तों, बिमल दास साहब ने सुनील दत्त और नूतन को लेकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सुजाता। और ये फिल्म सुबोध घोष की बंगाली लघु कथा पर आधारित थी और इस फिल्म के लिए पांचवीं बार बिमल दास को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और इसके बाद बिमल दास साहब ने अपने जीवन की शायद पहली और आखिरी हल्के मूड वाली एक व्यंग्यात्मक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था परख। इस फिल्म में साधना और मोतीलाल जी मुख्य भूमिकाओं में थे। और अगर आपने ये फिल्म देखी है और अगर नहीं भी देखी तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये फिल्म हमारे लोकतंत्र पर किस तरह से कटाक्ष करती है ये बताती है। और ये फिल्म भी अपने जमाने में सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसके बाद 1962 में उन्होंने प्रेम पत्र नाम से एक फिल्म बनाई जिसमें शशि कपूर और साधना मुख्य किरदारों पर उनको देखा गया। और इसके अलावा बंदनी फिल्म का जिक्र भी करना बेहद जरूरी है। और इस फिल्म में उन्होंने धर्मेंद्र साहब को मौका दिया था और लीड रोल में थे अशोक कुमार के साथ नूतन। और ये फिल्म भी 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीती थी और यहीं से धर्मेंद्र साहब स्टार बनकर उभरे थे। इसके अलावा महान गीतकार, लेखक और फिल्मकार गुलजार साहब की नींव भी इसी फिल्म के गाने मोरा गोरा अंग लैले से पड़ी थी। तो कहा जाए तो बिमल राय साहब ने सिर्फ बेहतरीन फिल्में ही नहीं बनाई बल्कि उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से बेहद और कई प्रतिभाशाली कलाकारों को ब्रेक भी दिया, यानी मंच भी दिया। फिल्म बंदनी से जुड़ा एक रोचक किस्सा है कि इसके जरिए गुलजार साहब, जिनका असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, और इसी फिल्म के जरिए बतौर गीतकार उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनवाते हैं।

दोस्तों इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत, फिर किसी न किसी मोड़ पर आपसे इसी चैनल में होगी मुलाकात। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी प्यारे भैया बहन अंकू चंपा बहन
1: और श्रुतिपुरी की
0: राधे राधे। बहन श्रुति देखो या वक्त तो ब्रज धरा की वानगी देखते ही बन रही है।
1: सही कह रही हो। और या समय तो देखो कैसे कैसे मेलान की तैयारी है रही है।
0: अरे मेलान की जो ब्रज को ऐतिहासिक लक्खी मेलो है, मुड़िया पूनो को मेलो, बाकी तैयारी ब्रज में चल रही है।
1: वही तो कह रही हूँ। और ये सब विश्व प्रसिद्ध मेला है।
0: हाँ तो बहन श्रुति विश्व प्रसिद्ध हो ही भी क्यों ना, देखो देश विदेश के श्रद्धालु भक्तगण और पर्यटक सब यहाँ मेले में आए रहे हैं। बहन श्रुति देखो ये जो हमारे गोवर्धन को मुड़िया पूनो को मेलो आ रहे है ना, तो यहाँ में जो मुख्य बात है वो ये है कि पूरी गिरिराज बाबा की सात को उसकी परिक्रमाएं, और अगर हम बाई गिने तो गिनती में हूँ 21 किलोमीटर है ना। हाँ। तो बाकी पूरी परिक्रमा लगवे वारी है।
1: हाँ चंपा बहन, और यह मुड़िया पूनो के मेला में श्रद्धालु पर्यटक दर्शनार्थी परिक्रमार्थी ये सब आए रहे हैं, और इनकी सुविधान के ताई उनकी हर चीज इनको उपलब्ध हो या के ताई प्रशासन पूरी तरीका से कटिबद्ध है।
0: बहन श्रुति 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक ई पूरो मेलो चलवे वारो है, और हम अपने भैया वेनांति कह रहे हैं कि भैया वेनाओं हमारे आज या कार्यक्रम में आप सुनके तो आप जरूर ब्रजमाऊ आओगे, और आप ना आ रहे होगे तो आवे को मन बनाओगे। तो बहन श्रुति देखो या मेले के काज है ना, जो इतने लाखों करोड़ों श्रद्धालु और भक्त ब्रज आएंगे, तो मेले को 900 पर जोन और 21 जोन में बांटो गए।
1: अच्छा, और बहन चंपा तुम्हें बताए दे मैं कि 62 सेक्टरन में बांटो गए हो। सुरक्षा व्यवस्था में 9000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं निगरानी के काजे।
0: और बहन श्रुति जो 183 CCTV कैमरा लगाए गए और 31 तो वॉच टावर बनाए गए जिनते पल पल की हर जगह की चप्पे चप्पे की खबर रहेगी।
1: और जो परिवहन विभाग है ना वो भारी संख्या में आवागमन को देखते हुए वहाँ में 1100 रोडवेज की बसें, 61 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। और बहन चंपा तुम जानो हो कि हमारी ब्रजधरा में तो संकरी गली बहुत है।
0: हाँ।
1: और इन संकरी गलीन को देखते हुए हमारी भौगोलिक बनावट को देखते हुए पहली बार ब्रज में 5 मोटरसाइकिल स्वास्थ्य सेवान को भी तैनात किए गए है।
0: और जीजी जब कोई आएगो, गर्मी पड़ रही है तो प्यास लगेगी, तो पेयजल की व्यवस्था के काजे भी 17 आरओ प्लांट लगाए गए और 30 टैंकरन की जो व्यवस्था है वो करी गई है। तो जब हमारे श्रद्धालु और भक्तन के काजे ब्रज में इतनो व्यापक इंतजाम हो रहा है सुरक्षा को, उनकी सेहत को, उनके स्वास्थ्य को, तो हम तो अपने भैया बहनान से यही कह में कि आप गोवर्धन गिरिराज जी जरूर पधारो या लक्खी मेले में।
1: देखो चंपा बहन ब्रजवासी को तो स्वभाव ही है, ब्रजवासी आव भगत में सबसे आगे रहे में, फिर चाहे वो ब्रजवासी हुए चाहे प्रशासन हुए वहाँ के व्यवस्थापक हैं
0: जी,
1: वो सब मुस्तैद रहे में।
0: तो बहन श्रुति यही के काजे तो गिरिराज गोवर्धन को कहो गयो है, नकफे धर के गिरिराज नाम गोवर्धन पायो है।

0: तीन लोक दे न्यारी है गोवर्धन महाराज।
1: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते।
2: देखो चंपा बहन, ब्रज में या समय एक और तैयारी चल रही है।
1: कौन सी?
2: सावन आए हुए बारो है, भूल गई का?
1: तो हाँ बहन, जब मुड़िया पूनो हो जाएगी तो सावन लग जाएगा।
2: आषाढ़ जाते ही सावन आएगा।
1: हाँ।
2: और सावन के आते ही जो ब्रज की बानगी देखते बने है, बाको बखान ही ना है सके है।
1: तो आप बखान करो मत बहन, कछु और ही अच्छी रोचक जानकारी हमारे भैया बहनान को दवाए दो। आप और हमें तो श्रोता भैया सुनते ही रहे।
2: हाँ सही बात है, तो बताए दो कहाँ सुनवाई में जा रही हो आज?
1: देखो अब आपने सावन की बात कर दी है, तो सावन की बात तो ब्रज में बिना मल्हारन के बने ना आए हैं, तो ऐसे ही कार्यक्रम की ओर अपने भैया बहनान को ले चले।
2: हाँ तो ले चलो।
1: तो आओ प्यारे भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये भेंट वार्ता, जाको विषय है ब्रज के सावन लोक गीत और महिलाएं। या विषय पे डॉक्टर सीमा मोरवाल जी ते बातचीत कर रही है हमारी श्रुति बहन।
2: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में डॉक्टर सीमा मोरवाल जी, हम आपको हार्दिक अभिनंदन करें हैं। क्योंकि ब्रज में सावन की परंपरा अनूठी परंपरा है और सावन आएवे वारो है। जैसे जैसे ऋतु बदले हैं, चौमासो लगते ही तो कहवे हैं 33 करोड़ देवी देवता ब्रज में वास करे हैं, और सावन की तो अलग ही महिमा है। सावन को भक्ति साहित्य, श्रृंगार साहित्य, लोक गीतन को माधुर्य और देवालयन की छटा, ये सब मिलकर एक अलग सौंदर्य एकत्र करे हैं ब्रज धरा में। ब्रज में सावन में ऐसा कहा विशेष है, ऐसी कहा स्वर लहरी बहे है ब्रज वसुंधरा में, कि जन जन आकर्षित हुए है ब्रज की ताई।
1: पहले तो श्रुति बहन जी, सभी श्रोतान को सादर राधे राधे। जो ब्रज के गीत हो में, तो वो जो सामन के गीत कहो करें, बिने मल्हार कहो करें, हिंडोला कहो करें, तो मल्हार मतलब मन के विषाद को हरण करवे वाली जो गीत है सामन के, बिन में बहन अपने भैयन के काजे, अपने पीहर के काजे, जो भी उनके मन में ससुराल ते लेके दुख विषाद होयो करे, तो वो उन सब की वार्ता वहां में गीतन में कहो करे हैं। कहवे ते उनके मन को जो मलिनता है वो समाप्त है जावे, वो गीत मल्हार कहे जाए।
2: सीमा जी, जैसे कहवे हैं कि लोकगीत लोक अभिव्यक्ति को माध्यम है, लोक के मन में जो भाव हुए हैं वो लोक गीतन के माध्यम ते जाहिर हुए हैं। अब देखो जैसे कि सावन जब आवे है, तो जब वो रिमझिम फुहार पड़वे लगे है, तो ब्रज में कौन सा ऐसा लोकगीत है जो गायो जाए है?
1: अरे अब तो देखियो कैसे कैसे झूला डरेंगे, तैयारी तो है रही है ना डरवे की। हाँ। काम में चले जाओ, कैसे कैसे झूला डर रही है, और रेशम लेके ऐसी बहन बेटी इकट्ठी है रही है, पींगे चल रही है झूलान की।
2: तो कछुए गाय के सुनाए दो।
1: अरे नन

0: बहुत सुंदर। और जैसे आपने बात करी ना कि ब्रज में ऐसी परंपरा है कि सावन में सिंधारा तो जाए है, पर जो सौभाग्यवती स्त्री होवे है वो ससुराल ते पीहर आवे है और भैया वाकु लेवे जावे है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो बाकी निमित्त तुहु कछु लोकगीत गाए जावे
1: हाँ
0: है?
1: हाँ निरे लोकगीत है भाई। सावन के लोकगीतन में तो मनुहारी बहन और भैया की ओ वे

0: सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसो कहो जाए है कि जब रिमझिम फुहार पड़े है तो ऐसे में किसान को मन बहुत ही प्रमुदित है जावे है,
1: बिल्कुल
0: और किसान के मुख सो स्वतः ही लोकगीत फूट पड़े हैं। तो ब्रज में ऐसे कौन कौन से गीत हैं, जैसे कृषक की पत्नियों कछु शिकायत कर रही होए, या कछु ऐसा कोई लोकगीत आपके
1: हाँ।
0: स्मृति में आए
1: अरे
0: है?
1: मेरे गीत और ये गीत तो बहुत ही गाए हो जाए है ना मेरी
0: अच्छा सुनाओ।
1: छप्पर।

0: ब्रज में सावन आवे और देवालयन में हिंडोले ना पड़े और फूलन के बंगला ना सजे, ऐसो हो ही ना सके। और कृष्ण राधा की तो अनेकानेक ऐसी लीलाएं हैं जो सावन में ही भई हैं, तो बिन के बारे में भी कछु चर्चा करो हमारे श्रोतान के ताई।
1: भाई ब्रज की संस्कृति तो राधा कृष्ण के बिना अधूरी है। और जब वहाँ पे मंदिरन में ऐसे सुंदर सुंदर स्वर्ण हिंडोला डरे, हमारे बिहारी जी के स्वर्ण हिंडोला डले, तो घर बस बहन बेटी वहाँ पे बैठी बैठी उनके दर्शन करके गायो करें।
0: हिंडोला की परंपरा का है, मतलब कहा राधा कृष्ण के विग्रह को झूला में सजाए हो जाए है।
1: हाँ, प्रत्येक मंदिर की एक रीति हो गए, जैसे बिहारी जी में एक ही दिना झूला परो करे हरियाली तीज को, पर वैसे और जितने भी संप्रदाय के मंदिर हैं वहां में सावन लगती झूला पड़ जाए, तो जो राधा कृष्ण के काजे जो झूला ढारो जाए वो हिंडोरा कहो जाए। वहां में संबंधित जो वहां के संतन ने जो पदावली लिखी है वो हिंडोल राग में वो

0: कहवे हैं कि जो महादेव है ना वो ब्रज भूमि के कोतवाल हैं, और सावन में जो शिवजी के देवालय हैं बिनमें कैसो सजावट हुए करे, कैसे कैसे बंगले बने करे हैं, वाके बारे में कछु बताओ।
1: असल में सावन शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, और ब्रज की संस्कृति में शिव जो है आदि देव के रूप में पूजे जाए हैं, क्योंकि हमारो ब्रज जो है वो वनवासीन को ब्रज है। वहां पे 12 वन और 24 उपवन है, तो वहां की संस्कृति जो वनवासी है, तो वो वनवासी संस्कृति के आदि देव शंकर जी भयो करे हैं। तो बामे सावन के शंकर जी के बड़े बड़े बंगला सजाए जाए, वहां पे सुंदर सुंदर गीत गायो करें, और वहां पे तो ऐसी ऐसी बैठकी लगे, कजरी गायो करें, चैती गायो करें, भाई बराबर के
0: समाज
1: गीतन
0: गायन में
1: की
0: वो तो
1: बैठक
0: गावे।
1: लगे। अरे आप, मैं एक छोटी सी वानगी सुनाऊं,

0: आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी। राधा कृष्ण के जितने भी देवालय हैं बिन में, वो तो घटा पड़ाव करे हैं, और वो घटा कहा, घटा का मतलब कहा है, वो कहा सजावट हुए है देवालय में, कैसा श्रृंगार हुए है, वाके बारे में बताओ।
1: घटा सजवे की जो परंपरा है वो हमारे द्वारकाधीश के मंदिर में है, जो बल्लव कुल संप्रदाय के जो मंदिर भयो करें, वहां पे कृष्ण की मनोहारी छटान को, छटा माने कि काउ दिना पूरा जो भी कछु सजेगो वो लाल ही सजेगो, कोई काई दिना हरो ही सजेगो, काई दिना सफेद सजेगो, और कारी घटा तो विशेष सजो करे। वहां में तुम मंदिर में चले जाओ, सब कछु कारो ही कारो नजर आएगो। ठाकुर जी के वस्त्र ते लेके उनके ग्वाल माल सिंगार मंदिर की सजावट सब पूरी कारी कारी होगी। तो बिन्न जो है बिने घटा कहो करें, और जी विशेष रूप से बल्लभ कुल के पुष्टि मार्गी संप्रदाय के मंदिर में सजो करें।
0: अब आपने रंगन की

0: बात करी है तो मोकू एक कन्हैया की लीला याद आ रही है कि मनेरा मनेरा बन के जब कन्हैया आए हैं जो चूड़ी होए हैं रंग बिरंगी बिनकी बानगी कछु आप हमें
1: हाँ,
0: बताओ।
1: असल में ब्रज में जो लोकगीत हैं, विशेषकर सामन के लोकगीत हैं और भी जो भी लोकगीत हैं, उनमें अंतर राज्य अंतर जनपदीय गीत भी यात्रा करके हमारे यहाँ संस्कृति में स्वीकार करे गए हैं। अब ये जो मनरा गीत है जो ठाकुर जी को भी समर्पित है, ठाकुर जी का कहे मैं कहूँ जो हमारा अति प्रिय है, तो अब ये अंतर जनपदीय गीत है जे राजस्थान की यात्रा करके आए हो बंजारिन के माध्यम से, तो ये गीत वहां को है क्योंकि यहां में जो शब्द प्रयोग करे गए हैं वो राजस्थान के शब्द हैं।

0: बहुत सी कथाएं हैं, जैसे चंद्रावल की कथा है, जैसे ढोला मारू है, ये वो सावन से संबंध रखे हैं। तो इनके बारे में हूँ कछु हमारे श्रोताओं को बताओ।
1: लोक के संसार में जो देखो वो दिमाग में रखो और बिनकु सुर दियो, संगीतकार भी ना होते जो अंतरात्मा बोल दी, या हमारे कहीं को भी लोकगीत होवे वो हृदय को छुबे वारो होवे। अब जैसे हमारे यहाँ निहाल दे चंद्रावली गवे, अब वो निहाल दे और चंद्रावल इतनी ऐतिहासिक कथानक है। सिकंदर लोदी जब दिल्ली की जो वनमार्ग बनवारो का हो, वहां पे पनघट पड़ो कर दी, पनघट गांव ते भार भयो कर दी, तो गांव की वैयरवानी सुंदर सुंदर छोरी पनघट पे पानी भर भी आती। अब वो मुगल और पठान के जो छोरा उनकी तो नजर धरी रहती उनपे, तो अब उठा के वो ले गयो। तो वह निहाल दे ने माते यो कही कि भाई मुझे छुड़वा लो मैया बाप ते कर। चील, ये देखो प्रतीक कैसे सुंदर सुंदर कि उनने चील के माध्यम ते मैया बाप भैया ते पति ते जे बात कहलवाई कि मोह जा मुगल और तो, हाँ। तो रख के छुराए मुझे छुड़वा दो। लेकिन भैया बाप फौजते को लड़े, आप जे देखो कि बात समय स्त्री की कितनी बड़ी वेदना, तब भी जब मैया बाप ने पति ने हाथ अपने छोड़ दिए कि हम कछु ना कर सके तो गांव को विध्वंस कर जाएंगे, तब ऐसे बाने कही आप बिल्कुल भी ने को चिंता मत करो, राखूंगी पागड़ी की लाज। और पति से कहती है राखूंगी तेरे फेरान की लाज। अब बने मुगल पठान के छोरा ते कही अरे छोरा मेरो बदन मलिन है गोए तो मैं गर्म पानी ते नहाऊंगी, तो तू मेरे काजे नेक से अंगार लिया। तब वो अंगार लेके आवे, तब बाने अपने तंबू में आग लगाई तो हाड़ जरे जैसे बांस और केस जरे जैसे घास। उनने अपना अपने आप को जौहर कर लिया एक तरीके से, लेकिन अपनी इज्जत जो है वो बचा ली,
0: अस्मत बचाई ली। अब सावन का संबंध श्रृंगार ते हु है और वियोग ते हु है, तो अगर हम श्रृंगार के मल्हार की बात करें और विरह के मल्हार की बात करें, जैसे एक तो गीत बड़ो ही मधुर है और हर बार सावन में गायो जाए है, सावन आयो सुघड़ सुहावना,

0: जी, इन गीतन में हमेशा पीहर की याद, कौन सी याद मिलेंगी, पिया गए परदेश,
1: परदेश
0: हाँ। तो वो जो रिम जिम बारस होवे बामे पति की याद करके,
1: एक और मुकु मल्हार याद आ रहे हो है विनय को, कोश में होए तो हाँ, हाँ। गा के सुनाओ।
0: अरे
1: एक वो है जबते गए हैं मोहन छोड़ के,
0: कृष्ण के तो अनगिनत मिलेंगे, और आप सबसे बड़ी अचरज की बात ये कि राम ते भी जुड़े भाई सामन में गीत गाए जाए हैं हमारे यहाँ। तो देखो विनय की मल्हार की

बात करूं तो जा मैं देखो इतना सुंदर कथानक है राम जी को कि जब राम जी ये वनवास दे दियो गयो तो कैसे वैयरवाणी गा रही है, अरे बहना राम दियो वनवास के कई तो बैरन है गई, जब से

0: ब्रज की कुंज गलीन में एक अलग ही माहौल हुए है सावन को। जो दुकानें हैं, बाजार हैं, वो घेवर फैनी और जलेबी ते सज जावे हैं, चूड़ीन ते सज जावे हैं और तरह तरह के श्रृंगार के सामान हूँ मिलो करे हैं। तो सावन में ब्रज की कहा आम जनमानस में प्रथा है वहाँ के बारे में बात करके हम यह भेंट वार्ता को समापन करेंगे।
1: सावन आते ही सबरी तो तैयार रह जाए कि पीहर जानो है, और जो पीहर ना जा पाए वो हरियाली तीज की तैयारी करें, क्योंकि नंद आम है घर में, हुआ में मेन बेटी, तो उनके काजे पूरी उनको उपहार देनो है, उनको मेहंदी लगवानी है, और क्योंकि गौरा की पूजा विशेष रूप से हरियाली तीज के दिन करी जाए है, क्योंकि सावन शंकर जी को प्रिय है और शिव और पार्वती के प्रेम को ही ये त्योहार हो गए है कायदे से। तो सब जगह सुंदरता के वातावरण में तो मिल के सबरी गावे बन के।

0: जग में।
1: तो सीमा जी आपने तो आज यहाँ पे ब्रज जीवंत कर दियो और सावन में ब्रज की परंपरा जो हमारे श्रोतान को आज पता चली है तो वो तो जरूर ते ब्रज भ्रमण करवे को कार्यक्रम बनावेंगे ही और हम सभी इनको स्वागत करेंगे या समय ब्रज में। इतनी अच्छी आपने जानकारी हमारे श्रोतान से साझा करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी बहुत बहुत स्वागत।
3: प्यारी भैया बहनाओं अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे हते जाको विषय हो ब्रज के सावन लोकगीत और महिलाएं, या विषय पे डॉक्टर सीमा मोरवाल जी ते बातचीत कर रही हती हमारी श्रुति बहन। तो बहन श्रुति देखो आपने कितनी रोचक चर्चा करी है सीमा जी ते, तो हम तो या के काजे आपके बड़े आभारी हैं। आपने सावन की जो आहट हो रही है, जो मल्हारन की दस्तक अब होने वाली है या रिमझिम फुहारन के बीच, आपने ना बड़ी रोचक और बड़ी सुंदर चर्चा सीमा जी ते करी है।
1: कितने प्यारे प्यारे लोकगीत भी सुनवाए बिनते,
3: जैसे कह में ना कोई बात को चार चांद लगवो, तो आपने तो ये सावन की मल्हारन को आए बेवारी रिमझिम फुहारन को चार चांद लगाई दिए। तो हम तो आपते यही निवेदन करे हैं कि कोई भी विषय हो, कोई भी संस्कृति की बात हो, हमारे भैया बहनानते ऐसे ही बात कर ले करो, कभी उनकी सुन ले करो, कभी अपनी सुना दे करो।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हो। और देखो अब एक बात और रह गई, हम अभी तो बात कर रहे हैं के लोकगीतन की वानगी की
3: जी,
1: ब्रज में हुए व्यवहारे मेलान की
3: जी।
1: एक और मेला या समय जगन्नाथपुरी में हुए व्यवहार हो, जानती हो कौन सा है?
3: अरे बहन जगन्नाथपुरी में ना आप जा मेला की कह रही हो, वो मेला तो पूरे भारत वर्ष की भूभाग में बड़े हर्षोल्लास से मनाए हो जाएगा।
1: आप तो दिल की पढ़ ले हो।
3: अरे बहन
1: आप जितनी जल्दी दिल की पढ़ो ना इतनी जल्दी तो कोई ना पढ़े।
3: बहन श्रुति ये बात तो देखो आत्मीयता की बात है और ये होनी भी चाहिए, इनके बिना बताओ का है। हमारी ब्रज धरा ने हमको यही तो सिखाए हुए। तो देखो आप जो जगन्नाथ रथ यात्रा की बात कर रही हो ना, तो हम अपने श्रोता भैया बहनान को बता में कि हमारे वृंदावन में केसी घाट पे भी जगन्नाथ जी को बड़ो मंदिर है और वहाँ भी रथ यात्रा निकाली जाएगी। और देखो आप तो एक बात हम अपने मन की

0: कि जैसे हमारे ब्रज में जब हम छोटे छोटे से अपने मम्मी पापा के यहाँ तो रथ यात्रा निकली तो हमें ना बड़ो चाव रहे तो कि यहाँ में भीगी कोमरी मिलेंगी, भीगे भाई मूंग मिलेंगे,
1: सही
0: आम
1: बात है,
0: मिलेंगे,
1: आम।
0: जामुन मिलेंगी, और यहाँ में कहा हुए कि जो भी मौसमी फल होयो करे ना, ऋतु फल।
1: ऋतु फल होयो करे,
0: हाँ
1: और वो तो बटे ही बटे हैं प्रसाद में।
0: हाँ तो आपने कितने आम लूटे रथ यात्रा में?
1: अरे हमने तो फल से लूटे, जामुन लूटे, शहतूत लूटे खूब खूब,
0: और आम
1: और आम
0: लूटे।
1: लूटे।
0: श्रुति बहन देखो 16 जुलाई आ रही है कल परसों, तो कोई झोरा झोरी तैयार कर लियो, आपो चलियो और हम संग ले चलियो।
1: अरे इतना बड़ा झोला तैयार करूंगी, तुम देखती रह जाओगी। पर एक बात बताऊं, पूरी नगर की यात्रा करेंगे रथ यात्रा के संग।
0: क्योंकि हम एक बात और बता दें मैं श्रुति अपने भैया बहनान को कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा को महोत्सव है ना हमारी ब्रज धरा वृंदावन में, वहां पे तो यार महोत्सव कोई नाम है आम लूट परंपरा।
1: तो इनको भी आमंत्रित कर दो ना, श्रोतान को भी।
0: हाँ तो प्यारी भैया बहनाओ देखो श्रुति बहन ने कह दई है, तो श्रुति बहनों जा रही हैं, इनके संग हम झोला लेके जा रहे हैं, क्योंकि रथ यात्रा में आम ना लूटो तो फिर कहाँ लूटो। तो
1: सही कह
0: प्यारे
1: रही
0: भैया
1: हो।
0: बहनाओ आप अपने परिजनन के संग और इष्ट मित्रन के संग आम लूटवे को जगन्नाथ रथ यात्रा में वृंदावन जरूर पधारियो।
1: आपको स्वागत हम
0: हाँ
1: करेंगे।
0: तो प्यारे भैया बहनाओ इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मोय यानी श्रुतिपुरी को देव अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: बीके

हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, नन्हे मुन्ने श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती।
1: और ये समय है प्रोग्राम रेडियो किड्स का। बच्चों की मुस्कान हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है और इसी खुशी को दुगना करने आए हैं आज हमारे साथ
2: रेडियो किड्स।
0: चलिए जानते हैं इन रेडियो किड्स के नाम।
3: मेरा नाम वंशिका है और मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम दर्शिता है, मैं कक्षा 3 में हूँ।
5: मेरा नाम मोक्ष है, मैं कक्षा 4 में हूँ।
1: आप सब कैसे हो?
6: हम सब ठीक है।
1: अब तो छुट्टियाँ खत्म हो गई और स्कूल भी खुल गए हैं। खुल गए हैं ना सबके स्कूल?
4: यस।
7: हाँ हाँ जी दीदी, हमारे स्कूल खुल चुके हैं।
1: और अब तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं। लेकिन सबके कुछ ना कुछ शौक होते हैं ना। तो चलो बताओ अपना अपना एक एक शौक। एक एक क्या, बहुत सारे शौक बताओ।
7: मेरा शौक तो चित्र बनाना, डांस करना और गाने गाने में है।
1: दर्शिता तुम भी बताओ।
4: मेरे शौक ये है कि मुझे स्विमिंग करना पसंद है, डांस करना पसंद है, पियानो बजाना पसंद है और हाइड एंड सीक खेलने में पसंद है।
1: और मोक्ष तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम भी बता दो।
5: मेरे को रनिंग करना पसंद है, हाइड एंड सीक खेलना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है।
4: दीदी मुझे तो स्विमिंग में ड्राइव मारनी भी आती है।
0: अब आप सब बताओ कि पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक पूरे करना क्यों जरूरी है?
4: पढ़ाई के साथ शौक भी बहुत जरूरी है। जब हम

0: पढ़ाई करते करते बोर भी जाते तो शौक भी तो बहुत जरूरी होते हैं।
1: दीदी।
2: हाँ वंशिका।
1: ज्यादा देर पढ़ाई करने से हमारा दिमाग थक जाता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे बाहर जाके खेलना चाहिए। उससे हमारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा और फिर हम और भी ज्यादा फोकस्ड पढ़ाई कर सकते हैं, और ऐसा करने से हम जल्दी चीजें याद कर सकते हैं।
2: वंशिका ने तो बिल्कुल सही कहा। क्या लगता है मोक्ष, ऐसा करना चाहिए?
0: हाँ दीदी, ऐसा करना चाहिए।
2: अच्छा, और खेलना और भी चीजों के लिए जरूरी है?
1: दीदी, हमारी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें खेलना जरूरी है।
2: हाँ, जब खेलेंगे तो क्या होंगे, हम फिजिकली
0: स्ट्रांग हो जाएंगे।
2: अरे दक्षिता को तो बहुत कुछ पता है।
0: मैं एक पोयम बोलना चाहती हूँ।
2: हाँ दक्षिता सुनाओ।
0: हे जगपालक हे भगवान, सबको दो सच्चा शिव ज्ञान, हाथ जोड़ कर करे प्रणाम, करे तुम्हारा ही गुणगान, कभी किसी से झूठ न बोले, पहले सोचे फिर मुंह खोले, अपनी मीठी भाषा से हम कानों में भी रस घोले, दीन दुखी की मदद करे दिन, दो सबको ऐसा वरदान। थैंक यू।
2: अरे वाह दक्षिता, तुमने तो बहुत ही अच्छी सी कविता सुनाई। अब एक प्यारा सा गीत सुन ले।
1: बिल्कुल।
2: अच्छा बताओ फिर कौन सा सुनोगी?
0: लकड़ी की काट।

0: अचानक से हमारे सामने वाला बड़ा सा आम का पेड़ बोलने लग जाए तो हम उनसे क्या बातें करेंगे? और क्या तुम लोग भी उनसे बातें करना चाहते हो?
1: हाँ हाँ, बातें तो करेंगे, लेकिन क्या बातें करेंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
2: अरे मोक्ष, कोई एकदम पेड़ बोलने लग जाएगा, तुम डरोगे नहीं?
1: नहीं दीदी, मैं नहीं डरूंगा।
2: वाह, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो।
1: अगर पेड़ बोलते और अगर हमें सुनते तो मैं उन्हें धन्यवाद देता, कहता शुक्रिया पेड़ भाई, जो तुम हमें साफ हवा और छाया देते हो और फल देते हो और हमसे बदले में कुछ नहीं मांगते, माफ़ी मांगता। सॉरी, हम इंसानों ने तुम्हें काट कर घर बनाए, फैक्ट्री लगाई, अब हम गलती सुधारेंगे। हाल चाल पूछता, गर्मी में पानी मिल रहा है, कोई तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कोई कीड़ा तो नहीं लगा, वादा करता आज से मैं हर साल कम से कम 2 पेड़ लगाऊंगा और दूसरों से भी लगवाऊंगा। उनकी कहानी सुनता, तुमने कितने मौसम देखे, कितने बच्चों को झूला झुलाया, बताओ ना पेड़ दादा।
3: मोक्ष, आप तो बहुत अच्छी बातें करोगे पेड़ के साथ। वंशिका, तुम भी बताओ।
0: अगर हम पेड़ अचानक बातें करने लगा और हम उसके पास गए तो वो तो रो रहा ही होगा, क्योंकि इंसानों ने इतने पेड़ काटे हैं, उनको इतना दर्द दिया है, तो वो रोने लग जाते। तो फिर वो हमसे बोलते, ओ बच्चों, तुम तो पेड़ लगाते हो पर कुछ मुझे काट देते हैं। मैं तो उनको बोलती कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर मैं और मेरे 2 दोस्त मिलकर हर साल बहुत सारे पेड़ लगाएंगे।
3: वंशिका, आपने तो बहुत अच्छी बातें बोली। तो हम अपने बर्थडे पर एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं, है ना? और पेड़ हमारी कितनी हेल्प करते हैं। अच्छा बताओ तो, पेड़ और वन हमें क्या क्या देते हैं?
1: पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं और छाया देते हैं धूप से बचाने के लिए।
2: और इतनी गर्मी में पेड़ की छाया कितनी अच्छी लगती है ना?
0: हाँ, हमें बहुत ज्यादा ठंडी हवा मिलती है।
3: दक्षिता, आप क्यों चुप हो, आप भी बताओ कुछ।
4: अगर मुझे पेड़ मिलेगा तो मैं उस पेड़ को बोलूंगी, शुक्रिया पेड़ कि तुम हमें इतनी अच्छी हवा देते हो, इतनी अच्छी छाया देते हो, हमें फल सब्जियां देते हो और हमें ऑक्सीजन देते हो। थैंक यू पेड़ हमें उन सारी चीजों के लिए।
3: दक्षिता, आप एक कविता लाए हो ना?
4: हाँ,
3: सुना दो फिर।
4: मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटो, दर्द मुझे भी होता है, मेरा मन भी रोता है।
2: बहुत अच्छी कविता थी दक्षिता तुम्हारी।
1: मैं भी कविता सुनाना चाहता हूँ दीदी। पेड़ हमारे साथी है, पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने जरूरी है, फिर भी बेचारे कटते हैं, हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे।
3: अच्छा ये तो बताओ, आज हम वन और पेड़ों की बातें क्यों कर रहे हैं?
0: मैं बताऊं?
2: हाँ बताओ वंशिका।
0: 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव था। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। वन महोत्सव का उद्देश्य वनों के कटाव को रोकना, हरियाली बढ़ाना और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना।
2: बातें तो हमने बहुत सारी कर ली,
3: अब एक प्यारा सा गीत सुन ले।
0: हाँ, हमें बिल्कुल एक गाना सुनना है।

0: गीत कैसा लगा?
1: बहुत ही अच्छा।
0: अच्छा बताओ, समर वेकेशन में आप सब कहाँ कहाँ गए थे?
1: मैं बताती हूँ, मैं अपने दादी नानी के घर घूमने गई थी। वहाँ मैंने अपनी दादी नानी से बहुत सारी बातें करी। मैंने अपनी दादी के साथ पेड़ लगाए थे।
0: वंशिका तो बहुत इंजॉय करके आई है अपनी समर वेकेशन में। दर्शिता तुम क्यों चुप बैठी हो, तुम भी बताओ तुम कहाँ गई थी?
2: मेरे पापा और मम्मा और मेरी दादी और दादू साथ में मेरे साथ वाटर पार्क गए।
0: मोक्ष अपनी समर वेकेशन में कहाँ कहाँ गए थे?
3: मैं अपनी नानी के घर गया था।
0: और क्या सीखा आपने अपनी नानी से? नानी ने कहानियाँ तो सुनाई होंगी, सुनाई थी?
3: हाँ सुनाई थी।
0: तो बताओ नानी और दादी की जो सीख होती है हमें क्या सिखाती है, पहले बताएगा मोक्ष।
3: सबर रखना, नानी कहती है जल्दी का काम शैतान का होता है। कोई भी काम आराम से सबर से करो तो अच्छा होता है। इज्जत करना, बड़ों के पैर छूना, थैंक यू प्लीज बोलना, किसी को बीच में ना टोकना, ये सारी मैनर्स नानी से सीखते हैं। नानी हमें सिखाती है सुबह जल्दी उठो, ताजी ताजी हवा में सैर करो, पूरा दिन अच्छा जाता है, बॉडी में फुर्ती रहती है।
0: मोक्ष आप तो अपनी नानी के घर से बहुत अच्छी बातें सीख कर आए हो। वंशिका आप भी बताओ।
1: मेरी दादी और नानी ने मुझे कहानियाँ सुनाई, जैसे राजा रानी, परियों और पंचतंत्र की कहानियों से हमें समझदारी और संस्कार मिलते हैं। उन्होंने एक चीज और सिखाई, रिश्तों को जोड़ के रखना, त्योहार पर सबको बुलाना, फोन करके हालचाल लेना, छोटे बड़े से प्यार से बात करना और सबका आदर करना।
0: अरे वाह वंशिका,
2: मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ।
0: सुनाओ दर्शिता।

0: गए।
1: बात अर्षिता, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो।
0: सच में ये तो बहुत अच्छा गीत था।
1: चलो सुने एक और प्यारे से गीत।

0: कैसा लगा दर्शिता गीत?
1: बहुत ही अच्छा।
0: मोक्ष तुम्हें कैसा लगा?
2: बहुत ही अच्छा।
3: अब समय हो गया है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे,
0: तब तक के लिए
4: बाय बाय।

अभी हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:10 पर आप सुन सकते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। वहीं शाम 5:30 आप सुन सकते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। ग्राम संसार इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 और 7:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत। गजल और कव्वाली का आप आनंद उठा सकते हैं शाम 7:30। कवि गोष्ठी रात्रि 8:00 और फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आप सुन सकते हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, इस कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 10:00 किया जाएगा और आपकी फरमाइश, ये फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 11:10 पर किया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

0: खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है
3: शिवांश।
2: और शिवांश, सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं फीफा विश्व कप 2026 के चार सेमीफाइनलिस्ट आ चुके हैं। कैसे रहेंगे मुकाबले, आइए सुनते हैं।

वर्ल्ड कप जैसे जैसे अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ता है, मैदान पर हर मुकाबले की मायने भी बदलने लगते हैं। यहाँ एक छोटी सी चूक पूरे सफर पर भारी पड़ सकती है, तो एक शानदार पल किसी टीम को इतिहास के और करीब ले जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भी कुछ ऐसा ही रोमांच देखने को मिला। एक ओर नॉर्वे के सामने थी इंग्लैंड की चुनौती, तो दूसरी ओर मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से हुआ। सेमीफाइनल में जगह बनाने की इस जंग में किसने दबाव को जीत में बदला और किसका सफर यही थम गया, आइए बात करते हैं इन दोनों मुकाबलों की और जानते हैं खास झलकियां। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया। फुल टाइम में स्कोर 1-1 से बराबर रहने की वजह से मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया, जिसमें मौजूदा चैंपियन ने 2 गोल दागकर मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर लिया। स्विट्जरलैंड को दूसरे हाफ में रेड कार्ड मिला, जिसके बाद वे 10 खिलाड़ियों के साथ खेले और मैच को एक्स्ट्रा टाइम तक ले गए। हालांकि एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने से कुछ मिनट पहले ही उनकी डिफेंस लाइन टूट गई और अर्जेंटीना ने 2 गोल करके इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अर्जेंटीना की तरफ से एल्वारेस और मार्टिनेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल किए, जबकि मैच के 10वें मिनट में ही एलिस्टर ने हेडर से गेंद को गोल में पहुंचाकर स्कोर 1-0 कर दिया था। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेलिंगम के शानदार 2 गोल की बदौलत इंग्लैंड ने नॉर्वे को एक्स्ट्रा टाइम के बाद 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में चौथी बार खेलने के लिए तैयार है, जहां उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। बेलिंगम और कप्तान हैरी केन ने वर्ल्ड कप 2026 में 6-6 गोल किए हैं। यह पहली बार है जब इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के एक ही एडिशन में कम से कम 5-5 गोल किए हैं। इसके साथ ही टूर्नामेंट के 4 सेमीफाइनलिस्ट के नाम सामने आ गए हैं। एक सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। 1990 के बाद पहला ऐसा मौका है जब फीफा वर्ल्ड कप की सभी 4 सेमीफाइनलिस्ट पूर्व चैंपियन हैं। पहला सेमीफाइनल फ्रांस बनाम स्पेन भारतीय समय के अनुसार बुधवार 15 जुलाई को रात 12:30 पर शुरू होगा। वही दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड गुरुवार 16 जुलाई को रात 12:30 पर खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप के इन क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के साथ अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का सफर यही खत्म हुआ, जबकि इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब मुकाबला सिर्फ आगे बढ़ने का नहीं, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के और करीब पहुंचने का है। फ्रांस और स्पेन के बीच एक बड़ी टक्कर होगी, तो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले पर भी दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की नजर टिकी होंगी। जैसे जैसे टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, फुटबॉल का रोमांच भी लगातार बढ़ता जा रहा है।

0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इन चारों टीमों के खेल और उनकी रणनीति के बारे में हमने बात की भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान तरुण रॉय से।
1: अब आगे का जो है चारों में आप कुछ भी नहीं तय कर सकते, चारों ऐसी टीम है जो कि फुल्ली दावेदार थी जो ये पहुंचेंगी और ये डेफिनेटली इन्हीं में से कोई वर्ल्ड कप जीतेगा। तो अभी तो यही है, जो चारों अच्छी टीम आ गई है और जैसे इंग्लैंड है 1966 के बाद से पहुंचा है, वो तो चाहेगी जो मैं इस बार पहुंचू इस बार जीते, अदरवाइज अब जब के चार बार वो पहुंचे हैं सेमीफाइनल में तो उनके लिए भी बहुत वो है, टीम अच्छी है। सेम वैसे है आपका अर्जेंटीना, मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है ये और वो भी ये जरूर चाहेगा तो मेरा लास्ट वर्ल्ड कप मैं भी ये जीत के जाऊं, और इसमें एडवांटेज उनको बहुत है, मैक्सिमम क्राउड जो है उनका है, उनका मैच भी सेमीफाइनल है अटलांटा में, अटलांटा से मतलब काफी मतलब वहां से जो अर्जेंटीना से मैक्सिमम आ सकते हैं वहाँ पे और आएंगे डेफिनेटली, मेरे हिसाब से 75% तो पब्लिक होने की होगी वहाँ पे, वो एक एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन वो खुद एक है मेसी मींस मैजिक, वो अगर मैजिक दिखाया आज वो मैजिक नहीं दिखा लेकिन हो सकता है सेमीफाइनल में दिख जाए। दूसरी तरफ फिर फ्रांस है, फ्रांस आपको पता ही है एमबीपे के साथ अब सिर्फ अकेला नहीं रहा, अब साथी जो है उनके बहुत ही अच्छे खेलने लगे हैं जिससे कि अभी लग रहा है जो हाँ ये क्लैश जो होगा उनका तो डेफिनेटली बहुत, स्पेन है ही दोनों यूरोपियन साइड है, स्पेन 2010 में जो गेम दिखाया था अभी वही वाला गेम टिकी टाका वाला दिखा रहे हैं, सेम गेम आ गया है, दोनों आपस में जानते हैं सबको कैसे खेलते हैं, एक ही क्लब में खेलते हैं चाहे वो प्रीमियर लीग हो चाहे यूरोपियन में किसी भी क्लब में हो, तो मुझे लगता है अच्छा क्लैश बहुत अच्छा दिखेगा और ये किसको पहले कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और मुझे लगता है जो भी टीम फाइनल में आएगी वो भी एक बहुत अच्छी टीम होगी।
0: मतलब दो सेमीफाइनल मुकाबले होने हैं और उसमें एक तरफ होंगे फ्रांस और स्पेन और दूसरे मुकाबले में होंगे अर्जेंटीना और इंग्लैंड, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सर कि फ्रांस और स्पेन वाला जो वर्ल्ड कप का मुकाबला है सेमीफाइनल, ये शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन मुकाबला हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो वन ऑफ द समझ लो आप फाइनल मैच है, वो फाइनल मैच देख रहे हैं आप और गेम भी मेरे को लगता है उसी स्टैंडर्ड का होगा और डेफिनेटली फ्रांस स्पेन काफी बार आपस में खेले हुए हैं और यहाँ दिखेगा जो हमें जो क्वालिटी ऑफ यूरोपियन सॉकर कितना इम्प्रूव किया, क्यों ना यहाँ पूरा टेक्टिकल पार्ट यहाँ पे दिखेगा, मैक्सिमम स्ट्रेटेजी दिखेगा, आजकल जो हाइड्रेशन के लिए ब्रेक दे रहे हैं वहाँ पे मैंने मैक्सिमम देखे, ऐसी टीमें जब पहले 20-22 मिनट्स में नहीं खेल पा रहे वो हाइड्रेशन 3 मिनट का जो ब्रेक मिल रहा है उसके बाद चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो कोच उसके बाद जो स्ट्रेटेजी दे रहा है उस स्ट्रेटेजी में आपके गेम उसको पलट दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें चेंज मिलेगा, सेकेंड हाफ में आके भी चेंज मिलेगा, तो ऐसा नहीं है किसने एक गोल मार दिया या दो गोल से जीत रही है, तो कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो 3-2 से जीत ना जाए, ये भी हो सकता है।
0: तो आपके हिसाब से दो फाइनलिस्ट कौन हो सकते हैं?
1: मेरे हिसाब से अभी तक मतलब जैसे मैंने कहा ये अनएक्सपेक्टेडेबल आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है जो इस बार अर्जेंटीना और स्पेन का फिर से ये मुकाबला फाइनल हो सकता है।

0: जो टीम अच्छा खेलेगी वही इस फाइनल में पहुंचेगी, ये कहना है पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान तरुण रॉय का। और फुटबॉल की फील्ड से अब आपको लिए चलते हैं शूटिंग रेंज पर, तो क्या कुछ खास है आइए सुनते हैं।
1: इटली के लोनाटो में शनिवार को हुए ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में नीरू ढांडा ने महिलाओं के ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का पदक खाता खोला। ये ISSF वर्ल्ड कप में नीरू ढांडा का पहला व्यक्तिगत पदक था और उनके करियर का कुल मिलाकर दूसरा पदक था। इससे पहले इस साल अलमाटी लेग में नीरू ने विवान कुमार के साथ मिलकर मिक्स ट्रैप में कांस्य पदक जीता था। दिलचस्प बात यह है कि इटली में नीरू की जीत से पहले इस साल शॉटगन इवेंट में भारत का ये एकमात्र ISSF वर्ल्ड कप मेडल था। क्वालिफायर में 125 में से 121 पॉइंट्स के साथ फाइनल में पहुंचने के बाद नीरू ने 8 महिला खिलाड़ियों के फाइनल में भी अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। भारतीय शूटर ने बड़ी आसानी से शीर्ष 3 में जगह बनाई और पोडियम पर अपनी जगह पक्की कर

0: मैंने पूरा अपना 200% दिया है. और थैंक यू NIRI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्पेशली थैंक यू साई को, थैंक यू OGQ, भोपाल शूटिंग एकेडमी, इंडियन आर्मी स्पॉन्सर्स, ऑल इंडिया सपोर्ट. थैंक यू सो मच. ये तो मेरे को, मतलब मैं पिछले 3 बार से मिस कर रही थी मेडल को, फाइनल में आके बिब से बाहर हो रही थी, कभी फर्स्ट. तो अब की बार मेरे को यही चैलेंज था कि मुझे अपना सबसे ऊपर बिब नंबर रखना है और मैं फाइट करूं. बिब नंबर से मैं बाहर नहीं आऊं, और कोई भी हो सकता है लेकिन मैं बिब नंबर से बाहर नहीं आऊंगी. तो मेरे को फाइट करना है अपने आप को, क्वालिफिकेशन से लेके कमिटमेंट के साथ, फर्स्ट टारगेट से क्वालिफिकेशन के फाइनल के एंड शॉट तक कमिटमेंट के साथ शूट किया मैंने कि मैं बेस्ट हूँ.
1: शूटिंग रेंज के बाद अब आपको लिए चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एक बार फिर अपना मुकाबला हार गई इंग्लैंड के साथ. जो 5वां T20 मुकाबला खेला गया उसमें भारतीय क्रिकेट टीम केवल 201 रन ही बना सकी. इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 257 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर. एक बहुत बड़ा मैमथ टोटल उन्होंने यहां पर क्रिएट किया. और उसके बाद भारतीय टीम को कहा कि आप 258 रन बनाइए और मुकाबला जीत लीजिए. लेकिन भारतीय टीम ऐसा नहीं कर पाई. भारत की तरफ से पारी की शुरुआत की संजू सैमसन ने, उन्होंने 27 रन का योगदान दिया. अभिषेक शर्मा ने 3, ईशान किशन ने 56, श्रेयस अय्यर ने 28, तिलक वर्मा ने 53, शिवम दुबे 14, सूर्यांश शेगड़े ने 7, अक्षर पटेल 3, अर्शदीप सिंह 4 और प्रसिद्ध कृष्णा केवल 1 रन का योगदान टीम के लिए दे सके. और निर्धारित 20 ओवर्स में 201 रन ही भारतीय टीम बना सकी. और ये इस हार के बाद भारतीय टीम सीरीज में अपने सभी मुकाबले हार गई, लेकिन एक मुकाबला वो वर्षा के कारण बाधित था जो पूरा नहीं हो सका. तो कुल मिलाकर बहुत ही खराब सीरीज रही शिवांश ये भारतीय टीम के लिए.
2: जी बिल्कुल, काफी खराब रही.
1: अब आगे जो मुकाबले होने हैं तो कुछ उसमें उम्मीद है कि शायद कुछ चेंजेस हों. और चेंजेस ये हैं कि प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई, जो हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, उनको रिप्लेस किया गया है. और राणा को बताया जा रहा है कि थोड़ा उनको राइट लेग में, उनको कुछ मांसपेशियों में खिंचाव है जो उनको तीसरे मुकाबले में लगा था, उसमें उनको चोट लग गई थी. और वहीं चक्रवर्ती को भी डिस्कम्फर्ट फील किया है, उनको उनके हाथ के कुछ मसल्स हैं और उनके जो हैमस्ट्रिंग का मसल्स है, यानी कि मांसपेशियों में जकड़न अकड़न की वजह से हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को फिलहाल आराम दिया गया है. और उनकी जगह टीम में बने रहेंगे प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई. वहीं अच्छी खबर क्रिकेट के मैदान से यह है कि भारतीय महिलाएं बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही हैं. और इस समय जो सूरत हाल है वो ये है कि दूसरी पारी में भारतीय महिलाएं 250 रन बना चुकी हैं 4 विकेट के नुकसान पर. इंग्लैंड के खिलाफ उनका ये टेस्ट मैच चल रहा है और तीसरे दिन का खेल अभी चल रहा है. और भारतीय टीम 365 रन की लीड ले चुकी है. और सबसे अच्छी बात यह है कि यस्तिका भाटिया बहुत अच्छे से, बिल्कुल देख परख कर बल्लेबाजी कर रही हैं और 91 रन उन्होंने बना लिए हैं. और वहीं हरमनप्रीत कौर आउट हो गई, उन्होंने 16 रन बनाए. जेमी रॉड्रिगेस ने 3 रन बनाए. स्मृति मंदाना ने आउट होने से पहले 70 रन बनाए. शेफाली वर्मा ने 33 रन का योगदान दिया. और दीप्ति शर्मा इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं. तो कहीं ना कहीं शिकंजा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अब और भी मजबूत होता जा रहा है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के ऊपर. और क्रांति गौड ने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे. और क्रांति गौड वो पहली ऐसी खिलाड़ी बनी है, भारतीय महिला खिलाड़ी, जो लॉर्ड्स में जो बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर उनका नाम दर्ज हो गया है, क्योंकि उन्होंने 5 विकेट लिए हैं. और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत भी है कि यदि लॉर्ड्स में अधिक मुकाबले, अधिक टेस्ट मैच खेले जाएंगे तभी वहां पर हमारे खिलाड़ियों के नाम भी आएंगे. तो इस उपलब्धि के बाद क्या कहा क्रांति गौड ने, आइए सुनते हैं.
3: कि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि फर्स्ट नेम मेरा है, देन मेरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड की बात है ये. अभी थॉट्स तो ऐसा, सारे प्लेयर्स का ड्रीम होता है कि 5 विकेट्स अगेन फर्स्ट टाइम हमारा लॉर्ड्स में मैच हुआ है, तो एक ही थिंग्स था कि

0: और देखिए सरकार द्वारा जो आम आदमी की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक योजना शुरू की गई अटल पेंशन योजना, जिसके तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो आयकरदाता ना हो 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की गारंटेड जो पेंशन प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए वही देखिए जो जो
1: अंशदान है,
0: अंशदान तो है ही अश्विनी भाई।

0: जो गारंटी में जो प्रतिमा 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक किसके जो उसके अंशदान के हिसाब से और उसकी आयु के हिसाब से ही वो ये चुन सकता है। और साथ ही देखिए भाई जो उसके परिवार में अगर मान लो किसी वजह से जो आवेदक है उसकी मृत्यु हो जाती है तो भाई उसके परिवार के लिए भी ये पेंशन सुरक्षा रहती है।
1: बिल्कुल।
0: और पात्रता की अगर बात करें तो देखिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसका किसी भी बैंक या डाकघर में बचत खाता होना अनिवार्य है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल, छोटी छोटी अगर अगर आप इन सभी जो सरकार द्वारा चले गए स्कीमों का फायदा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस पैसे का लाभ जरूर मिलेगा, चाहे चाहे उसका अंशदान छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या आप कोशिश करें कि 18 से 40 की उम्र में रहते रहते ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपना अगर हो सके तो आप ज़्यादा ही अंशदान करें जिससे पेंशन आपको भविष्य में अच्छे मिल पाए और अगर अगर पैसे रहेंगे तो जीवन भी आपका अच्छा रहेगा और इन योजनाओं का आप जरूर लाभ उठाएं,
0: आप स्वयं भी लाभ उठाएं और दूसरे जो भाई जिनको इस बारे में जानकारी नहीं उनको भी अवश्य जानकारी दें।
1: बिल्कुल
0: भाई, अब आज के हमारे जो अगले कलाकार हैं वो है जयवीर भाटी और जयवीर भाटी को सुनने के लिए जो पहली जो फरमाइश मिली है चेक 5 MD पत्र रोड से, इसको भेजने वाले मंगल, श्रीमती रोशनी, अंकुर और उनका समस्त परिवार।
1: जी जी जी जी जी। और ये पत्र में मिला है GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से। ये सुनना चाहते हैं हमारे जयवीर भाटी को। ये है मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना और आफिसा और रजिया सुल्तान और ये है मोहम्मद जावेद अंसारी और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मेरी है जमानिया गाजीपुर से, इसको भेजने वाले सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति।
1: गौरण तले वाला उत्तराखंड से पत्र मिला है। ये नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है दतरंगी से छत्तीसगढ़ से और भेजने वाले हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और उनका समस्त परिवार।
1: जी शादुल शहर राजस्थान से पत्र मिला है राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और उनका पूरा परिवार।
0: जयवीर भाटी को ही सुनना चाहते हैं जटवाड़िया गाजियाबाद से शीशपाल अकेला।
1: जी
0: साथ ही हमें फरमाइश मिले गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकीत को, आरती रानी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: जिला अम्बाला से पत्र लिखते हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और उनका पूरा परिवार।
0: और ये फरमाइश हमें मिले रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुण वर्मा की।
1: जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से पत्र मिला है हमें, ये है विक्रम कंडवासरा, सचिन कंडवासरा, सतीश, योगेश और उनका पूरा परिवार।
0: और ये फरमाइश हमें मिली रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब की।
1: जी ये है दादू बाबू रोड झारखंड से पत्र लिखते हैं मोहम्मद यासीन अंजा और बाबू अहमद, फिक्री नवाज, बेबी चाह और शादिया और उनका पूरा परिवार। वहीं पर नूर महल महलौल सीतामणि से पत्र हमें लिखते हैं, ये है मुरसुद जहानाज और शाजिया शाहीनाज और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है नगर निगम वार्ड 28 से मिली है सीतामढ़ी से और इसको भेजने वाले अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम अकरम और उनका समस्त परिवार।
1: जनकपुरी सहारनपुर से पत्र भी लिखते हैं जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पारल डिकोस्टा, विलियम डिकोस्टा जिन्होंने सुनना चाहा है जयवीर भाटी को।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और उनके समस्त परिवार की तरफ से। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं जयवीर भाटी से ये रागनी।

0: तो ये तो सुना जय भाटी की आवाज़ में। और अब भाइयों ने फरमाइश की है सनोज सनोज को, तो उसके लिए पत्र हमें मिले हुए हैं, ये पत्र पढ़ देते हैं। ये है पहला पत्र, नरविला महाराष्ट्र से मिला है, पीएस नेहवाकर, निबरा नेहवाकर, विशाल नेहवाकर। और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये है गांव दुहालपुर उत्तर प्रदेश से, ज़िला मुरादाबाद है, मुकेश कुमार कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, मानवी, तन्वी, मोहिनी, ऋतिक और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित राय की। इसी क्रम में एक और फरमाइश हमें मिली है कुमारी छत्तीसगढ़ से, बलराम दामिनी डोमेश और उनके समस्त परिवार।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवगन और कौशल्या देवगन, हिमलता देवगन, उनका पूरा परिवार।
1: और फरमाइश हमें काफी और भी मिली है सोनी भाई, जो हम अपने अगले कार्य

अश्मी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी सनोज से, और सनोज की गाइस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश

0: मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि ये अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वे इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 303 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला डबल्स फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोव्स्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी से जारी है। हानयू और मलाडोनोविक ने पहला सेट 6-3 से जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: असोनी भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर है। देखिए मानसून एक तरह से पूरे भारत में आ चुकी है और भाई ऐसे में जो खरीफ की फसलें लगा रखी है भाइयों ने, उसमें भाई खरपतवार काफी हो जाते हैं, तो खरीफ की सभी फसलों में आवश्यकता अनुसार भाई निराई गुड़ाई करके खरपतवारों का नियंत्रण अवश्य करें। इससे देखिए भाई खरपतवार द्वारा जो फसलों को कम हानि होगी तथा जल की बचत होगी और साथ ही भाई जड़ों का विकास अच्छा होगा। जिन किसान भाइयों ने भाई धान की नर्सरी यदि 20 से 25 दिन की हो गई हो तो भाई तैयार खेत में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर सबसे उचित मानी जाती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। इस मौसम में किसान भाई देखे मक्का की फसल लगा सकते हैं, साथ ही इस समय जो चारे के लिए ज्वार की बुआई उपयुक्त मानी जाती है।
1: वहीं पर धान की आप पौशाला में भी यदि पौध का रंग पीला पड़ रहा है तो इसे लोहा तत्व की कमी मान सकते हैं। पौधों की ऊपरी पत्तियों यदि पीली और नीचे से हरी हो रही हैं तो लोहा तत्व की कमी दर्शाता है, इसके लिए आप उपचार जरूर करें।
0: बिल्कुल। और जो भाई देखिए सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो इस समय मिर्च बैंगन व फूल गोभी जो सितंबर में तैयार होने वाली किस्में की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है भाई समय, और किसान पौधशाला में जो कीट अवरोधी दवाओं का भी छिड़काव करें। साथ ही जो कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगर बात करें तो जो वर्षाकालीन फसल की बुआई करें, इसमें लौकी की जो उन्नत किस्में उसमें पूसा नवीन, पूसा समृद्धि, करेला की पूसा आदि ले सकते हैं।
1: वहीं पर अगर मिर्च के खेत में विषाणु रोगों के से ग्रसित पौध को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें, उसे उपरांत इसमें जो भी इसके लायक जो दवाइयां होती हैं इसे मिलाकर खेत में छिड़क दें और फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों में गोबर की खाद मिलाकर 5.0 मिलीलीटर क्लोरोफाइट फॉक्स 1 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढों में डालकर गड्ढों को पानी से भर दें ताकि दीमक और सफेद लट से बचाव हो सके और पौधे किसी प्रमाणित सूत्र से ही खरीदें।
0: और भाई साथ ही देखिए अगर मिट्टी की जांच ना कराई हो तो अपने खेत की मिट्टी की जांच भी अवश्य करा लें, जिससे कि पता चल जाए कि भाई खेत में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसी हिसाब से आप पोषक तत्व डालें तो आपका जो पैसा भी बचेगा और भाई जो फसल उत्पादन है वो भी अधिक होगा। इस तरह से भाई छोटी छोटी बातों का अपने मौसम के आधार पर ध्यान रखना है जिससे कि आप भरपूर उत्पादन ले पाए। सुनी भाई बातचीत भाइयों से और भी करेंगे, पत्रोत्तर कृषि पत्रोत्तर कार्यक्रम है तो भाई पत्र भी शामिल करेंगे, आपके हाथ में पत्र भी दिखाई दे रहा है और सबसे पहले सुन लेते हैं ब्रह्मपाल नगर से ये उपदेश।
1: जी

बलराम ब्रह्मपाल नागर की आवाज में ये उपदेश सुना आपने, और इसके लिए फरमाइश हमारे श्रोता ने की थी। ये राव करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, और एक और पत्र मिला आद ये गांव ग्राम पंचायत जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से।

0: राज्यपाल बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली थी भाई जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा बेगम और उनके समस्त परिवार की तरफ से, और ये फरमाइश हमें मिली है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली ढाणा नारसन भिवानी से जगदीश चिंडालिया, राजवीर चिंडालिया, सतीश चिंडालिया, ऋतिक चिंडालिया और केला देवी की।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से ये है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और उनका पूरा परिवार। यहीं पर एक और पत्र है गांव को माड़ा हेड़ा सहारनपुर से लिखते हैं, ये है ये शाहिना हसन, नाजिया इब्राहिम और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली एमएलबी रोड गाजियाबाद से, एमएलबी रोड ग्वालियर से भाई सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना और उनके समस्त परिवार की तरफ से। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल से फरमाइश मिली है रमेश कुमार कंबोज, पिंकी, वंश और भूपेश की।
0: आदर्श नगर मालवोड पंजाब से पत्र मिला हमने, इन्होंने फरमाइश की थी राज शर्मा, मनीषा शर्मा, योगेश शर्मा और मेडी शर्मा, सौरभ शर्मा उनका पूरा परिवार। और शिवराज सिंह नगर डबाली देशमुख से ये पत्र मिला, राजेश और इंदिरा ताई और उनका पूरा परिवार। ये खांडी बुलंद ढाना से पत्र मिला है, ये है दीपाली राम धाड़े और उनका पूरा परिवार।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिया खातून और उनके समस्त परिवार की तरफ से। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम और उनके समस्त परिवार की तरफ से। और इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है मंटू शर्मा की, गाँव सरेड़ा तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से।
0: और ये पत्र मिला है डुमराव बिहार से, ये डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम आदि अंसारी। और ये समीरपुर बक्सर से पत्र मिला है राज एस डी अंसारी, खातून अंसारी उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और डिंपल की, और ये फरमाइश हमें मिली नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से।
0: मोहली पंजाब से भी पत्र मिला है, ये है बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और उनका पूरा परिवार। और अब ये पत्र शामिल कर लेते हैं। ये पत्र हमें भेजा है मनोज कुमार ने, गांव शामली यूपी से है। ये पूछना चाहते हैं कि अब मानसून लगातार मतलब अब आ ही रहा है देश के अंदर, कहीं कहीं हर जगह पर मानसून आ चुका है, तो क्या मैं इस समय मूंग की खेती कर सकता हूं, और अगर मैं कर सकता हूं तो इसके लिए कौन कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, इसके लिए बीज दर कितनी मात्रा में लेना होगा और उन्नत किस्में कौन कौन सी रहेंगी जिससे अधिक उत्पादन मिल सके, और कौन कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जिससे फसल उत्पादन हमें अच्छा मिल सके।
1: भाई देखिए मनोज भाई, जून जुलाई का महीना यानी मानसून शुरू होने पर मूंग की बुआई अच्छी मानी जाती है। और जहाँ तक मिट्टी की आपने बात की तो देखिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त और अच्छी मानी जाती है। और साथ ही भाई देखिए खेत की जो तैयारी अच्छी तरह से आपको करनी चाहिए, 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें और पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें ताकि जो नमी है वो बनी रहे। और बीज दर की अगर आपने बात की है तो देखिए जायद की जो फसल के लिए जो मूंग की फसल के लिए भाई लगभग 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सबसे उचित माना जाता है। उन्नत किस्मों की अगर बात करें तो देखें मूंग की उन्नत किस्मों में SML 668, पूषा विशाल, पूषा विराट, IPM 02, MH 421, ये सभी किस्में 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, और MH 1762, पूषा 9531, ये भी भाई 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन जहाँ से भी आप बीज लें तो भाई उपचारित बीज लें, और बीज उपचारित ना हो तो भाई उपचारित अवश्य कर लें। जहाँ तक पंक्ति से यानी कतार से कतार की दूरी की अगर बात करें तो 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर सबसे उचित मानी जाती है। बीज की गहराई की बात करें तो बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना सबसे उचित माना जाता है। बुवाई के 20 से 25 दिन बाद भाई देखिए पहली निराई गुड़ाई अवश्य करें, और जिससे कि भाई खरपतवार नियंत्रण हो सके। जहाँ तक सिंचाई की बात है मनोज भाई, तो देखिए बारिश के मौसम में मूंग को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यदि बारिश लंबे समय तक न हो और भाई फूल आने के समय में आप खेत सूखा लगे तो एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। और देखिए साथ ही इसमें भाई जो कीट और रोग हैं वो पीला मोजेक, इल्ली व सफ़ेद मक्खी जो रोग भी लग जाते हैं उनसे भी भाई आपको देखे फसल को बचाना है। और जब कटाई और उपज की बात करें तो देखिए जब फलियां भूरी या काली होने लगे तब भाई तुड़ाई कर लें।

0: फलियों को धूप में सुखाकर थ्रेसर या लकड़ी से वेट कर दाना अलग कर लें। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे, उन्नत किस्म लेंगे और भाई उपचारित बीज आप लगाएंगे तो आप ले पाएंगे मूंग फसल से भरपूर उत्पादन।
1: तो अब बातें तो हो गई, आप सुन लेते हैं देवेंद्र सिंह की आवाज़ में ये उपदेश।

0: सुन रही है तो भाइयों ने देवेंद्र सिंह से सुन रहा हूँ उपदेश। और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें
1: जी,
0: कल 5:10 पर आनंद ले सकेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का
1: जी।
0: 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में जानकारी देंगे ग्रामीण महिलाओं के लिए ई कॉमर्स के अवसर। और योजना की अगर बात करें तो योजना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में जानकारी देंगे
1: जी।
0: 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी देंगे जलवायु परिवर्तन एवं खरीफ फसलों की सुरक्षा। साथ ही वही जानकारी देंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में और जो हरियाणा के चुनिंदा जो मंडियां हैं उनके बाजार भाव के बारे में भी जानकारी देंगे। और देखिए भाई, कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि भाई हम आपको दे सके खेती संबंधी और ग्रामीण विकास संबंधी नई नई जानकारी। और इसके बावजूद भी यदि कोई आपकी समस्या रह जाती तो हर रविवार को हम देते हैं कार्यक्रम कृषि पत्रोत्तर के साथ आपके जो चिट्ठियों के जवाब। तो इसके लिए भाई जरूरी है पता, साथ ही आपके कोई शिकायत सुझाव हो तो भाई हम अवश्य लिखें। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली 110001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है
1: जी, आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी है feedback@fnh कैपिटल में लिखें @gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है आप उसका सुझाव दे सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, चाहे वो ग्राम संसार हो, कृषि जगत हो, या चाहे लोक रंजनी हो, या किसान की बात हो, या फिर उन्नत किसान हो, अगर कोई भी आप जानकारी चाहते हैं इन कार्यक्रम में तो आप इस पते पर हमें पत्र लिख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने आपको बताया ही है।
0: और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब आनंद लेते हैं गजलों और कव्वालियों का। कार्यक्रम सबसे पहले सुनते हैं

0: और इसी के साथ गजल और कव्वालियों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राजधानी की 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़

0: रुपए प्रदान करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से पीएम उदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण का आयोजन हुआ। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राजधानी की 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि इससे मेट्रो विस्तार, बारापुरा एलिवेटेड कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, ईवी चार्जिंग स्टेशन सहित अनेक जनहितकारी परियोजनाएं अब तेज गति से साकार होंगी। उन्होंने आगे बताया कि पूंजीगत व्यय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिल्ली सरकार को 756 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान कर केंद्र सरकार ने विकास के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता और दिल्ली के सामर्थ्य पर अपना अटूट विश्वास भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से दिल्ली के विकास को एक नई शक्ति मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से संशोधित प्रधानमंत्री अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास और उत्थान योजना पीएम उदय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहले चरण में 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को लिखे एक पत्र में कहा है कि यह राशि आधुनिक भू सर्वे, जिला स्तर पर पीएम उदय प्रकोष्ठों के गठन और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए उपलब्ध कराई जाए।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजस्व विभाग दिल्ली के सभी 13 जिलों में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पीएम उदय प्रकोष्ठ स्थापित करेगा। इसके अलावा राजधानी की 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, आधुनिक तकनीक से डिजिटल मैपिंग और भू अभिलेखों का अद्यतन करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए वर्ष 2026-27 में पहले चरण के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पत्र में शहरी विकास कोष से इस राशि को स्वीकृत करने का अनुरोध करते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि समय पर वित्तीय सहायता मिलने से दिल्ली के लाखों निवासियों को संपत्ति अधिकारों से जुड़े लाभ शीघ्र और सुगमता से मिल सकेंगे। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से संगठन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम करने का आह्वान किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज गुरुग्राम में नवीन न्यायिक न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस भवन को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिससे न्याय मिलने की गति में तेजी आएगी।
3: इस प्रांगण में न्याय और न्याय की जो भावनाएं हैं वो हमेशा जीवित और जागृत रहेंगी। ये आवश्यक है कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी उतने ही संवेदनशील हों, कानून के प्रति सजग हों और लोगों के अधिकारों के प्रति भी वो संवेदनशील हों।
2: इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन संविधान की मर्यादा, न्यायपालिका पर जनता के विश्वास और आधुनिक न्याय व्यवस्था का प्रतीक है।
4: यह भूमि ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप, वैश्विक निवेश और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत केंद्र बना है। आज उसी विरासत की धरती पर न्याय का यह आधुनिक टावर ऑफ जस्टिस राष्ट्र को समर्पित हो रहा है।
2: वहीं केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी, तकनीक सक्षम और नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है।
5: आज का

0: दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: इस न्यायालय परिसर का उद्घाटन होने से लोगों को समयबद्ध और त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा। सकलीन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने आरोपियों के कब्जे से फर्जी पंजीकरण दस्तावेजों वाले और इंजन तथा चेसिस नंबरों से छेड़छाड़ किए गए 12 लग्जरी वाहन भी बरामद किए हैं।
3: पुलिस ने बताया कि ये गिरोह दिल्ली, पंजाब और राजस्थान तक फैला हुआ था। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी की लग्जरी गाड़ियां 4 से 5 लाख रुपए में खरीदते थे। इसके बाद वो वाहनों के इंजन और चेसिस नंबरों से छेड़छाड़ कर फर्जी पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार करते और इन वाहनों को असली बताकर पंजाब और राजस्थान में बेच देते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और चोरी के अन्य वाहनों का पता लगाने और इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए जाँच जारी है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
2: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने बिना टिकट यात्रा और ट्रेनों में अनाधिकृत प्रवेश कर रोक लगाने के लिए टिकट चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। मंडल की ओर से नियमित रूप से चलाए जा रहे ऐसे अभियानों के अंतर्गत यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दिल्ली मंडल ने कल आनंद विहार टर्मिनल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने के कुल 111 मामले पकड़े गए। अभियान के दौरान 1,11,700 रुपये का रेलवे राजस्व भी वसूला गया। दिल्ली सरकार में मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याओं और सुझावों को सुनकर उनके शीघ्र तथा प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनसेवा, संवाद और समाधान के संकल्प के साथ दिल्ली सरकार राजधानी के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने आवास पर दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के प्रति जन जागरूकता को लेकर भाजपा के रोहिणी जिलाध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने बताया कि बैठक में SIR की प्रक्रिया, पात्र मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचने, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देने तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। कार्यालय ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी का कल मैसूरू में निधन हो गया। उनकी उम्र 88 वर्ष थी। एस जानकी के संगीत सफर पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: 6 दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें दक्षिण भारत की नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता था। उन्होंने इलैयाराजा, MS विश्वनाथन, KV महादेवन और AR रहमान सहित अनेक दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया और कई पीढ़ियों की अभिनेत्रियों की आवाज बनी। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। अपने लंबे करियर में शास्त्रीय, रोमांटिक, लोक, हास्य और भावपूर्ण गीतों को समान सहजता से स्वर दिए। यार बिना चैन कहाँ रे, दिल में हो तुम, सिंगारा विलाना देवा, सकल कला वल्लवन, नगुवा नयन और चिन्नदा मल्लिगे हु।

0: हुए जैसे गीत उनकी मधुर और भावपूर्ण गायकी के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक महान स्वर साधिका को खो दिया है, जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: एस जानकी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने एक महान गायिका को खो दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जानकी अम्मा की गायकी ने कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एस जानकी का निधन संगीत जगत और देश के सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विभिन्न भाषाओं में एस जानकी के गीत पीढ़ियों तक लोकप्रिय रहे और उन्होंने अद्वितीय गरिमा और बहुमुखी प्रतिभा के साथ हर भावना को अभिव्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकी अम्मा के निधन से भारत की संगीत विरासत को अपूर्णीय क्षति हुई है। फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस दौरान कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सुमन देवी ने हिस्सा लिया। एशियाई चैंपियन और रजत पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम का सदस्य रही सुमन देवी ने कहा कि फिटनेस स्वस्थ जीवन का आधार है। सुमन ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट ने हर किसी को फिटनेस के प्रति जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभाई है।
2: ये बहुत अच्छी चीज हो रही है संडे को, ये फिट इंडिया के साइकिलिंग बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज को कंटिन्यू रखे और अपने सबको मैं कहना चाहूंगी कि ये सब लोग कुछ न कुछ वर्कआउट करते रहे।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ाने को लेकर चिंतित है।
3: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राजधानी की 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रूपए प्रावधान करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से पीएम उदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। और फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण का आयोजन हुआ। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
5: ओके सैलरी, नहीं झुमके
6: ना, पहले बचत,
5: पहले झुमके।
6: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
5: लेकिन झुमकों का क्या,
6: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
7: आरबीआई कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त।
10: नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त और मेरे साथ में देश के महत्वपूर्ण साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर आदेश त्यागी जी। आदेश त्यागी जी जब बोलेंगे तो उनके शब्द अपने आप बोलेंगे। दूसरे नंबर पर देश के बड़े महत्वपूर्ण साहित्यकार जमी से लेकर बहुत ऊपर तक साहित्य के लोगों का मार्ग प्रशस्त करने वाले मेरे भाई डॉक्टर प्रवीण आर्य जी और नारी सशक्तिकरण के प्रतीक आदरणीय ज्योति उपाध्याय जी। इस संगोष्ठी के पहली कवित्री के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी को।
11: बहुत आभार सर आपका। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय
7: आज आप सभी के बीच प्रेम के भाव लेकर उपस्थित

0: विकसित हुई हूँ। प्रेम लिखती हूँ, प्रेम गाती हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ और प्रेम ही सुनाती हूँ। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए
1: जी,
0: निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य। तो प्रेम के इस सुंदर भाव को मैं एक मुक्तक के माध्यम से आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ।
1: जी, स्वागत है।
0: जोड़ती हूँ आप सभी से।
1: जी, स्वागत है।

0: बहुत सुंदर, बहुत
1: हैं।
0: सुंदर।
1: श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी को पा लेना नहीं, प्रेम का अर्थ तो किसी में खो जाना होता है।
0: जी,
1: तो अपने श्री श्याम के प्रेम में खोइए राधिका, अपने मन के भावों को उनके चरणों में समर्पित करते हुए क्या कहती है सुनिएगा।
0: जी, स्वागत।

0: प्यार करते हैं, नहीं एक बार की है बात ये, हर बार करते हैं। बहुत आभार। देखिए, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि मैं प्रेम लिखती हूँ, प्रेम गाती हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ और प्रेम ही सुनाती हूँ। प्रेम के गीत से आप सभी को जोड़कर
1: स्वागत है, स्वागत।
0: मैं अपना काव्य पाठ
1: जी
0: से विराम दूंगी। उससे पूर्व मैं कहना चाहती हूँ कि गम मिले तो बहुत ना गुजारा हुआ, गम मिले तो बहुत ना गुजारा हुआ। साथ तेरा कभी ना गवारा हुआ, हम तुझे चाहते ही रहे टूटकर, हम तुझे चाहते ही रहे टूटकर, पर कभी तू सनम ना हमारा हुआ।
1: बढ़िया है, बढ़िया है।
0: इन्हीं भावों के साथ कहती हूँ।

0: साथियों, अभी आप डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी को सुन रहे थे। आपने उनको सारे रंगों और सारे रसों में सुना। हर व्यक्तित्व की अपनी विदा है। हमने ज्योति उपाध्याय जी के इस संगोष्ठी के कुछ क्षणों में कई सारी विधाओं का रसापान किया। मैं सीधा सीधा देश के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर की तरफ आना चाहूंगा। हस्ताक्षर का अपना एक पौधा है और एक अपना स्थान है। आप कल्पना कीजिए कि एक जो व्यक्तित्व शस्त्र के साथ शास्त्र उठाकर चलता हो, जिसके हाथ में जी भर पर बंदूक रही हो, उन हाथों में कलम उठाता हो, ऐसे बहुत ही महनीय साहित्यकार और देश के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आदरणीय आदेश त्यागी जी को मैं इस संगोष्ठी के दूसरे कवि क्रम में आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर आदेश त्यागी,
1: बहुत आभार,
0: स्वागत सर।
1: ये आप भी प्रेम की कवित्री हैं और मैं भी ताजिंदगी इश्क से वाबस्ता रहा हूँ
0: जी।
1: इश्क ही जिंदगी में उड़ा बिछाया है और अपने अनुभव से कहता हूँ कि जहन में बस ये बात रखिएगा
0: जी,
1: जहन में
0: बस ये बात
1: रखिएगा, इश्क से एहतियात रखिएगा।
0: बढ़िया,
1: जहन में बस ये बात रखिएगा
0: जी,
1: इश्क से एहतियात रखिएगा। और बहुत सी बातें होती हैं इस तरह से चलती रहती हैं, गिले शिकवे भी हैं। मेरा शिकवा इंडिविजुअली किसी से नहीं है, जाति तौर से नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात तो मुझे कहनी पड़ती है कि बहुत से लोग समझ नहीं पाए
0: जी,
1: पढ़ नहीं पाए मुझे। वजह क्या थी कि पढ़ते कैसे तुम मुझे, मुश्किल थे हालात। पढ़ते कैसे तुम मुझे, मुश्किल थे हालात। तुमको आदत लफ्ज की,
2: अरे वाह,
1: मैं खालिस जज्बात।
3: बहुत बढ़िया।
1: जमाने से जमाने सा गुजरता जा रहा हूँ मैं, जमाने से जमाने सा गुजरता जा रहा हूँ
0: मैं। बढ़िया,
1: कोई बीता हुआ लम्हा सा बनता जा रहा हूँ। और सुनो सुनो, लिखकर कहीं रख लो मुझे अपनी किताबों में। सुनो, लिखकर कहीं रख लो मुझे अपनी किताबों में, तुम्हारी याद की जद से निकलता जा रहा
3: हूँ। बहुत खूबसूरत।
1: और याद की बात तो इस तरह से कि अब नहीं तो कुछ दिनों के बाद हो जाऊंगा मैं, अब नहीं तो कुछ दिनों के बाद हो जाऊंगा मैं, दाद की फरियाद की तादाद हो जाऊंगा मैं, अब नहीं तो कुछ दिनों के बाद हो जाऊंगा मैं, दाद की फरियाद की तादाद हो जाऊंगा मैं। और घर भुलाने की मुझे ये कोशिशें जारी रही, तुमको एक दिन मुंह जबाने याद हो
3: जाऊंगा।
1: घर भुलाने की मुझे ये कोशिशें जारी रही, तुमको एक दिन मुंह जबानी याद हो जाऊंगा मैं। मैं अपने हाथ में घड़ी नहीं बांधता। इसका कारण क्या है कि उमूमन बात तो वैसे भी आती नहीं सब तक, उमूमन बात तो वैसे भी आती नहीं लब तक, पहुंचती तुम तलक कैसे कि जब पहुंची नहीं सब तक।
0: बढ़िया,
1: हमारा हाथ, हमारा हाथ तुमने जिस घड़ी छोड़ा था बस तब से, हमारा हाथ तुमने जिस घड़ी छोड़ा था बस तब से, कभी फिर हाथ में हमने घड़ी बांधी नहीं।

0: क्या बात है सर,
1: बहुत
0: क्या बात,
1: बहुत सुंदर,
0: बहुत
1: बहुत सुंदर,
0: शानदार,
2: क्या बात,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
3: तो चाय में शुगर है तो नहीं, लेकिन चीनी नहीं मिलाता हूँ। कारण क्या है कि तुम्हारे हिजर का लुत्फ यूं उठाता हूँ, तुम्हारे हिजर का लुत्फ यूं उठाता हूँ, तुम्हारी कुर्सी पर आकर मैं बैठ जाता हूँ, और तुम्हारे शीरी लबों ने छुई थी ये प्याली, तुम्हारे शीरी लबों ने छुई थी ये प्याली, मैं तब से चाय में शक्कर नहीं मिला।
1: बढ़िया, बढ़िया,
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
3: और चश्मा लगाने की वजह है, कहा किसने, कहा किसने मैं पढ़ने के लिए चश्मा लगाता हूँ, कहा किसने मैं पढ़ने के लिए चश्मा लगाता हूँ, ये ऐसा राज है जिसको मैं सबसे ही छुपाता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर।
3: मेरी आंखों के कागज पर तेरी तस्वीर शाया है, छपी हुई है, मेरी आंखों के कागज पर तेरी तस्वीर शाया है, उसे महफूज रखने के लिए शीशा चढ़ाता हूँ।
1: बढ़िया,
0: बहुत
1: बहुत
0: बढ़िया सर,
1: बहुत सुंदर।
3: और देखिए कि शब्द वही हैं, भाव वही हैं, एक साधारण व्यक्ति और एक कवि में अंतर क्या है?
1: जी,
3: जो चीज गद्य में आपको साधारण लगती है वो पद्य में थोड़ी सी आपको अलंकृत लगती है।
1: जी, जी,
3: बात वही है।
1: जी जी,
3: देखिए किस तरह से कि तुम इस ओर नहीं तकते, तुम इस ओर नहीं तकते, और हम तकते नहीं थकते। तुम इस ओर नहीं तकते,
1: तुम्हें इस ओर नहीं तकते,
3: और हम तकते नहीं थकते। कितना कितना कितना सोचते हैं तुमको, कितना सोचते हैं तुमको, तुम ये सोच नहीं सकते।
1: बढ़िया,
3: बहुत
0: बहुत खूबसूरत।
3: जहां ना पहुंची रवि वहां पहुंचे कवि, यही कारण है
1: जी
3: कि दास्तां के कहीं जो हिस्से कहें, दास्तां के कहीं जो हिस्से कहें, हैरा होता है वही जिससे कहें। कि दास्तां के कहीं जो हिस्से कहें, हैरा होता है वही जिससे कहें, और सब निकलते हैं तेरे दीवाने। सब सब निकलते हैं तेरे दीवाने, सब निकलते हैं तेरे दीवाने, तेरे किससे कहें तो किससे कहें।
1: बढ़िया,
3: तेरे किससे कहें तो किससे कहें,
2: एक शब्द दो दो बार के, दो
0: खूबसूरत।
3: जिसके होने से मेरी हस्ती थी, जिसके होने से मेरी हस्ती थी,
1: मेरी हस्ती थी,
3: जो मेरे दिल के पास रहती थी, जिसके होने से मेरी हस्ती थी, जो मेरे दिल के पास रहती थी, दुख है वो भी मुझे नहीं समझी, दुख है वो भी मुझे नहीं समझी, मैं समझता था वो समझती थी।
1: अच्छा, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया,
0: वाह वाह वाह।
3: मैं समझता था वो समझती थी। और
1: जी जी,
3: बाकी ये है कि हम तो बचपन के बिगड़े हुए आदमी हैं, हमने तो इश्क को ये ओढ़ा बिछाया, हमने तो हम थे बचपन के बिगड़े, सुधरते भी क्या, हम थे बचपन के बिगड़े, सुधरते भी क्या, बेशरारत कहीं से गुजरते भी क्या। कि हम थे बचपन के बिगड़े, सुधरते भी क्या, बेशरारत कहीं से गुजरते भी क्या, और उम्र भर दुनियादारी ना आई हमें, उम्र भर दुनियादारी ना आई हमें, इश्क भी अगर ना करते तो करते भी।
2: वाह वाह,
0: क्या बात है, क्या बात,
3: बहुत
0: क्या बात,
1: बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
3: देखिए, जो शायरी जानते हैं
1: जी,
3: जो श्रोता हमारे आकाशवाणी के कुछ ऐसे हैं जो जिनको सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन वो शायरी की जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानते नहीं है। उनको बताइए कि शेर जो होता है, शेर में दो पंक्तियां होती हैं, तो जो पहली पंक्ति होती है उसे उला मिश्रा कहते हैं, उला कहते हैं साधारण भाषा में, दूसरा सानी मिश्रा होता है, सानी कह देते हैं। सानी के दो मतलब होते हैं, दूसरा एक तो ये मतलब है
1: जी,
3: और एक हमारा जो मिश्रा दूसरा सानी, इसको भी सानी कहते हैं
1: जी।
3: और सानी का मतलब होता है जिसके जो है जो उपमा है, ठीक है ना, कि वो उसकी उपमा है, तो यानी वो उसका सानी है। लेकिन कुछ लोग अनुपमेय होते हैं, अनुपमा है, तो अनुपमेय भी लोग होते हैं। उसको देखिए,
1: स्वागत है सर,
3: कि हो सकता है कुछ लोगों को ये सुनकर हैरानी हो, हो सकता है कुछ लोगों को ये सुनकर हैरानी हो, या कुछ की नजरों में ऐसा कह देना नादानी हो,
1: बढ़िया,
3: तेरा नाम लिखा उला में, पहले मिसरे में, कि तेरा नाम लिखा उला में तब से शेर अधूरा है, तेरा नाम लिखा उला में तब से शेर अधूरा है, अब तुझ लासानी का कोई सानी हो तो सानी।
1: बढ़िया,
2: वाह
1: बढ़िया,
0: क्या बात है,
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर।
3: अब किसी अनुपमे के उपमा हो तो तभी तो दूसरा सीन।
2: बिल्कुल
3: अब तो जला सानी का कोई सानी हो तो सानी हो।
1: बहुत सुंदर।
3: एक देखे कि जो है वो करते किसी से क्या गिला, करते किसी से क्या गिला, थकान किस से कम, करते किसी से क्या गिला, थकान किस से कम, कब वक्त के थपेड़ों ने ही लेने दिया दम। करते किसी से क्या गिला, थकान किस से कम, कब वक्त के थपेड़ों ने भी लेने दिया दम। और बफरिंग में घूमता रहा खुशियों का फोल्डर। कि बफरिंग में घूमता रहा खुशियों का फोल्डर, करते न गम डिलीट तो हो जाते हैं। बफरिंग में घूमता रहा खुशियों का फोल्डर,
2: बफरिंग
3: करते ना गम डिलीट तो हो जाते हैं गम।
1: सुंदर,
0: बहुत खूबसूरत।
1: अभी हम देश के उम्दा साहित्यकार ये कहें कि महनीय शायर डॉक्टर आदेश त्यागी जी को सुन रहे थे, बेहतरीन शायरी सुनी। अब मैं उस शख्सियत को आपके सामने लाना चाहता हूँ इस संगोष्ठी में, तीसरे कवि के रूप में, जिसने देश और दुनिया में कविता पद के माध्यम से हिंदी भाषा में एक अलग पौध खड़ी की। व्यक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं अगले क्रम में बिना किसी भूमिका के डॉक्टर प्रवीण आर्य जी का आमंत्रित कर रहा हूँ।
0: स्वागत।
1: डॉक्टर प्रवीण आर्य जी आए और अपने उसी अंदाज बयां में अपना कविता पाठ करें। डॉक्टर प्रवीण आर्य जी।
2: सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मेरा आज का दिन आनंददायक बन गया है जब इतनी खास काव्य गोष्ठी में डॉक्टर आदेश त्यागी जी, डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी और संचालक महोदय भी उत्कृष्ट श्रेणी के कवि हैं, उनके बीच में मैं आज काव्य पाठ पुनः कर रहा हूँ। कुछ रुबाइयों के साथ प्रारंभ करता हूँ। लो चलन बद चलन हो गया।
3: बहुत मारक मिश्रा है प्रवीण जी।

0: बढ़िया।
1: लो चलन बद चलन हो गया,
0: बहुत सुंदर जी।
1: प्यार ममता भरा आंगना, प्यार ममता भरा आंगना, आज सद भवन हो गया।
2: क्या उपमा, क्या उपमा, क्या उपमा,
1: चलन हो गया। जितने आपकी पंक्ति मारक क्षमता मैंने देखी आदेश जी,
2: आज के आप स्वयं बहुत मारक कह रहे हैं।
1: आज की जो वर्तमान परिदृश्य है
2: जी,
1: और आज की जो जीवन शैली है,

0: बहुत सुंदर है,
1: लो
0: बहुत सुंदर,
1: चलन बद चलन हो गया,
0: बहुत सुंदर,
2: बहुत
0: बहुत
2: सुंदर।
0: सुंदर।
1: आँख से पूछ आँसू रहे क्यों वतन बेवतन
0: बहुत सुंदर, बहुत
1: हो
0: सुंदर, बहुत सुंदर,
3: क्या बात, क्या बात,
0: बहुत
1: गया,
0: सुंदर,
1: क्यों
2: वतन
1: वतन
2: लाजवाब हो गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
1: बेवतन
0: शानदार जी,
1: हो
0: शानदार आर्य जी,
1: गया।
0: बहुत सुंदर।
1: मैं भी वंदे मातरम को मूल गीत की भावना के साथ कुछ नया लिखने का प्रयास करूं।
0: जी जी
1: बिल्कुल,
0: स्वागत,
1: गीत नया है,
2: मातृभूमि की वंदना जैसी भी करें,
1: हाँ, तो नई कोशिश है, कुछ गुण दोष हो सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है प्रवीण जी, स्वागत है आपका,
1: धन्यवाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जननी जन्म भूमि का वंदन, आओ

0: सुर नर मुनि तरसा करते पाने को जहां जन्म। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शीश हिमालय मुकुट सुशोभित सागर पांव पखार रहा। शीश हिमालय मुकुट सुशोभित सागर पांव पखार रहा। चीर अटक से कटक तलक धरती का रूप सवार रहा। भारत माता जग विख्याता भारत माता जग विख्याता अद्वितीय अनुपम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
1: शानदार शानदार।
0: वंदे

0: आते, हर दिन नव उत्सव ले आते, छा छा छे
1: क्या बढ़िया
0: मौसम। वंदे
1: बढ़िया
0: मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
1: बढ़िया, बहुत
0: वंदे
1: सुंदर,
0: मातरम, वंदे
1: शानदार शानदार।
0: मातरम, वंदे मातरम। चार वेद छह शास्त्र उपनिषद मानव का निर्माण करे, चार वेद छह शास्त्र उपनिषद मानव का निर्माण करे,
1: शानदार शानदार,
0: रामायण गीता गायत्री जन जन का
1: जन
0: कल्याण
1: करे, बढ़िया
0: करे,
1: बढ़िया बढ़िया।
0: सबसे सम आदर पाते हैं, सबसे सम आदर पाते हैं सारे पथ
1: क्या
0: धर्म।
1: बात है,
0: वंदे मातरम,
1: वंदे
0: वंदे मातरम, वंदे मातरम,
1: बहुत सुंदर,
0: वंदे
1: बहुत सुंदर,
0: मातरम,
1: बहुत
0: वंदे
1: सुंदर,
0: मातरम, वंदे मातरम।
1: बहुत सुंदर।
0: द्वेष घृणा से दूर परस्पर प्यार भरा व्यवहार करे, श्रद्धावानी धर्म हमारे माँ की जय जयकार
1: क्या
0: करे,
1: बात है,
0: इसके हित ही जीने मरने की ले आज कसम। वंदे
1: बहुत सुंदर, बहुत
0: मातरम,
1: सुंदर,
0: वंदे
1: वंदे मातरम,
0: मातरम, वंदे
1: वंदे
0: मातरम,
1: मातरम,
0: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का
1: बहुत सुंदर,
0: धन्यवाद।
2: बहुत
1: बहुत
2: सुंदर
1: सुंदर,
2: सर,
1: बहुत
2: बहुत
1: सुंदर,
2: बहुत
1: बहुत
2: सुंदर,
1: सुंदर।
2: पंडित जी, जो अब तक हमको पढ़ाते रहे, इस संगोष्ठी का संचालन करते रहे, आदरणीय डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी, अब उनका समय है कि वो हम सबको वह बताएं, वह सुनाएं जो उन्होंने देखकर समझकर
1: हाँ
2: अनुभव से हम अपनी कविताओं में उकेरा है। चार मिसरों से इन्हें बुलाता हूं कि हाथों में मेरे बाल कर जो रख दिया दिया, कि हाथों में मेरे बाल कर जो रख दिया दिया, मन तब से मंत्र मंत्र है, तन है दिया दिया, और जो मांगता तो मांगता भी क्या मैं उससे तब, जो मांगता तो मांगता भी क्या मैं उससे तब, कुछ बोलने से पहले जिसने कह दिया दिया,
0: आहा,
3: क्या
0: दिया।
3: बात है, क्या बात है, क्या बात
2: है। आदरणीय चंद्रमणि जी,
3: क्या बात है,
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद,
3: स्वागत है सर।
1: साथियों, जिस मंच पर देश के तीन महत्वपूर्ण हस्ताक्षर पढ़ लिए हूँ, आदरणीय डॉक्टर आगेश त्यागी जी,
2: जी आप भी मान्य
1: आदरणीय डॉक्टर प्रेम आर्य जी और आदरणीय ज्योति उपाध्याय जी, मैं चाहता हूँ कि बहुत सुंदर पढ़ा तो मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ
2: जी।
1: मैं अपनी एतुकांत कविता की कुछ लाइन पढ़ता हूँ।
2: स्वागत कविता लिखते हैं, स्वागत हैं आप भावों के।
1: अब मेरा मन संपूर्ण विराम ले लेना चाहता है, अब मेरा मन संपूर्ण विराम ले लेना चाहता है, अंदर से इच्छाएं बहुत कुछ कहती सी प्रतीत हो रही हैं, पता नहीं क्यों। अब अंदर से जीवन पथ पर आगे बढ़ने बढ़ाने की प्रक्रिया का समय सावधान कर रहा है।
2: क्या बात,
1: मुझे लग रहा है मेरे मन के अंदर कोई बैठा है जो मेरे मन को निरंतर निर्देशित कर रहा है कि दुनियादारी की दौड़ से अब विराम ले लिया जाए, खासकर संग्रह और संचय जैसी चीजों से।
2: क्या बात, क्या बात, क्या बात।
1: अब संग्रह और संचय जैसी चीजों से अब मुझे मन में लगता है कि जो कुछ हम सभी के पास है वह बहुत है। ज्यादा संचय, ज्यादा संग्रह भला अब तुम्हारे किसका।

0: नाम का।
1: वाह।
0: जो उसको सकारात्मक प्रयोग भोग करेंगे वे भी तो भविष्य में अपने माफिक कुछ ना कुछ तो अवश्य करेंगे।
2: क्या बात है सर,
1: क्या बात।
0: आखिर हम सभी सीमित समय के मेहमान होने के बावजूद भी इतने सारे संग्रह के पीछे पड़े हैं, जबकि हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति अब जवाब देने लगी है। वह बार बार हमें संकेत कर रही है। कई बार जब मैं एकांत में चिंतन में बैठता हूँ तो मेरे मन के कोने में महसूस होता है कि जितना जीवन का हिस्सा जिया हमने, अब उसका बहुत कम हिस्सा ही तो जीने के लिए हमारे पास शेष बचा है।
1: बहुत अच्छा, बहुत
2: सत्य। क्या बात है।
0: अब यह सने सने आभास होने लगा है, फिर भी हम सभी देख रहे हैं चारों तरफ वातावरण की आपाधापी थोड़ा और और थोड़ा।
1: बहुत अच्छे चंद बन जी, बहुत अच्छे।
0: धन्यवाद सर।
1: आग्रह है कि कम से कम एक ऐसी कविता और पढ़ें।
0: धन्यवाद सर। एक और छोटी सी एतुकांत कविता है कि कभी सोचा तुमने कितने अवशेष बचे हैं हमारे जीवन में। कभी सोचा तुमने कितने अवशेष बचे हैं हमारे जीवन में, हम कितने अवशेषों को सहज कर रख पाए हैं अपने पूर्वजों के।
1: क्या बात।
0: हम कितने अवशेषों को सहज कर रख पाए हैं अपने पूर्वजों के, हम बस पीढ़ी दर पीढ़ी हुंकार भरते हैं अपने आप में ही बिना किसी खोज के।
1: क्या बात है।
0: हम बहुत कुछ खोजते हैं दूसरों के इतिहास में हमेशा हमेशा से। पता नहीं क्यों हम अपने आप को घोषित कर देते हैं बहुत ज्यादा व्यवहारिक, बहुत ज्यादा आदर्शवादी, बहुत ज्यादा बहुत कुछ कुछ।
1: सही बात।
0: लेकिन यहाँ पर सवाल यह पैदा होता है कि जो दूसरों के इतिहास को बारीकी से खोजते हैं, उनके इतिहास में बिंदुवार जाना चाहते हैं तह तक जाकर, कभी वे स्वयं अपने इतिहास के बारे में भी आत्मसात करें, अवलोकन करें। खोजें अपना भी उसी तरह स्वयं का इतिहास, करें तुलनात्मक अध्ययन अपने इतिहास से सामने वाले का। हम सभी आदतन कभी ना कभी दूसरों के इतिहास को बिंदुवार खोजने में अभ्यस्त हो जाते हैं। शायद हमें लगता है कि दूसरों का इतिहास खोजना बहुत आसान है, जैसे दूसरों के बारे में बोलना बयां करना
1: बहुत आसान।
2: सही बात।
0: लेकिन जब अपने इतिहास को पढ़ते समय स्वयं के बारे में परत दर परत खुलती हैं नकारात्मक रूप में, तो हम अपने आप में मौन साध लेते हैं। फिर हम अपने स्वयं के इतिहास का अवलोकन आत्मसात नहीं करते। हम खुद स्वयं के इतिहास की चर्चा करते हुए मौन मुख हो जाते हैं। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत
2: सुंदर सर।
0: साथियों, आज की संगोष्ठी में हमारे साथ, मैं पुनः कहूंगा कि देश के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मौजूद थे। साथियों, आपको ये गोष्ठी पसंद आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।
1: बहुत आभार।
3: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर आदेश त्यागी, डॉक्टर प्रवीण आर्य, डॉक्टर ज्योति उपाध्याय और डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तेजाब से, आवाज है नितिन मुकेश और अलका याग्निक की।

0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने

0: और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मूज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मूज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मूज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट।

0: साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
3: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हान्यू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन ही बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय शहरियों को ले जाते हुए कमर्शियल जहाज पर हमला किए जाने के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। अमरीका ने कहा है कि अब नाए हुरमुज सभी जहाजों के लिए खुली है और अमरीकी फौज जहाजों की आजादाना आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। वियतनाम कश्ती सानहे में, जिनमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई थी, उनके जस्ते खाकी को हो ची मिन सिटी लाया गया है। अब उन्हें जल्द अज जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलीट्स चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत कुल 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के येनिक सिनर और दूसरे दर्जे के एलेक्जेंडर ज़वेरोव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत ने आज ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद

मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भी इंदौर में शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके तहत पूरी रियासत में 21 लाख पौधे लगाए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज जोर देकर कहा कि हर शहरी का फर्ज है कि वो मुल्क के समाजी मुस्लहीन के अजीम विरसे का एहतराम करें और उसे बरकरार रखें। जनाब राधाकृष्णन आज नई दिल्ली के द्वारिका के मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाजी मुस्ले और मुजाहिद आजादी मन्नथू पद्मनाभन के मुजस्मे की नकाब कुशाई और मन्नम स्मृति मंडपम का आगाज करने के बाद बात कर रहे थे। मजमे से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि मन्नथू पद्मनाभन ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी इंसाफ, तालीम और अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1800117800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप पर भी भेज सकते हैं। लोग इसके लिए 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और वज़ीर आज़म को बराह रास्त अपनी तजावीज SMS पर मौसूला लिंक के जरिए रابطہ कायम कर सकते हैं। आइंदा नशरिये के लिए तजावीज इस माह की 24 तारीख तक कबूल की जाएंगी। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से इस माह की 17 तारीख तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड में भारतीय ताजिरों के एक आला सतह के वफद की क्यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद यूरोप के साथ भारत की इक्तिसादी शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा और पायदारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने तामीर के शोबे में माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए, जिसका अहतमाम नई दिल्ली में तामीरात के महकमे के 172वें योम तासीस के मौके पर किया गया था, वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि कोई भी इमारत या ढांचा तामीर करते हुए उसकी पायदारी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अल सानी के इंतकाल पर कल एक रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी का आज इंतकाल हो गया। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम निस्फ सरनिगुं रहेगा। इसके अलावा उस दिन कोई सरकारी तकरीब मुनक़िद नहीं होगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी साथी थे। उनकी उम्र 71 साल रही। सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान ग्राहम अमरीका की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक एक अहम आवाज के तौर पर उभरे थे। अमरीका, बरतानिया और एक दर्जन दीगर मगरबी और एशियाई ममालिक ने आज दो बार जोर देकर कहा है कि बहिरे चीन में चीन के वसी दावे 2016 के सालिसी के फैसले की बुनियाद पर गैर कानूनी हैं। 14 ममालिक की तरफ से जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वो मुतनाज़ा आबी हदूद में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इकदाम को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इससे इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। दूसरी जानिब 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन ने एक अलहदा बयान जारी करते हुए इस फैसले को तनाज़ियात के पुरअमन हल के लिए एक तारीखी फैसला करार दिया है। ये बयान 12 जुलाई 2016 को दहेग में कायम करदा ट्रिब्यूनल के सालिसी के फैसले के जिम्न में आए हैं, जिसमें कहा गया था कि यह तारीखी फैसला फरीकैन को हतमी और कानूनी तौर पर पाबंद बनाता है। ताहम चीन ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसकी कोई हैसियत नहीं है और इसकी पाबंदी लाजिम नहीं है। चीन ने इस बात का इरादा किया कि बीजिंग इसे तस्लीम नहीं करता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में पिछले हफ्ते सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने की वजह से 40 अफराद हलाक हो गए। बहुत सी जानें जमीनी तोदे खिसकने की वजह से जाया हुई हैं और बखिया ज्यादातर अमवात पानी में डूबने या सैलाब में बह जाने और दरियाओं की तुगयानी के सबब हुई हैं। अफगानिस्तान के ज़राअत, पाशी और मवेशियों के उमूर के वजीर अताउल्ला उमरी ने आज भारत का अपना 6 रोजा दौरा मुकम्मल किया। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान वजीर के साथ एक आला सतही वफद भी था। गुज़श्ता साल अक्टूबर के बाद से अफगानिस्तान की तरफ से वजारती सतह का भारत का यह चौथा दौरा था, जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी की अक्कासी करता है। इस दौरे में अफगानिस्तान के वजीर ने भारत के ज़राअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। दोनों फरीकों ने बाहमी ताल्लुकात ने ज़राअत, आबपाशी, ज़रई तहकीक, सलाहियत साजी, ज़रई तजारत में तआवुन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक फर्जी तस्वीर से इनकार किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि एथेनॉल की आमजिश वाले पेट्रोल से गाड़ियों के ईंधन

टंकी में खराबियां आ सकती हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हकायक मालूम करने वाले यूनिट ने इस दावे को झूठा करार दिया है। ब्यूरो ने कहा है कि पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने वजाहत की है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से सप्लाई किया गया E20 पेट्रोल भारतीय मेयारात के ब्यूरो की तरफ से मुकर्रर किए गए पैमाने के मुताबिक है। वजारत ने कहा कि एथनॉल और पेट्रोल मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में जम हो जाते हैं और ये अलग नहीं होते और न ही किसी तरह की अलग अलग परतें बनाते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मारूफ गुलूकारा इस जानकी के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क मौसीकी की दुनिया की एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गया है। चीन के ऑर्डोस में एशियन अंडर 23 एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत ने 16 तमगों के साथ अपनी मुहिम खत्म की। इसमें सोने के 3, चांदी के 4 और कांसे के 9 तमगे शामिल हैं। चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारत ने सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा जीता। विंबलडन टेनिस में मर्दों के फाइनल मुकाबले में लंदन में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरोव के दरमियान मुकाबला जारी है। सिनर ने नोवाक जोकोविच से सीधे सेटों में जीत हासिल करके फाइनल में जगह बनाई है, जबकि ज़वरोव ने ब्रितानिया के आर्थर फेरी को शिकस्त देकर पहली दफा फाइनल में पहुंचे हैं। दूसरी जानिब 10वें दर्जे की जोड़ी चीन की गुओ हानिउ और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडवेज ने खवातीन डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में दूसरे दर्जे की जोड़ी कनाडा की गैब्रिएला रोयांस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से शिकस्त देकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। इंग्लैंड में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जारी खवातीन क्रिकेट के एक तारीखी टेस्ट मैच के तीसरे दिन अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने 7 विकेट पर 341 रन बनाकर अपनी दूसरी इनिंग डिक्लेयर की और मेजबान इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का निशाना रखा। कल इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 170 रन पर आउट हो गई थी। भारत ने अपनी पहली इनिंग में 285 रन बनाए थे। फीफा आलमी कप के सेमीफाइनल की टीमें तय हो चुकी हैं। अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज सुबह खेले गए क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से जबकि अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। आखिर में खास-खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय शहरियों को ले जाते हुए कमर्शियल जहाज पर हमला किए जाने के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। अमरीका ने कहा है कि आबनाए हुरमुज सभी जहाजों के लिए खुली है और अमरीकी फौज जहाजों की आजादाना आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। वियतनाम कश्ती सानहे में जिन 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई थी उनके जस्द खाकी को हो ची मिन सिटी लाया गया है। अब इन्हें जल्द अज जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलीट्स चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत कुल 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के यानिक सिनर और दूसरे दर्जे के अलेक्जेंडर ज़वरोव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

राज सिंह चौहान वजीर कशावर्जी व रफाह कशावर्जान हिंदी दार करद दो तरफ हम कौड़ी है जारी रबरदस्सी कर दंद व दरबारी गुश्तरिश हम कौड़ी दर जमीन आय कशावर्जी आबियारी दामदारी तहकीकत कशावर्जी आमोजिश अफजाइश तवानमंदी हा व तजारत महसूल कशावर्जी गुफ्तगु कर दंद अमनियत गजाई निज़ाम तौलीद व तवज़ी बज़र व अफजाइश बहरावरी महसूल कशावर्जी अज मुहिम तरीन मौजूद इन मुज़ाकरात बूद वजारत उमूर ख़ारिजा हिंद एलान करके दस्तूर अमल साल 2017 मिलादी दरबार ये महदूदियत सफर शहरवंदान हिंदी बे यमन रो लगव कर दिया इन दस्तूर अमल पस अज आगाज जंग दाखिली व वखामत अवज़ाए अमनियती दर यमन सादिर शुदे बूद बा इन हाल वजारत उमूर ख़ारिजा हिंद हमचनन बे शहरवंदान खुद तौसिये करते अस्त के सफर हाई गैर ज़रूरी बे यमन खुददारी कुनंद इन वजारत खान ताकीद करत के अगर सफर बे यमन इस तनाब नापजीर बाशद बाजत पस अज बरदसी दकीक़ वज़ियत अमनियती अंजाम शवद वाद सफर बे मनातिक दरगीर जंग खुददारी शवद वजीर बाजरगाड़ी और सनअत हिंद पीयूष गोयल आज फरदाता हफ्तों में इन माह दर रास एक हयात बुलंद पाए तजारी बे स्पानिया बिल्जिक और फिनलैंड सफर खाद करद वजारत बाजरगाड़ी और सनअत हिंद एलान करद के हदफ इन सफर तकवियत हम कौड़ी है इकतसादी हिंद बारूपा बा तमरकुज बर तजारत सरमाए गुजारी फन्नावरी नवावरी और तवसे पायदारस्त पैकड़ोहा पाँच दस शहरबंद हिंदी के दर हादसे वाजगूनी या कायक दर नज़दीक के जजीर फकोक दर वियतनाम जाने खुद राज दस्त दादंद बेशहर होशीमीन मुंतकिल शुदे अस्त सफारत हिंद दर वियतनाम इमरूज दर शब खोज इज्तमाही एलान करत के पस अज अंजाम तशरीफात लाजिम पैकरहा दर नखुस्तिन फुरसत बे हिंद मुंतकिल खान शौद सफारत हिंद हम चनिन पीशतर एलान कर दबूत के पाँच द नफर अज बाज मानदगान इन हादसे पस अज दरियाफ्त खदमत दरमानी अज बीमारिस्तान मुरखस शुदेंद व दर हाल बाज गश्त बे हिंद हस्तंद अमीर पीशी ने कतर शेख हमद बिन खलीफे अल सारी दर सिन हफ्ता दो चार साल की दर गुजश्त उबा तगीरत गुस्तर दे कतर रा बे यकीयत बाजीगरान मुहिम में जहां दर जमीन ये डिप्लोमासी रसाने व सरमाया गुजारी तब्दील कर शेख हमद हिजद साल बर कतर हुकूमत कर व दर साल 2013 मिलादी बतौर दाव तलबा ने कुदरत रब पसरसवा गुजार कर के इकदामी कम साबिक़ दार मंतक़े बूद در دوران رهبری او قطر به یکی از قدرت‌های بزرگ انرژی جهان تبدیل شد شبکه خبری الجزیره راه اندازی شد سرمایه گذاری های بین المللی این کشور گسترش یافت و قطر با موفقیت میزبان جام جهانی فوتبال 2022 شد بیان بخش بر

عيد تابع حال مشاهدنا مودياست.

وجعلنا من الماء كل شيء حي.

Un. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت

وكفى بنا حاسبين.

0: ये वाला रेफ्रिजरेटर देखिए मैडम,
1: ये इसका अंडों का रैक, और इस शेल्फ को जरा सरका दें तो लंबी बोतल भी फिट हो जाएगी मैडम, सॉरी, और ये इसका रोल बॉन्ड फ्रीजर, बस आधे टाइम में बर्फ तैयार, सॉरी, और हाँ ये इसका जबरदस्त कंप्रेसर, फटाफट ठंडा करे और बिजली भी बचाए, और इसका स्पेशल फोम वाला दरवाजा, ठंड बाहर आ ही नहीं सकती मैडम, बस आप इसे खरीद ही लो।
2: Kelvinator, the coolest one.
3: जी मैं एक सिटी विशेषज्ञ हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि इंसान के पास हर मौके के लिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि हुर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुस जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हवाई हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। देशभर में पौधे लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने कल एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर GDP में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने चीन के ओरडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. It added that the embassy and the consulate general are closely monitoring with the Vietnamese authorities and assured all the possible assistance to facilitate the early transportation of the mortal remains to India. Uttar Pradesh created a new benchmark in environment conservation by planting 35 crore 27 lakh saplings in a single day under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign yesterday. This is 27,89,000 more than the government's target of 35 crore. Chief Minister Yogi Adityanath launched the statewide Vrikshadopan Mahayagya Drive from Gorakhpur by planting the sacred Triveni saplings. Home Minister Amit Shah also launched a massive tree plantation drive in Gandhinagar, Gujarat, which saw the planting of over 1.25 crore saplings across his Lok Sabha constituency. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Union Minister Shivraj Singh Chauhan emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future.
4: As temperatures continue to rise, the climate crisis will only deepen. Estimates suggest that if the current trend continues, climate change could reduce global GDP by as much as 20% by the end of this century. The resulting economic crisis could be so severe that recovering from it would become extremely difficult. Therefore, if greenhouse gas emissions continue at their current pace by the year 2050, the Earth will face serious environmental, economic and social challenges.
3: Former Qatar Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who transformed the Gulf nation into a major global player in diplomacy, media and investment, has died at the age of 74. India has declared one-day national mourning today as a mark of respect for Father Emir of Qatar. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Emir of Qatar. The External Affairs Ministry has said that Parliamentary Affairs and Minority Affairs Minister Kiran Rijiju is visiting Qatar to convey condolences on behalf of the Government of India to the State of Qatar. Five Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad IPHO 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from the 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. Afghanistan's Minister of Agriculture, Irrigation and Livestock, Maulvi Atallah Umari, concluded his six-day visit to India. During the visit, the Afghan minister met with Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan. India reiterated its commitment to supporting Afghanistan's agricultural sector through cooperation in climate-resilient and biofortified crop varieties, sustainable irrigation practices, water harvesting, watershed development and other areas of mutual interest. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at Lord's before India's bowlers tightened their grip on the historic one-off women's test against England. Resuming the penultimate day with an overall lead of 269, India declared their second innings at 341 for 7. In reply, England slumped 230 for 6 at stumps with Amy Jones unbeaten on 52, leaving India just 4 wickets away from a memorable victory. And that is the end of this news bulletin.
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों समय हुआ है 1:10 और 10 सेकंड। साथियों इस समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का जिसका नाम है गीत सुनहरे। जी हाँ, गोल्डन एरा। बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गीतों का कार्यक्रम होता है यहां पर। 1935-31 से लेकर अब तक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीतों का जो एक समावेश बनता है बहुत ही खूबसूरत होता है। हालांकि गोल्डन एरा जो माना जाता है 1965 या फिर 60 तक ही माना जाता है, उसके बाद की जो रचनाएं होती हैं वो एरा कुछ अलग होता है, जैसे कि गीत बहार काइंड ऑफ सॉन्ग्स। तो वाकई दोस्तों बहुत ही प्यारा और खूबसूरत कार्यक्रम होने वाला है गीत सुनहरे, यानी कि बिल्कुल खरा सच्चा सोने के तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि जितने भी पुराने गीत जो होते हैं जो हम सुनते हैं आप सुनते हैं वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचनाएं होती हैं। गीत ऐसे होते हैं जो अपने आप पर महसूस किया जाता जा सकता है, जैसे चाहे वो माँ का गाना हो, चाहे वो पिता का हो, चाहे वो किसी और का हो, चाहे वो देश के लिए हो, बहन के लिए हो, हर प्रकार के गीत प्रसारित किए जाते हैं आपके अपने आकाशवाणी में। तो साथियों आज वाकई बहुत ही अच्छा लगता है हमें जब इस गोल्डन एरा के गीत हम जब प्ले करते हैं तो वाकई हमारा दिल भी खुश हो जाता है। ऐसे ऐसे गीत सुनने को मिलते हैं जो हम भी नहीं सुन पाते हैं, लेकिन हाँ आकाशवाणी है ना हमारे पास और आपके साथ। तो आज मैं हूं आपके साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम में आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, KL सहगल की आवाज में सुंदर बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, दीवाना हूँ। जी हाँ, दीवाना हूँ टाइटल है इस गीत का, और फिल्म जिंदगी से बेहतरीन रचना KL सहगल की आवाज़ में बेहतरीन रचना है। और ये फिल्म जिंदगी 1940 प्रदर्शित फिल्म रही है, और संगीत से सजाया है पंकज मल्लिक ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, और ये गीत आ रहा है आपके पास, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर गीत है, और फिल्म हमराज से, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, माफ कीजिएगा, लगन पिक्चर है, लगन और हमराज, हमराज माफ कीजिएगा, ये हाँ, हमारी लाज, हमारी लाज टाइटल है इस गीत का, लेकिन फिल्म का नाम है लगान और लगन। और संगीत कानन, आवाज कानन देवी की है, और लगन फिल्म 1941 प्रदर्शित फिल्म रही है, और संगीतकार हैं RC बोराल। तो आइए सुनते हैं एक अनोखी और बेहतरीन खूबसूरत रचना।

देखो ये बातें छोड़ो, मेरा तुम्हारा नाता इतना ही है कि तुम गुरु हो, मैं चेरी हूँ।

बहुत ही मधुर बेहद खूबसूरत गीत हमरे इलाज बचाओ। साथियों एक और गीत आ रहा है, बहुत ही सुंदर है ये गीत भी, वो चले झटक के, बहुत ही खूबसूरत रचना है फिल्म हमराही से। हमराही फिल्म 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है, मोहम्मद रफी साहब की बेहतरीन आवाज में शानदार गीत, संगीत शंकर जयकिशन का है। तो आइए सुनते हैं ये एक और खूबसूरत बेहतरीन गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही मीठा, बहुत ही खूबसूरत, रोमांटिक, लाजवाब खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। वाकई बहुत ही शानदार। एक और गीत आ रहा है साथियों, वो दिन याद करो फिल्म

रही से ही है जो 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है। मोहम्मद रफी साहब एक बार फिर से आ रहे हैं आपके पास, आपके साथ सुंदर खूबसूरत जज्बातों के साथ, शंकर जयकिशन का संगीत के साथ। तो सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, इस कार्यक्रम को आप इंद्रप्रस्थ चैनल में भी सुन सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत के साथ। आज मची है धूम फिल्म दर्द से। जी हाँ, फिल्म दर्द 1947 प्रदर्शित फिल्म रही है। उमा देवी की आवाज में सुंदर बेहतरीन रचना है। गीत शकील बदायूनी के हैं और संगीत नौशाद साहब का। तो आइए सुनते हैं बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत, अनसुना लाजवाब बेहतरीन रचना। साथियों बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर, और ये गीत वाकई बहुत ही प्यारा गीत है। सन 1949 प्रदर्शित फिल्म है महल। जी हाँ, लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में शानदार रचना। आएगा आएगा आएगा आने वाला, बहुत ही सुंदर लाजवाब गीत। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत रचना।

वाकई वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत आएगा आने वाला, बहुत ही प्यारा मधुर खूबसूरत रचना लता मंगेशकर की आवाज में, बेहतरीन गीत। साथियों एक बहुत ही प्यारा गीत आ रहा है, रात का समा है और रात भी भीगी भीगी सी है। जी हाँ, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा है तो कहीं रिमझिम फुहार है। वाकई बहुत ही प्यारी खूबसूरत फिल्म है, फिल्म चोरी चोरी। जी हाँ दोस्तों, इसी फिल्म से एक बहुत ही खूबसूरत गीत आ रहा है, ये रात भीगी भीगी, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में शानदार रचना। फिल्म चोरी चोरी 1956 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत शैलेंद्र के हैं, संगीत शंकर जयकिशन का है। आइए सुनते हैं ये एक और खूबसूरत लाजवाब अनमोल रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी से, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में शानदार रचना। साथियों, एक ऐसा गीत आ रहा है, रात का समय है और ऐसे में क्या किया जाए। कुछ साथी परिवार के सो रहे होंगे तो कुछ जागे हुए होंगे। जी हाँ, हमारे साथी बहुत ही प्यारे साथी हैं और रात भर भी जागकर अपना गीत संगीत का आनंद लेने में माहिर हैं। अच्छा लगता है जब सभी साथी, यूं तो रात के अंधेरे में इंसान सो ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे खास साथी होते हैं जो हमेशा गीत संगीत का इंतजार करते हैं और उन्हें सुनने की कोशिश भी करते हैं। साथियों, ऐसी एक सखी हैं, एक साथी हैं हमारी, बहुत ही प्यारी सखी हैं और आज एक ऐसा गीत सुनवा रहे हैं जो वाकई बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है, लाजवाब है। रात का समय है और ऐसे में ये सुंदर खूबसूरत रचना वाकई मन मोह लेती है। आइए सुनवाते हैं हमारी सखी का, यानी कि हमारे साथी का सुंदर खूबसूरत लाजवाब बेहतरीन अनमोल रचना। साथियों, ये रचना बता देते हैं कि आखिरकार ये किस फिल्म का गीत है। जी हां, गीत फिल्म का तो नाम इसमें हमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन गीत वाकई बहुत ही सुंदर है और बेहद खूबसूरत है। आइए सुनते हैं हमारे साथी की पसंद का बहुत ही प्यारा लाजवाब गीत।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर, मधुर और बेहद खूबसूरत गीत। साथियों, ये बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही शानदार लाजवाब गीत, ये मेरी भी पसंद है। इस गीत को वाकई बहुत ही प्यारा गीत है। महान गायिका लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी थी इस खूबसूरत गीत को। जी हाँ, बहुत ही प्यारे। और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, यानी कि उन दोनों जोड़ी ने। इसके बोल वाकई बहुत ही खूबसूरत लगे, बहुत ही शानदार। एक तरफ तो प्यार, मोहब्बत, अपनापन और उनकी याद। जी हाँ, नींद में, नींद तो रहती थी लेकिन अब सावरियां रह रहे हैं। इतने सुंदर शब्दों का उपयोग जो हुआ है वाकई बहुत ही कमाल। ऐसे गीत बहुत ही कम सुनाई देते हैं। आपको ये गीत कैसा लगा तो हमें जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर और अंतिम पड़ाव पर। ये फिल्म 1966 में प्रदर्शित हुई थी। ये जो फिल्म है आसरा, जी हाँ आसरा फिल्म। इसी फिल्म के अभी जो आपने गीत सुना था बहुत ही प्यारा था। और समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अभी 2 बजने में लगभग 7 मिनट बाकी हैं और हम देख रहे हैं कि आखिरकार कौन सा गीत अब सुनवाया जाए अंतिम पड़ाव में। तो फिलहाल हम सुनवा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। जी हाँ, रात का सन्नाटा और ऐसे में यह गीत वाकई बहुत ही सुंदर। सुनवाते हैं ये शानदार गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत, बहुत ही शानदार। साथियों, समय 2 बजने को हैं। अब छोटा सा एक गीत और हम सुनवा रहे हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत है, और उसके बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। फिलहाल हम सुनवा रहे हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे के अंतर्गत एक शानदार खूबसूरत रचना। गीत सुनहरे कार्यक्रम बस अंतिम पड़ाव पर है, छोड़े जा रहे हैं इस गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: संपन्न हुआ। 2 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों के बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नई सब्जी उप यार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से करेगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सेनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिनर 100 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले एकमात्र इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस के क्रिस्टिना मिलाडेनोविक की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Abhineet Shukla. New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. It added that the embassy and the consulate general are closely coordinating with the Vietnamese authorities and assured all possible assistance to facilitate the early transportation to the mortal remains of the mortal remains to India. Uttar Pradesh created a new benchmark in environment conservation by planting 35 crore 27 lakh saplings in a single day under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign yesterday. This is 27,89,000 more than the government's target of 35 crore. Chief Minister Yogi Adityanath launched the statewide Vriksha Ropan Mahayagya Drive from Gorakhpur by planting the sacred Triveni saplings. Home Minister Amit Shah also launched a massive tree plantation drive in Gandhinagar, Gujarat, which saw the planting of over 1.25 crore saplings across his Lok Sabha constituency. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Union Minister Shivraj Singh Chauhan emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future.
4: As temperatures continue to rise, the climate crisis will only deepen. Estimates suggest that if the current trend continues, climate change could reduce global GDP by as much as 20% by the end of this century. The resulting economic crisis could be so severe that recovering from it would become extremely difficult. Therefore, if greenhouse gas emissions continue at their current pace by the year 2050, the Earth will face serious environmental, economic and social challenges.
3: Former Qatar Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who transformed the Gulf nation into a major global player in diplomacy, media and investment, has died at the age of 74. India has declared one-day national mourning today as a mark of respect for Father Emir of Qatar. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Emir of Qatar. External Affairs Ministry said that Parliamentary Affairs and Minority Affairs Minister Kiran Rijiju is visiting Qatar to convey condolences on behalf of the Government of India to the state of Qatar. In Thailand, a huge fire that engulfed a pub in Bangkok killed 27 people. Rescuers said the fire was reported around midnight. Footage shared online by first responders show huge blaze raging out of the front door of the pub in the northern part of the Thai capital as people tried to flee with thick black smoke pluming into the sky. Thailand Prime Minister Anutin Charnwirakul told reporters at the scene that 27 people died and several have been taken to the hospital. He said the cause of the fire is still under investigation. Five Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Booker Manga in Colombia from the 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. In tennis, top-seeded Italy's Yannick Sinner claimed the Wimbledon men's singles title by defeating second-seed Germany's Alexander Zverev tonight. Sinner also earned his 100th Grand Slam match win, and he is the only Italian man who has reached the milestone. India concluded its campaign at the Asian Under-20

0: The three athletics championship in Ordos, China, with 16 medals, including 3 gold, 4 silver, and 9 bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है. साथियों, ये समय होता है कार्यक्रम गीत बहार का. बहुत ही सुंदर, लाजवाब, खूबसूरत कार्यक्रम होता है. इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार. तो साथियों, सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम की बहुत ही सुंदर लाजवाब रचना. पहले गीत से शुभारंभ कर रहे हैं. और साथियों, ये गीत जो कार्यक्रम होता है, गीत बहार कार्यक्रम के अंतर्गत अब आप सुनेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत रचनाएं. और ये गीत होंगे टोटली नॉन स्टॉप. जी हाँ, नॉन स्टॉप खूबसूरत गीत होने वाले हैं, बिना रुके, बिना थके. वाकई बहुत ही सुंदर, पिछले लगभग 50 मिनट तक आप सुनेंगे बहुत ही सुंदर, लाजवाब, अनमोल, खूबसूरत रचनाएं, कुछ नई तो कुछ पुरानी. तो बस हो जाए तैयार आज के सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम में. जी हां, कार्यक्रम गीत बहार में. तो आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार. तो सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम की बहुत ही खूबसूरत रचना.

वाकई दोस्तों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत ये रात खुश नसीब है। वाकई बहुत ही अनमोल बेहतरीन रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के

0: में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि हुर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री ने कल अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर विम्बल्डन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिनर 100 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले एकमात्र इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. condemn.

0: श्रोताओं, ये गजल अभी आपने पंकज उदास साहब की आवाज में सुनी। आइए सुनते हैं अगली गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमुई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं।

श्रोताओं, ये गजल अभी आपने सुनी भूपेन हजारिका साहब की आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल भूपेन हजारिका साहब की ही आवाज में।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद गजलों और गीतों का कार्यक्रम, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, गजलों का जिक्र हो और जगजीत सिंह साहब का नाम सामने ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आइए सुनते हैं अगली गजल जगजीत सिंह साहब की आवाज में।

श्रोताओं कहते हैं कि गजल गायकी में कुछ गायिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी ही एक गायिका हैं मशहूर गजल गायिका चित्रा सिंह। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में ये मधुर सी गजल।

श्रोताओं, ये मधुर सी गजल अभी आपने सुनी चित्रा सिंह की आवाज में। उम्मीद है ये गजल आपको बहुत पसंद आई होगी। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये अगली गजल।

श्रोताओं, इसी के साथ घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि गजलों और गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल हरिहरन की आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। आइए सुनते हैं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सुबह के 4:20 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। सुबह के 4:53 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में आप सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। सुबह 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। 5:30 पर आप सुन सकते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। और उसके बाद सुबह ठीक 6 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर समय होगा कार्यक्रम भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस बालकांड का भाग 115। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 7:05 पर सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों भरी सुन सकेंगे। 8 बजे समय होगा हिंदी समाचार के कार्यक्रम समाचार प्रभात का। 8:15 पर आप अंग्रेजी समाचारों गुड मॉर्निंग न्यूज का आनंद उठा सकते हैं। 8:30 पर आप सुन सकेंगे उर्दू समाचार और 8:45 पर समय होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा का। सुबह 9:15 पर समय होगा कार्यक्रम अवर गेस्ट का और सुबह 9:30 यानी 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी

0: सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री ने कल अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Abhineet Shukla. New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. Union Minister of Cooperation Amit Shah will inaugurate the new vegetable Sabhiyat during the Amrit Mahotsav of

दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें, यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें, हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती है। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंडासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे